आओगी, जब तुम ही न आओगी तो ये घर भी जला दो, चाहो तो मिटा दो मुझे चाहो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देव?
1: अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या, हम साधु लोग और बाट नहीं देख सकते।
0: बस थोड़ी देर और बैठिए गुरुदेव, वो आते ही होंगे।
2: शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। ज्ञान की कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है सफलता। ऐसी सफलता हर लोगों के जीवन में होना जरूरी होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता होना जरूरी होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक, गृहिणी से लेकर वैज्ञानिक तक। गृहिणी अपने कर्तव्य में सफलता चाहती है और विद्यार्थी पढ़ाई में, उद्योगपति उद्योग में, समाज सेवक समाज की सेवा में, और हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफलता चाहता ही है। परंतु सफलता हमसे क्या चाहती है, ये जानना जरूरी है। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने सर्वप्रथम ये समझा कि सफलता हमसे क्या मांग कर रही है। फिर उस मांग को पूरा किया तो सफल हो गए। इसमें निस्वार्थ भावना हो, निष्काम कर्तव्य निष्ठा हो, समर्पण और लगन का संतुलन, अपेक्षा और अहिंसा का त्याग हो, जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देने की भावना प्रमाण प्रैक्टिकल कर्म करे तो सफलता गले की माला बन जाएगी। तो आइए सफलता पाने की कुछ विधियां समझते हैं। एक होता है हद से ज्यादा मेहनत करो। जो मेहनत से पीछे भागते हैं वे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। अगर कोई कहे कि पीछे का नहीं छोड़ सकते तो आगे भी बढ़ा नहीं जा सकता। कहा जाता है खून पसीने की कमाई सुकून देती है। मेहनत से अर्जित किया गया कौड़ी सम्मान मूल्य भी करोड़ों का सुख व संतोष देता है। जीवन के प्रत्येक पहलू को सम्मान दीजिए। सम्माननीय बनने के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, फिर मेहनत का जादू देखो। बुरी आदतों का भी त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, बुरी आदतों का त्याग सफलता के मार्ग में परीक्षा के रूप में कई नकारात्मक चीजें सामने आती है, इससे सतर्क रहे। जितना अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान रहेगा तो कभी भी बुरी संगत में नहीं आएंगे। जब लक्ष्य से ज्यादा किसी और को प्राथमिकता दे देते हैं तब उद्देश्य जो है उससे हम अटक कर बुरी संगत में फंस जाते हैं, मार्ग में अवरोध खड़े कर देते हैं। हमें यह देखना है कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं उनकी हमें आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो अच्छी से अच्छी चीज भी नुकसानदायक हो सकती है। अपनी आदतों को समझे, स्वयं की संभाल करें। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? संघर्ष करने की हिम्मत करना। एक होता है संघर्ष करने की हिम्मत करना, जब भूमि के में बीज होते हैं तब बीज के साथ साथ अनेक प्रकार की खर पतवार भी उगाती है। किसी ऊंचे संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो अनायास ही कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। इससे घबराए नहीं, हाँ हिम्मत से सामना करें। संघर्ष ही नए मार्ग की पहचान है। अगर किसान खर पतवार को देखकर हतोत्साहित हो जाए तो क्या होगा? हम भी हिम्मत से काम ले तो और हौसला बनाए रखें। अपने काम पर विश्वास रखो। जैसे किसान अपना परिश्रम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, यह विश्वास रखता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। हम भी कर्तव्य पर आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता का आधार विश्वास है। जिन्होंने भी विश्वास बनाए रखा, सफलता उनके कदमों में आ पहुंची। एक होता है धैर्य रखने की काबिलियत। विश्वास को कम करने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आ जाती है। इसमें धैर्य का गुण नहीं छोड़ना है। जैसे होता क्या है, वृक्ष, धूप, वर्षा, तेज हवा सब का सामना करता है, हार नहीं मानता। हम भी डगमग करने वालों की बातों को देख डगमग हो जाते हैं। धैर्य रखने से पहाड़ जैसी समस्याओं का भी सामना भी कर सकते हैं। धैर्य ही योग्यता को निखारता है, सोई हुई असीम शक्तियों का एहसास दिलाता है। यह बोध कराता है कि आप तो सब कुछ कर सकते जो औरों के लिए कठिन है। एक होता है अपने काम के प्रति जुनून पैदा करें। हाँ, अपने काम के प्रति हमें जैसा जुनून होना चाहिए।

भीतर देखिए, जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प, जैसे संकल्प ले लेते हैं, तो क्या होता है कि यह तो करके ही रहेंगे, तो हम क्या होता है कि हम निश्चित रूप से वह हो ही जाता हमारे साथ। ऐसा होता ही है कि अगर हम संकल्प करते हैं तो हम वो कर लेते हैं। जहाँ जुनून हो वहाँ कोई भी विपरीत बात हिला नहीं सकती। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, जुनून के साथ करो, साधारण रूप से नहीं, हाँ, और समय से पूरे पूर्व जो होता है वो संपन्न करो। लगन और समर्पण से किया गया कार्य सफल होता है। सफलता और असफलता को बुद्धि से निकाल संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण हमें क्या करना है, निष्ठावान होकर कार्य करो, तो निश्चित ही सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए गाती रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराती रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा कर रहे थे सफलता हमसे क्या चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफल होने के लिए बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सफलता का मार्ग मुश्किल से होकर गुजरता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी मुश्किलों से होकर गुजरता है। मुश्किलों से नहीं भागो, अभी तो मुश्किलों को साथी माने। हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ो। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुश्किलें रूपी बहुत सारी ऐसी बातें मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलों रूपी मूल्य ही सफलता की मंजिल तक हमें दी जाती है। किसी से आशा मत रखो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करके आगे बढ़ो। स्वयं की जागृति से चलने वालों का क्या होता है? चलने वाला जो होता है कभी रुक नहीं सकता। जो गतिशील रहता है वही आगे बढ़ता है। नदी बहती तो है, हाँ, नदी बहती है तो आगे बढ़ती है, रुकती है तो सड़ती है। प्रतिपल परिवर्तन ही प्रगति है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। ये होता है, स्वयं से ज्यादा किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। कई बार विश्वास जो है वो टूटने पर हम उठने के योग्य नहीं होते। जो अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है वह गिरकर भी संभलने की क्षमता रखता है। जो दूसरों पर निर्भर होकर चलता है वह कभी भी गिर सकता है, टूटकर बिखर सकता है। जो परिस्थितियों को खेल समझकर खेलते हैं वे अवश्य ही विजय बनते हैं। जीवन में जो होता है, जीवन के खेल में हर चुनौती को स्वीकार करो, मूल उत्साह से खेलो। प्रतिपल सफलता का साक्षात्कार करो। जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सोचते हैं वह पाते हैं। हाँ, यह कुदरती सिद्धांत है। नित्य अपने क्षेत्र की सफलता का दर्शन करो, उसी प्रमाण मेहनत।

विवेक और भावना का एक संतुलन प्लस कर्म करना। विवेक और भावना का हमें क्या करना है, संतुलन रखना है। केवल विवेक अहंकार उत्पन्न करता है, अगर विवेक केवल हो तो वो क्या होता है, वो अहंकार उत्पन्न करता है। और केवल भावना का ही होता क्या होता है, विवेक हमें अहंकार जब लाता है तो भावना जो है वो कायरता हो जाती है। कई बार अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नुकसान पहुंचा देता है, और कई बार सीमित मात्रा में मिला हुआ जो भी हम लेते हैं, अगर हम लिया हमने सीमित मात्रा में लिया गया विष भी क्या होता है, औषधि बन जाता है। इसलिए स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर विवेक और भावना का संतुलन रख प्रयोग करें। तो इसका संतुलन रखकर अगर प्रयोग करने से प्रत्येक कर्म में सफलता मिलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता क्या चाहती है? योग्यता के साथ सकारात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण। योग्यता के साथ क्या होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण सही दिशा देता है। जो गुणग्राही व्यक्ति दूरदर्शिता भी रखता है, वह सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त पाता है। हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है। उसकी उम्मीदों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना दुआएं अर्जित करने का सहज मार्ग है। श्रेष्ठ कार्य करने में शर्म नहीं, अपितु समर्पण और नम्रता को, जिससे निर्माणता और महानता प्रत्यक्ष हो, यही सफलता की नींव होती है। सरल और निर्मल स्वभाव, यानी कि एकदम पवित्र स्वभाव। अगर स्वभाव सरल व निर्मल है तो ऐसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सकते हैं। जो वृक्ष लचीला होता है, वह सबसे ज्यादा वो बड़े से बड़े तूफान में भी अपना बचाव कर सकता है। त्रिकालदर्शी बने, हमारा क्या है, हमें कैसा होना चाहिए? त्रिकालदर्शी बनना चाहिए, यानी कि तीसरे काल को देखो। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि कर्म करने से पूर्व ही कर्म के परिणाम का बोध हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की समझ द्वारा साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है। इसलिए कर्म करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होता। प्रचलित मान्यता है कि कोई भी कार्य आगे पीछे देखकर, सोचकर, समझकर करो। ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज में मान सम्मान का पात्र बनता है। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत करते हैं। जहां सेल्स को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्स से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीजों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जहां सेल्फ को मैनेज करना शुरू किया तो उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे

0: बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को हम देखते हैं जहां हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहां एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि उससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहां हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूं क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई बार हमें हमारे सामने आता है सिचुएशन, हमारी प्ली ये होती है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के, जब हमने, आपने ये कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं, तो लोगों के सवाल ये आए बहुत से कि अगर मेरे पास सपोज अत्याचार हो रहा है मुझ पर या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूं कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भी मेरी चॉइस है?
1: हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन
0: देते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मैं मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास, अगेन क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफर नहीं करा सकती।
1: हाँ, तो आप चूज कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठाकर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस
0: बट आई हैव टू गिव द ब्राइब, यू नो, लाइक फिर हम ये कह देते
1: have to see the question is whether we want to accept it or no, usko side pe rakho, actually har step par hum choose kar rahe hain, it's just that hum apne aap ko kehte kya hain ki I am not choosing, I have to do this. Now why is this very important? Again, like jo humne pichli bar kaha, hum is par nahi discuss kar rahe hain ki aapko wo train mein wo chitti ko dena hai ya nahi dena hai, each one to their own. Har ek apna apna decision apne apne aap leta hai. What we are discussing is, चाहे आप देते या चाहे आप नहीं देते,
0: Who owns the decision?
1: Who has taken the decision? अब हम क्या कर रहे हैं, हम देते हैं एंड हम कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है, एक जना देता है, दो जने देते हैं, दस लोग देते हैं, वेरी सून मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट, ओके, जहां ट्रेन में मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट डूइंग दिस, ये कह कह कर कि ऐसा है, ये सिस्टम किसने बनाया? Where is the system? Has it come from somewhere out of the blue? नहीं, एक ने सोचा देकर काम जल्दी करो, दूसरे ने भी सोचा अच्छा इन्होंने दिया इनका काम जल्दी हुआ, तीसरे ने भी कॉपी किया, वेरी सून दैट बिकेम द सिस्टम। टूडे लेट अस डिसाइड के वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट एंड टॉक कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, ब्लेमिंग एवरी वन। हम जो भी कर रहे हैं इट्स माई चॉइस। अब जो आपने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया तो दो ऑप्शन है ना, उस टाइम वी कैन इमीजिएटली पुट डाउन आर ऑप्शन कि ऑप्शन क्या है, या तो टीटी से रिक्वेस्ट करो आप टिकट का अमाउंट अपना जो भी है वो आप दो, आप सीट लो, वो नहीं आपको देता है, आप या तो बैठ कर जाओगे या आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर जाओगे। अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मुझे कम्फर्ट देगा, राइट? Do I take that decision so that it's comfortable for me? Again, it's a choice. दो लोगों के लिए अलग अलग choice होगी। किसी के लिए वो देकर सोकर जाना comfortable होगा, लेकिन किसी के लिए वो देना वो comfortable नहीं है। Like I can say, if I give that money to sleep, I'm not comfortable. I might lie down, but I'm not comfortable with what I have done. So I chose not to give and sit the whole night and go, which is okay. I am not asking anyone, have I taken the right decision or the wrong decision. It's my decision. And uske liye mujhe jo bhi face karna padega, I will face because it is my decision. Agar hum dete hain, to bhi hamara decision. Nahin dete hain, to bhi hamara decision. It's just that it's important to know ke wo hamara decision hai. इंस्टेड ऑफ अगेन इट्स अ विक्टिम एंड अ मास्टर. जो मास्टर अवेयरनेस से चल रहा है कि मैं चूज कर रहा हूँ, वो अपने जीवन में सशक्त होकर चलेगा, स्ट्रांग होकर चलेगा. आप मतलब इन नॉट टॉकिंग, आप बड़े से बड़ा गलत काम कर दो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन ये सोच कर तो करो ना, यू आर चूजिंग टू डू इट, ताकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो जो आपने किया है. सो द पॉइंट इज दैट consciously make your choices, because वैसे भी हम ही choice कर रहे हैं, लेकिन by every time telling myself I have no choice, I'm making myself very weak. क्योंकि then I'm telling myself कि मेरा जीवन तो इन सब चीजों पर, इन सब लोगों पर, इन सब systems पर dependent है. मेरे पास क्या choice है, मैं तो system के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ. Then I do not have the power. So let's be conscious.
0: Then the blame game actually also starts. सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है.
1: दैट इज वॉट ना, जहाँ मेरी चॉइस नहीं है तो फिर किसी और के कारण में नहीं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये दिया भी टीटी को रात को सोने के लिए पैसे दिए भी, तो तुरंत क्या किया, किसकी गलती है? वो टीटी की गलती है. उसने मांगा, मैंने दिया. उसने मांगा, दिया किसने? आई चूज टू गिव, विच इज ओके, चूज टू गिव इट, बट रिमेम्बर आई चूज, और इसका ये अकाउंट मेरा बना. And do what you're comfortable with doing. हमें जो comfortable लगे हमें वो करते जाना चाहिए. And reminding myself, I am doing it. And इसका जो repercussion है, that is most important.
0: You know, नहीं, लेकिन सिस्टर शिवानी, हम कभी भी comfortable नहीं होते हैं कई चीजें करते वक्त, क्योंकि हमें लगता है कि हमें force किया जा रहा है. You know, like circumstances ऐसे बन गए. Again, maybe you know कि situation ज्यादा हैवी हो गई. Yeah, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स
1: सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए, आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते?
0: नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगी, पर मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे.
1: फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकती? क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया? डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव, एंड देन वी से मॉरलिटी सेपरेट, स्पिरिचुअलिटी सेपरेट, प्रैक्टिकल लाइफ सेपरेट. Why are we teaching them honesty and whatever, the whole list? Practical में तो वो देख रहे हैं ना हमें करते हुए. तो क्या एक बच्चे ने अभी अभी ये नहीं सीखा कि जीवन में practically चलने के लिए ये सब करना पड़ता है? तो उनकी लैंग्वेज भी आज ऐसे ही हो जाती है, ओ ये सब तो करना पड़ता है, इसके बिना तो नहीं चलता. That's become my belief. Most of us are living with this belief कि honesty के साथ तो चलना possible ही नहीं है. Who created that belief for me? Somewhere I saw it happening. And यही अगर आज एक parent जाग कर जाए पूरी रात, और परिवार भी पूरी रात जागे, हो सकता है वो बहुत रात uncomfortable आपकी बीतेगी, but you just made your children and yourself stronger. Your children just learnt a lesson for their life. कि भले situations हो, हम अपने values पर compromise नहीं करेंगे. Values ऐसे बोलने वाली चीजें नहीं होती है. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं. संस्कार देने वाली चीज नहीं होती है, संस्कार जीने वाली चीज होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे, तो उन्होंने संस्कार सीख लिया. फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी, इट वॉन्ट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती, क्या होगा, अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना, लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके, इट्स अ चॉइस. बट आज जो हमने किया, जो हमने वो कर्म किया, इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, देव जस्ट लर्नड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम, उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है.
0: रिपरकशन क्या देखा, कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकम्फर्टेबल होके गया,
1: क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकम्फर्टेबल. अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कम्फर्टेबल, डिस्कस इट विद देम, डिस्कस इट विद देम, ऑनेस्टी मेक्स यू स्ट्रॉन्ग.
0: दिस इज व्हाट यू नो, लाइक यहाँ पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह देंगे या कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमें जाग के जाना पड़ा. हाँ, बैठ
1: तो,
0: के जाना
1: तो घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते हैं. ज्यादा मायने क्या रखता है, काम हो जाए, कम्फर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए. इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं. सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज.
0: इट मीन इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ.
1: تو کمفرٹیبل وہاں ہے نا, دیٹس واٹ وی سیڈ. کمفرٹیبل کی ڈیفینیشن کیا آپ کی, کس کی کمفرٹ؟ اب ہم نے سوچا میں شریر ہوں,

0: तो हमेशा कंफर्ट किसका सोचते रहते हैं, इसका अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ यही है, वही कर्म बार बार बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने गलत किया। झूठ पहली बार बोलो पता चलता है मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर से अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला, उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से पहले? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट। मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है इसलिए मैंने झूठ बोला। That's just a way of rephrasing the whole thing. I can say वो डांटेंगे लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी, now let me see what happens, I will be ready to face. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई choice ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं।
1: लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ। बट मोर इम्पोर्टेंट इज मुझे, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है।
0: एक्चुअली समथिंग दिस हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद इन लाइफ। हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइब, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, ये पहले ही सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। दिस सीम्स टू बी कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो मांगना ही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट। योर वाइब्रेशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वी हैव एंड प्लस आपके अपने प्रिंसिपल्स, ये नहीं कि आप एक जगह बोले मैं नहीं दूंगा, चार जगह वैसे आप देते हैं। सी दैट इज द क्वेश्चन
1: अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरी टाइम।
0: आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है, दैट इज योर वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन ये, लेट से मैं सोचू कि चीची को मैं पैसे नहीं दूंगा, ही शुड नॉट आस्क मी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता, जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ाकर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है। Now this same vibration will work now when I come in front of this person because it's basically my thinking quality. Vibration situation specific nahi hota hai. This is something which is very fundamental jo hame samajhna padega. Hamare jo sanskar over a period of time bante ja rahe hain, that is my quality of vibration. Vibration is nahi main inke samne baithi hu aur main bahut positive soch rahi hu, ab inko mere se positive feel hona chahiye, lekin abhi abhi main sara din mein 10 logon se mili and I was negative towards them, how will you feel positive with me?
1: लेकिन वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी भी तो मुझसे गुजरी है।
0: एब्सोल्युटली, सो इट्स बीन क्रिएटेड हियर। तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं। आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इफ समवन हैज द करेज टू डू दैट, सी हाउ योर लाइफ रन्स। आने दो ना ऊपर नीचे, कितना आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज्यादा मायने रखता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या वैल्यूज? आज हमारे को अपनी वैल्यूज की वैल्यू नहीं है। दैट इज द थिंग, ऑनेस्टी। ये क्या है, यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज्यादा भारी लग रही है? ये तो कुछ नहीं, इसे साइड पर रखो। इसकी अपनी ही वैल्यूज की वैल्यू कहाँ है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने में कितना देर लगती है। आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं, सोचते हैं ओ इजीली इजीली, क्योंकि एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार। लेकिन हर बार जब बोलते हैं पता है क्या कहते हैं, आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो चॉइस। वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, वो ऐसे था, तब करते करते करते इस तरह से अपने आप को बहुत कमजोर बनाते जाते हैं। बहुत कमजोर बनाते
1: स्टेटमेंट आई हैव नो चॉइस
0: needs to be removed.
1: लेकिन why are we afraid to take responsibility?
0: क्योंकि अगर if I say कि this is my choice, let's say जब मैं I walk into an office जहां मुझे अपना काम करवाना है and मैंने पहले से ये thought create कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर तक मुझे ये देना है तब मेरा काम होगा। I've already created the vibration and I've also told myself इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है वो

0: Everyone knows. से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है. हर आत्मा को पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है. जब हम रॉन्ग भी करते हैं, हम क्योंकि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसकी, वी कन्वर्टेड इन टू अ राइट. सो व्हेन आई वॉक इन टू एन ऑफिस,
1: वो मेरे सर पे कंटिन्यूस हथौड़ा ना मारता रहे कि मेरी कुछ गलत,
0: सबकॉन्शियस माइंड या कहें वो कॉन्शियंस जो बोलते हैं ना, मेरी कॉन्शियंस प्रिक नहीं करनी चाहिए मुझे अंदर, तो मैं क्या अपने आप को कहती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम ही ना होता तुम्हारा, ये सिस्टम ही ऐसा
1: काम इम्पोर्टेंट है.
0: एंड देन आई एक्चुअली कैन टॉक टू फोर पीपल. पता है आजकल का सिस्टम देखो कैसा है, ये सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है. अब ये कौन कहेगा मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए. एनी वन वॉन्ट्स टू से दैट? नो, एक्चुअली इट्स द ट्रूथ. आई डोंट हैव द करेज, क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चले तो हो सकता है थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं. थोड़ा सा काम जो 5 मिनट में हो जाता वो 5 दिन में होगा, हो सकता है 5 दिन में नहीं 5 महीने में होगा. फाइनली होगा जरूर, होगा जरूर. एंड नहीं भी होगा तो भी व्हाट इज माय प्रायोरिटी, दैट्स अ क्वेश्चन. तो जो लोग अपने जीवन में अपनी वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी रखेंगे, वो उसके लिए फिर किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है. लेकिन वो कर करके अल्टीमेटली उनका कभी नुकसान नहीं होता. चॉइस मेरी, डिसीशन मेरा, उसका जो रिपरकशन वो भी मेरा. लेट्स से आई वॉक इनटू एन ऑफिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैंने नहीं देने, आई एम नॉट गिविंग, तो आई शुड बी रेडी कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है. उसका रिपरकशन ये हो सकता है कि मेरा काम होगा ही नहीं. एम आई रेडी फॉर दैट रिपरकशन? आप अपने रिपरकशंस को लेकर रेडी होने चाहिए.
1: लेकिन मैं थॉट को लेके जाऊं अगर कि मेरा काम होगा ही नहीं,
0: इसीलिए तो वो वाइब्रेशन ही हमने पहले क्रिएट कर दिया. अब राजयोग से अगर हम वो ताकत ले रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा की ताकत हमें क्या है? राइट थॉट क्रिएट करना. दैट इज द पावर आई एटलीस्ट फील फ्रॉम मेडिटेशन. तो व्हेन आई एम वॉकिंग इन टू अ सिचुएशन लाइक दिस, इफ आई कैन क्रिएट अ थॉट, वन, मैं नहीं देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाली हूँ. देने की ऑप्शन को तो आउट ऑफ, मतलब अपने जीवन से ही बाहर कर दिया है, वो है ही नहीं ऑप्शन. दूसरी ऑप्शन, सामने वाला मेरे से मांगेगा ही नहीं. इंस्टेड ऑफ सेइंग सामने वाले तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो सिस्टम ही, क्या वाइब्रेशन भेजा सामने वाले के लिए? सामने वाला कौन है जो बैठा हुआ है?
1: वो भी तो एक प्योर सोल है.
0: सामने वाला मांगेगा ही नहीं मेरे से. आई ऑलवेज वॉक इन विद दिस थॉट, सामने वाला मेरे से नहीं मांगेगा. इट वर्क्स एंड द थॉट, काम तो होगा ही. लेट देयर बी ऑब्स्टेकल्स, इट्स ओके. लेकिन मैंने देने वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हो अगर लाइफ में, तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है. अभी क्या होता है, हम अगर एक आधी बार ट्राई भी करते हैं, लेकिन हमने वो ऑप्शन तो रेडी रखा हुआ ना, अच्छा मैं नहीं देता अभी एक बार, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन.
1: वो ऑप्शन रखी है कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये करूँ.
0: आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली है. तो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स, वो चॉइस हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी प्रायोरिटीज बहुत राइट सेट की हुई है, कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है. एंड दिस इज फंडामेंटल, कि जितना आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देते जाएंगे, तो आप अंदर से क्या होते जाएंगे? इट वर्क्स. इट वर्क्स. लॉट ऑफ पीपल विल से ऑनेस्टी वर्क्स, व्हाई विल इट नॉट वर्क? लॉट ऑफ पीपल विल से विदाउट करप्शन काम होता है, लेकिन वो कौन कौन कह पाएगा जो खुद उसके बिना काम किया होगा? लेकिन जो कर ही उस तरह से रहेंगे वो क्या कहेंगे? उसके बिना तो काम नहीं होता. तो ये क्रिएट किसने किया? हमने किया. चॉइस है, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन प्लीज अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से. हम चूज कर रहे हैं ताकि हम रेडी रहें
1: उसके रेपरकशंस के लिए.
0: रेपरकशंस की भी बात नहीं है, इट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर. इट मेक्स मी गो थ्रू लाइफ विद द थॉट कि आई एम लीडिंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट. इवन टूडे इफ आई गिव अ ब्राइब, I'm leading my life the way I want, not mere paas choice nahi, the system is like this, then I'm not leading the life the way I want.
1: I become very weak, actually very low. So but why I'm not ready to take the responsibility of my you know,
0: because agar maine responsibility li to mujhe change hona padega. Agar maine kaha system responsible hai, the system ko change hona padega, so I can keep waiting for the system to change.
1: It will never.
0: Which will whatever. चाहे वो सिस्टम

0: We've seen system never changes.
1: No, system could be anything. Say, system need not be a government office. System could be my husband. System could be my child. For me, anything. Jiske samne main khade hokar kehti hu, mere paas choice nahi hai. Main abhi jo soch rahi hu, jo kar rahi hu, wo inki wajah se. So then, inko change hone ki zarurat hai agar mujhe theek hona hai. मैं अगर जैसे वो झूठ बोलने का हमने एग्जाम्पल लिया, मेरा बॉस इतना गुस्से वाला है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो जिस दिन मेरा बॉस ठीक हो जाएगा
0: मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी.
1: सो वेट फॉर द बॉस टू चेंज.
0: ओह माय गॉड, वेट फॉर
1: द बॉस टू चेंज एंड देन कीप ऑन डूइंग योर कर्मा, जस्ट सेइंग दैट आई हैव नो चॉइस, बट द रिपरकशन विल नॉट गो टू द बॉस, रिपरकशन विल कम टू मी.
0: एंड वी हैव अंडरस्टूड कर्मा कार्मिक फिलॉसफी क्या कहती है, कि जैसा जो भी करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रास्ते पर हम चल रहे हों. वंडरफुल. आई थिंक समवेयर जहां हमने अभी तक हम सब कुछ मैनेज करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था,
1: कर रहे थे चॉइसेस को भी मैनेज करना,
0: और जैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, नहीं सर शिवानी, जैसे देखा इट मीन्स हमने नजर अपनी तरफ जब की तो वहां पे इतनी सारी चीजें थी जो हमें पता नहीं था कि हम क्यों डिसीजन ले, हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं.
1: एक्चुअली हम इसलिए ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं जब उनके सामने कोई बात आती है, जब वो रेपरकशन आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. ये सबसे बड़ा सबके माइंड में आज क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई मेट अ लेडी, शी लॉस्ट अ 2-year-old डॉटर, 2 साल का बच्चा, कहती है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे भगवान ही पसंद नहीं. ऐसे बहन आपको ज्ञान है ना कार्मिक फिलोसफी. शी सेड, यू नो सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, शी सेड मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, नॉट रेडी. क्योंकि जब वो हिट करता है, वो इतना बड़ा हिट करता है कि हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा, लेकिन नाउ वी नो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मैंने ही कुछ न कुछ किया है, सिर्फ करते टाइम
0: पता ही नहीं. यहाँ पे भी तो इनफैक्ट इट्स आई एम अमेज्ड, यू नो वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट इट, कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी चॉइस. क्योंकि इतना सटल है ये अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, और करती जा रही हूँ क्या, ये जितना करती जाऊंगी उतना संस्कार गहरा होता जाएगा. और अब हर बार हम ये कह के अपने आप को निकाल लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं कि इट्स नॉट माई चॉइस,
1: तो फिर परिवर्तन की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं आती.
0: वेरी ट्रू. इनफैक्ट ये बहुत समझकर देखने की जरूरत है,
1: एक्सपेरिमेंट
0: कि हम किस तरफ जा रहे हैं. और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि जहां किसी भी सिचुएशन को के लिए जो हमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी तरफ ये भी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूं ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई मुझे पकड़कर नहीं कह सकता कि आपको इधर ही जाना है या आपको उधर ही जाना है. चाहे आप कितने भी, अगर हम उसमें देखें सोसाइटी में या सिचुएशंस में कितना भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हूं, और आज ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम शांति. सचमुच देखने की बात यह है कि जब सेल्फ की तरफ नजर गई तो बहुत सी अपने अंदर ही इनहेरेंट ऐसी बातें थी जिनको हमने स्वीकारा हुआ था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही सिचुएशंस में फंसी हुई हूं, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है. लेकिन जरूरत इस बात की है कि सचमुच समझें जब हम साइलेंस में बैठे, या जब भी जो भी बात अगर कहीं पर भी आपको छू रही है ये बात, तो इस पर जरूर मनन करें, जरूर चिंतन करें कि क्या मेरे पास चॉइसेस हैं. और आंसर जरूर आएगा कि यस आई हैव द चॉइस. अब जानते हुए जब मैं उस रास्ते को चुनती हूं तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और फिर उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, फिर उसका फल मुझे मिलेगा ही. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो, तो हमें अपने आप ही पता होगा जब हम उस रास्ते पर चल रहे होंगे. तो आज के इस पूरी बातचीत से जुड़ी कोई ऐसी बात, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट पे जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कोई आपके पास सवाल है आपका हम स्वागत करते हैं. उसके अलावा हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में खुले सेंटर्स पर आप जरूर जाएं, और राजयोग का जो पूरा अभ्यास जो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं उसे जरूर करें, क्योंकि कहीं न कहीं जो परिवर्तन हम तलाश रहे हैं वहां आपको उसका राह जरूर मिलती है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी उसमें आज फिर आप सबके साथ हैं। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूं, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूं, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियां जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। बीमारियां हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी। दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रांग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा है कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।

0: और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
1: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
0: और एक जो इससे भी गुह्य शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहां भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूं परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूं कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए। अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस,
1: मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है।
0: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे कि
1: ये उसको थैलेमस उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
0: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
1: क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालती है? जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करती है?
0: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई इसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहां से यहां ना हो नहीं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
1: पर क्यों होता है ऐसे?
0: अभी यहां भी ये मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होगी उससे भी माइग्रेन होगा। पर जो स्पेसिफिक इमोशंस की जहां तक बात है, यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है कि छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी को ही दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनकी मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
1: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
0: और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना, हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
1: सफोकेटेड जब फील करते हैं।
0: हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए ये चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं,
1: या केवल फिजिकली, कई बार इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
0: हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
1: अच्छा, वो
0: लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, सब पेट की बीमारियां हैं, वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
1: सर शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है। यू नो, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है दिस माइट यू नो डेवलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले

0: हो गए थे, तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें,
1: बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं,
0: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वो हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है, तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है? इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट,
1: ऑर्गन से वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
2: यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनैलिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे जो ऑर्गन जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी।
1: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उनका हो जाएगा,
2: भले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है।
0: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है, डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील कि सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस।
1: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण?
2: हाँ हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं, एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते हैं झूठी भूख, व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है, ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है, और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा।
0: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हुएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है,
1: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाते।
0: अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं,
1: डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए,
0: क्यों मेरा बच्चा डिससेटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टूडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस, क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टूडे, वाई नॉट 20 years बैक, फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी, इट मे बी वन फैक्टर, लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा,
1: यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर है उतनी देर भी उनके साथ,
0: हाँ इट्स नॉट अबाउट द टाइम, देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं, इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट, नॉट पॉसिबल,
1: इमोशनली नहीं कर पाते हैं। अब कैसे मुड़े जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
2: बिल्कुल।

0: कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो। मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। सत्यम जी, बाहर सबको पता चल रहा है कि भी इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ। तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है।
1: मैं आपको ये बता रही हूँ, इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही।
2: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें। द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट। अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवर सेल्व्स नाउ।
1: आई नो। सो ये रोशन चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं आगे।
0: अभी सेकेंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो। हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तो बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप डीप में नहीं गए। अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी। वो सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ।
1: मुझे यहाँ पूरा बातें चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन।
2: हमने कई बार बात की ना, सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे? सी द डे स्टार्ट्स ओनली विद एंगर एंड इरिटेशन। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए भी। और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है, इट्स अ डेली पैटर्न। तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा। फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दी स्मॉलर थिंग्स।
0: वो एक सेकंड स्टेप होना चाहिए कि भी डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
1: अवेयर हो जाए कम से कम।
0: हाँ या अवेयर हो
1: और स्ट्रेंथ,
0: और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, उस चीज को चेंज कर दो, तो जब शुरुआत हो रही है ना तभी कंट्रोल कर सके।
2: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ। दैट्स वाई कॉन्स्टेंट टेक अवेयरनेस, फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है। वी हैव सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपकी जब इस तरह की डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे, आपको खुद दिखाई देगा, जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, या आपको दिखाई देगी, जैसे दिखाई देगी यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट।
1: वी फील गुड, हाउ यू फीलिंग यू नो।
2: नहीं, बट फीलिंग तक भी नहीं पहुंचेगी वो
1: थॉट पर।
2: हाँ, फीलिंग में भी ना थोड़ी देर में आती है, जब एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ थॉट्स कुछ टाइम तक चल रही है, देन आई स्टार्ट फीलिंग यू नो लाइक दिस। बट इफ आई एम एबल टू जस्ट लुक एट इट एट द लेवल ऑफ थॉट, व्हाई इवन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस प्लान टू दिस।
1: फिर वापस लाने में आपको टाइम लगेगा। ओके, हमने ये सजगता रखी सारा।
0: फिर अभी नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि भी इसको हम चूज करें। हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं, या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं। जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं।
1: तो इट इज अ बुफे ऑफ थॉट्स,
0: या
1: विच आर गुड फॉर योर हेल्थ।
0: ट्रू,
2: ब्यूटिफुल।
1: सी, बुफे में भी हम वो बड़ा हेल्दी फूड चूज करते हैं, तो सिमिलरली
0: यहाँ पर भी हम वैसा ही फूड चूज करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है। है ना, जो आत्मा के लिए नरिशिंग फूड है वही फूड मुझे चूज करना चाहिए। और नरिशिंग क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है वही नरिशिंग होगा। आत्मा को क्या पसंद है? शांति चाहिए उसको, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो, ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी।
1: जो अननेसेसरी हम यू नो इरिटेट होते रहते हैं दूसरों के बारे में, गलत अननेसेसरी करते रहते हैं एक्चुअली, अगर आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, यू नो जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होगा?

शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर राइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है ना, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने

0: पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8. आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं. यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है. तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए. नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन. हमेशा की तरह आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आया हूं जिस पर हम सब चिंतन करेंगे. आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, योजनाएं. पर एक प्रश्न है जो अक्सर अनसुना रह जाता है, क्या हम स्वयं से भी कभी बात करते हैं? आज का हमारा विषय है आत्मचिंतन की शक्ति, स्वयं से संवाद क्यों आवश्यक है. आत्मचिंतन का अर्थ है अपने मन के भीतर झांकना, अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को समझना और स्वयं से ईमानदारी से संवाद करना. हम दिन भर दूसरों से बातें करते हैं, घर में, कार्यालय में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर. और दिन में कुछ पल भी ऐसे होते हैं क्या जब हम अपने आप से पूछ लें, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं क्या वही मैं चाहता हूं, मेरे मन में जो चल रहा है क्या वह सही दिशा में है. प्रिय मित्रों, मनुष्य का सबसे सच्चा मित्र वही हो सकता है जो स्वयं से संवाद करना जानता हो. आत्मचिंतन हमें रुकना सिखाता है. जब जीवन बहुत तेज दौड़ने लगे, जब मन अशांत हो, जब निर्णय लेने में उलझन हो, तब आत्मचिंतन एक शांत विश्राम स्थल बन जाता है. स्वयं से संवाद करने पर हम अपने डर पहचान पाते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाते हैं और अपनी शक्तियों को भी समझ पाते हैं. अक्सर हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं. वास्तव में हमने अपने मन की बात सुनी ही नहीं होती है. प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार को दोष देता है और जो स्वयं को समझ लेता है वह परिस्थितियों को भी अवसर बना लेता है. आत्मचिंतन हमें प्रतिक्रियाओं से बाहर निकालकर सचेत प्रतिक्रिया सिखाता है. जब कोई हमें अपमानित करे, जब कोई बात चुभ जाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यदि हम स्वयं से पूछ लें, मुझे इतनी पीड़ा क्यों हुई, तो उत्तर हमें भीतर ही मिल जाता है. आत्मचिंतन आत्मबल बढ़ाता है. यह हमें बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहने देता. जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो उसे दुनिया की स्वीकृति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता. प्रिय मित्रों, आत्मचिंतन कोई कठिन साधन नहीं है. इसके लिए ना कोई विशेष स्थान चाहिए, ना कोई विशेष समय. दिन में सिर्फ पांच मिनट शांत होकर बैठिए, मोबाइल से दूर, आंखें बंद करके स्वयं से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं. धीरे धीरे यह अभ्यास आपको भीतर से सशक्त बनाएगा. याद रखिए, बाहरी संवाद हमें जानकारी देता है पर आंतरिक संवाद हमें दिशा देता है. तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम

0: कुछ क्षण अपने लिए, अपने मन के लिए निकालेंगे, इसी आत्मचिंतन से जीवन में स्पष्टता आएगी, शांति आएगी और सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित होगी। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें, सकारात्मक सोच के साथ स्वस्थ रहें, शांत रहें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: ओम शांति.
1: बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी लास्ट एपिसोड में कि भगवान की मर्जी, मेरा कार्मिक अकाउंट, और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा और जिससे मैं थोड़ा डर भी गया कि मैं तो जब भी किसी को हर्ट करता हूं तो मैं या गुस्सा करता हूं तो एक तो मैं कार्मिक अकाउंट नया बना रहा हूं, पिछला तो लेके ही आया, और दूसरा जैसे आपने कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन ऑन ईच सेल ऑफ द बॉडी,

0: बिलीफ सिस्टम है, जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा, आई राइट माई ओन डेस्टिनी, दिस इज माई ऑपरेटिंग
1: कर्म। मतलब थॉट भी कर्म है।
0: हाँ, माई एवरी थॉट इज कर्म, क्योंकि कर्म मीन्स क्या, कर्म मीन्स एनर्जी।
1: लेकिन मैंने एक्शन में नहीं लाया ना, अगर मैं अंदर गुस्से में आया, आपके बारे में कुछ सोच लिया,
0: तो सोचा तो मेरे पास आ गया।
1: ओ गॉड, आपने तो डरा दिया मुझे।
0: सोच सी, कर्म मीन्स एनर्जी जो मुझसे निकल बाहर जा रही है, एंड भाग्य मीन्स एनर्जी जो बाहर से मेरे पास आ रही है। आप अभी जो थॉट मेरे लिए क्रिएट करेंगे, जो थॉट आप क्रिएट करेंगे, वो आपका कर्म, मेरा भाग्य
1: नहीं। समझा मैं,
0: आपने मेरे लिए कोई थॉट क्रिएट की, मतलब तीर आपने छोड़ा
1: जी,
0: तीर मिला मुझको, राइट? तो छोड़ने वाला कौन? आप। पाने वाला कौन? मैं। तो आपने छोड़ा वो तीर, तो वो आपका कर्म। वो तीर मुझे मिला, एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो मेरा भाग्य। तो सारा दिन में हम जो तीर छोड़ रहे हैं वो हमारा कर्म है, और जो तीर हमारे पास आ रहे हैं वो हमारा भाग्य है। ये इक्वेशन सारा दिन में वर्क कर,
1: यानी कि जो तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं मैंने कभी छोड़ा होगा?
0: हाँ, वो तो है, वो तो डेफिनेट।
1: फिर ये तो फियर आ जाएगा ना सिस्टर की, मतलब सोचे भी नहीं, करें भी नहीं, डांटे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करे, तो करे तो क्या करे?
0: लेट्स से आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं अभी, और आपको ये पता है कि वही गिफ्ट आपके पास वापस आने वाला है, तो आप कैसा गिफ्ट देंगे? फिर आप वो गिफ्ट देंगे जो जब आपके पास वापस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सो जब नाउ आई नो कि वट एवर आई थिंक वो वापस आने वाला है, तो इट डजंट मीन कि सोचना ही नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि अच्छा सोचना है, क्योंकि सोचते हुए एंड दो बार हमें मिलेगा तीर जो आप भेजेंगे वो आपको दो बार मिलता है। एक बार छोड़ने के टाइम गुस्सा क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, रहम क्रिएट किया, वट एवर क्रिएट किया, पहली बार भी मिलता है, वापस आने के टाइम भी मिलता है, टू टाइम्स।
1: वो कैसे?
0: गुस्सा सपोज,
1: अच्छा,
0: करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना, एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना,
1: इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
0: एब्सोल्युटली। तो इसलिए अब इट्स ओके, अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है,
1: फियर होता है।
0: सी, दो ही ऑप्शन है, या तो हमें ये बात पता ना हो, या हमें ये बात पता हो। अब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारे गलत थॉट्स क्रिएट कर रहे हूँ, ठीक है? बहुत सारी गलतियां हो रही है सारा दिन में, लेकिन एक है वो गलतियां ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद। तो विल देयर नॉट बी अ डिफरेंस?
1: बहुत फर्क
0: है ना। इवन अगर मेरा 20% भी कम हो गया वो बात याद रखने से, तो 20% तो सेविंग है, 20% टाइम तो बच गए ना, फिर तो फियर कैसे?
1: चलिए, फियर की जगह उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं।
0: अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग से मेरी प्रोटेक्शन हो गई। लॉ पता ही नहीं था तो फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम था, आपकी वजह से ये, या रीजन ही नहीं पता था क्यों मेरे साथ
1: कोई ऐसा नहीं हो रहा। भगवान है ना।
0: हाँ, पर क्यों, इवन अ सिंपल थिंग लाइक क्यों मेरा सर भारी लग रहा है, क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है, तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन, ऐसा क्यों, ऐसा हैवीनेस है। वो हैवीनेस भी इसलिए थी, हैवी एनर्जी भेजी, हैवी एनर्जी वापस आई, तो हैवीनेस है। अच्छा, इसलिए है, तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर, टुमारो गोइंग टू बी अ डिफरेंट डे फॉर मी। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा, ध्यान रखेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट फियर, दिस इज पावर।
1: तो मतलब मोटी भाषा में, जब बीमारी का पता चल गया है कौन सी दवा से ठीक होगा, तो दवा लेना भी आसान हो गया।
0: Absolutely.
1: और बीमारी का वो भी आ गया।
0: और दूसरी भी चीज है, आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया।
1: हाँ,
0: देखो हमें परहेज कितने सब बताते हैं, ये इतना पानी पियो, इतना ये खाओ, ये धूप लो, ये लो, सब पता होते हुए भी, सब नॉलेज है, सब कंप्लीट नॉलेज है, फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं।
1: सही बात।
0: तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी, अगर मुझे जीरो नॉलेज हो तो मैं कोई भी चीज नहीं करूंगी।

0: हेल्थ और खराब होगी, तो नॉलेज विल ऑलवेज बी पावर, इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर। लेकिन नॉलेज को यूज करने से पावर, सिर्फ पता होने से पावर नहीं। तो अब इस बिलीव सिस्टम को फिक्स कर ले कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब थॉट्स पे चेकिंग कि मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म। अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छा उनके लिए करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है। हम कैसा भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर, एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा है। ये बात पता होने से कि थॉट, वर्ड, एक्शन, ये तीन चीजें कर्म है। इट्स नॉट ओनली वर्ड एंड एक्शन कर्म है, थॉट, वर्ड, एक्शन कर्म है। तो हमने धीरे धीरे फिर अपनी थॉट्स की क्लीनिंग शुरू करनी, फिर एटीट्यूड, फीलिंग, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी पे आना शुरू हो गया। अब जब हमारे पास कुछ बातें ऐसी वापस आएंगी जिसको हमने कहा डेस्टिनी, अब इनको फेस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक, परमात्मा पे ब्लेम नहीं, दूसरा नॉलेज कि ये कार्मिक अकाउंट, जैसे आपने कहा मेरी गलती थी ना। आज जो मेडिकल साइंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग की थेरेपी बन चुकी है कि आत्मा को रिग्रेस करें, उसको दिखाएं कि आपने ये किया था। जैसे ही उस सोल को ये पता चलता है मैंने ये किया था, उसको प्रेजेंट फेस करना बहुत ईजी होता है।
1: लेकिन मुझे अभी से आसान हो गया बिना पीछे गए।
0: ये छोटी छोटी बातें है ना, जीवन में कुछ बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बातें होती हैं, जो जिनका कनेक्शन इस जीवन से नहीं होता है। जैसे कोई दो लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बार बार धोखा, क्यों बार बार, रीजन नहीं समझ में आता है और वर्क करना नहीं आता है वो, अगर और उसका उनके ऊपर हेल्थ पर सपोज बहुत डैमेज हो रहा है, और वो व्यक्ति अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उनको पता चलता है ऐसे ऐसे आपने किया था, उसके बाद परिस्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही परिस्थिति को फेस करते हैं हीलिंग शुरू हो जाती है। अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज है। हमें ये नहीं ढूंढना है मैंने क्या किया था, हमें सिर्फ ये मालूम होना काफी है मैंने किया था, मैंने कुछ किया था जिस वजह से ये आया है मेरे साथ।
1: मैंने ये किया था वरना ये मुझे कभी नहीं मिलता,
0: हो ही नहीं सकता। दिस हैज टू बी अंडरलाइंड इन माय लाइफ।
1: मतलब ऐसे सिंपल भाषा में, अगर आप दूध रखेंगे चूल्हे पर, गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे आग नहीं होगी तो उबल ही नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता।
1: सिंपल एज दैट,
0: इट्स एज सॉलिड एज दैट। इसमें एक बार भी कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स एब्सोल्यूट सर्टेन, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस।
1: इतना पक्का, इसको फर्म बिलीफ,
0: इतना पक्का, और इसको इतना फर्म बिलीफ कि कभी भी बड़े से बड़ी भी बात आए इस बिलीफ में हिलना नहीं है कि नहीं ये मैं। एक हमारे पास बहन आई सेंटर पे, उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हुई अचानक कुछ। अब वो बहन तो सेंटर पर आती थी काफी समय से, उसको नॉलेज भी था कि जैसा कर्म वैसा, लेकिन जब ये बात आई कि 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, यू कांट टेक एट ऑल, एंड शी सेज भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने भगवान की इतनी पूजा की है क्या ऐसा। तो जैसे ही उस बहन को कहा, बहन आपको तो मालूम है ना, मतलब अपने कार्मिक अकाउंट, अपना कर्म, शी जस्ट शाउटेड एट मी एंड शी सेड, मैंने ऐसा कोई बहुत बड़ी है ना, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, यस एक्सेप्टेड कि दर्द बहुत है, लेकिन फिर उस टाइम पर हम उस बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए
1: मुश्किल है
0: लेकिन
1: मेरे लिए तो है,
0: मुश्किल है लेकिन सच है ना, सच है।
1: सच को फेस करना सिस्टर मुश्किल भी है ना, क्या करेंगे।
0: रियलिटी को जब फेस करते हैं तब ही फिर नेक्स्ट स्टेप ठीक उठाएंगे। अब सपोज ये बात हो गई है,
1: जानते हुए भी दर्द होता है,
0: दर्द है वो अलग चीज़।
1: मान लिया कि ये मेरा पास कार्मिक अकाउंट था इसलिए मैं दर्द मुझे हो रही है, दर्द हो तो रही है,
0: दर्द हो तो रही है। अब इतनी बड़ी बात जब आ गई मेरे जीवन में कि मेरे छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा, बहुत बड़ी बात है, दर्द बहुत है, ऐसे समय पर कोई भी लॉजिक

0: नहीं,
1: कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बात हो सकती है, इससे बड़ी बात नहीं आएगी कोई किसी के जीवन में ऐसे समय
0: मैं तो सुनने को भी तैयार नहीं था जब मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया था और भाई की डेथ हो गई थी।
1: ज्ञान
0: तो
1: सुनने को
0: मैं तो ये सब बातें सुनने को भी तैयार नहीं था, तो अपने पास रखो, तुम जानो तुम्हारा भगवान, दूर हटो।
1: अब ये वाली जो बात है कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, विच मीन्स चोट लगी, दवा लेके कोई आया था, मैं दवा लगाने के लिए तैयार नहीं था। दिस इज वेयर द रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, तो सोल्यूशन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ।
0: छोटे बच्चे इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं ना बीमारी में,
1: ये वाली बात है। तो इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरा दर्द है, लेकिन अब मेरा एक बच्चे ने शरीर छोड़ा है, अगर अभी मेरे पास और पूरा परिवार है जिसकी जिम्मेवारी भी मेरी है, मेरे अपने जीवन की भी जिम्मेवारी है, और वो आत्मा जो शरीर छोड़कर गई है उस आत्मा के प्रति मैं क्या थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, वो कार्मिक अकाउंट पे अभी भी चल रहा है। ये सब चीजों को अब ठीक करने के लिए मुझे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान ही चाहिए, वो ही कुछ हीलिंग करेगा। अब ऐसे टाइम पर अगर मैं उसको ही रिजेक्ट कर दूं, भगवान ही बुरा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को भगवान में कोई विश्वास नहीं, ज्ञान मुझे सुनना नहीं, तो एक कार्मिक अकाउंट तो भारी था, लेकिन अब बाकी का क्या करेंगे, बाकी में क्या करेंगे? अब आप बाकियों का भी ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे, आप खुद ही शायद डिप्रेशन में चले जाएं क्योंकि आप बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। तो एक कार्मिक अकाउंट से बाकी कार्मिक अकाउंट अभी
0: और गड़बड़,
1: दिस इज हाउ वन विल स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट। अगर हमने रियलिटी को
0: तो भारी भारी भारी भारी भारी होता है बोझा, फिर क्रैश हो जाएंगे हम,
1: क्योंकि रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। इसीलिए लॉ पता होना चाहिए और लॉ को हर समय सामने रखना होगा, एंड एवरी टाइम मीन्स एवरी टाइम, लेट द वर्स्ट कम बिफोर मी, मुझे लॉ पता होना चाहिए ताकि उस वर्स्ट में भी, सबसे बड़ी बात में भी बाहर तो निकलना है ना, बाहर तो निकलना है ना। मेरा उस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट था तब ऐसा हुआ, लेकिन नॉलेज होगी तो एटलीस्ट मैं अब कार्मिक अकाउंट तो ठीक क्रिएट करूं, नहीं तो व्हाट इज इट, नहीं तो ये जीवन भी फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और आएगा जो और बड़ा आएगा ना, क्योंकि अभी और गलतियां कर दी इस प्रोसेस में। सो लॉ हेल्प्स अ लॉट एट एवरी स्टेप, बट यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, लाइट ऑफ नॉलेज हमेशा ऐसे पकड़ के रखनी है ताकि कहीं भी हिलेंगे नहीं। जब ये बिलीफ सिस्टम था कि मैं एक शरीर हूं तो जीवन, जिस दिन जन्म हुआ और डेथ, इतना ही था, डेस्टिनी चेंज, जीवन जीने का तरीका ही अलग हो गया। अभी कर लो, आगे की देखी जाएगी, सब कुछ जो है वो अभी तो पाना है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये जीवन जीने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जीवन है। एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पूरी चेन को चेंज कर देगा। अब बिलीफ नया, शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, एनर्जी है, इटर्नल है। तो फिर जब डेथ होगी तो क्या होगा, मैं आत्मा ये शरीर छोड़कर एक नया शरीर लूंगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सुना था, चेंज। संस्कार लेकर आए थे, कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, और संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर ही जाएंगे। तो ये जो बीच के पार्ट है, यहाँ लेकर आए थे और यहाँ लेकर जाएंगे, ये वाला जो हमें टाइम मिलता है, मतलब जब हम इस शरीर को ले लेते हैं, इस टाइम में हमें इन दो चीजों पर कितना ध्यान रखना चाहिए, संस्कार और कार्मिक अकाउंट। हम इन दोनों चीजों पर ही बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, और सारा ध्यान किस पर रखते हैं, जो ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, वस्तुएं लेकर नहीं आए, लोग लेकर नहीं आए, शरीर भी यहाँ आने के बाद मिला, नाम पैसा शौहरत वो सब तो, पोजीशन, अक्वायर्ड नॉलेज, डिग्रीज सब मिला, ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आए थे, लेकर जाएंगे। बिलीफ सिस्टम अब इस पर ध्यान रखेंगे सारा दिन पर। अब जो सारा दिन हम आत्माओं के साथ

0: कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, हर आत्मा के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। जिनके साथ भी हम आज हैं, इन सबके साथ हम पहले कभी ना कभी थे, और जो पिछली बार का कार्मिक अकाउंट था उस स्टेज पर ही अब का कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होगा। जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा कि मैंने मेहनत इतनी की फिर भी मेरे को सक्सेस 50% क्यों, सब पैरामीटर्स फेवरेबल है। सपोज जस्ट अ गेस, किसी जीवन में किसी और की मेहनत पर मैंने सक्सेस में ऑब्स्टिकल डाला हो, किसी और को सक्सेस मिलना चाहिए था, मैंने मिलने नहीं दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया, आज मेरी सक्सेस में ऑब्स्टिकल आई गई, विच इज फाइन, वो आने ही है। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट जो मैंने पिछली बार किया था, क्योंकि ठीक है इग्नोरेंस, मुझे नहीं मालूम था वो किया, लेकिन अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे सारे जितने प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं उसके साथ ये पैरामीटर एक्चुअली सबसे पावरफुल है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेकर आई है, अनेक कार्मिक अकाउंट्स है, अनेक संस्कार है, और कई बार शरीर ले छोड़ने से वो सारे बहुत इंटैंगल्ड हैं और बहुत पावरफुल हैं। अभी की ऑनेस्टी, अभी की डेडिकेशन, विल पावर, ये तो सिर्फ अभी का पैरामीटर है। तो अगर हम देखें, जो आपने कहा ये हमें लेजी तो नहीं करेगा, ये लेजी नहीं करेगा लेकिन अलर्ट तो करेगा, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत पावरफुल है और अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग टू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई कैन डू एनीथिंग। तो उस पे चिंतन नहीं, उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड फुल स्टॉप। ये जो मेरे साथ हो रहा है इट इज अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, फुल स्टॉप। नॉलेज, एक्सेप्ट इट्स अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, क्वेश्चंस फिनिश्ड, क्यों हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं, वो सारी एनर्जी लगा देंगे प्रेजेंट में, सारी एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने जो किया पास्ट में,
1: अब क्या करना है उस पर एनर्जी लगाएंगे।
0: जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जब ब्लेम गेम खत्म हो जाती है, जब हमारे को ये पता चल जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव द पावर, तो फिर वर्तमान समय पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस सारी पावर को प्रेजेंट के कर्म में लगाते हैं, तो पहले मेरे से गलत कर्म हुआ था लेकिन अब नॉलेज है तो अब मेरा कर्म कैसा होगा।
1: जैसे हम बिजनेस में करते हैं कि भाई एक बिजनेस फेल हो गया, अब क्यों हुआ उस पर 2 साल 10 साल रिसर्च नहीं करेंगे, अब क्या करना है, बैलेंस शीट को ठीक करना है, नुकसान जो हुआ उसको भरना है, जो लोन्स बैंक से लिए वापस देने हैं, अब क्या करें।
0: अब ये जो आपने कहा, इस इक्वेशन को, बैलेंस शीट को यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है कि पहले शायद मैंने लोन ज्यादा ले लिए थे, या मैंने ज्यादा कर्जा, ज्यादा कर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट की थी, दुख ज्यादा दिया था, अब मुझे अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा। अब मुझे कई गुना ज्यादा सुख देना होगा, कई गुना ज्यादा प्यार से बात करना होगा, प्यार से सोचना होगा, तब मेरी बैलेंस शीट टैली होने लगेगी। अगर मैं पास्ट वाला संस्कार ही अभी प्रेजेंट में भी यूज करूंगा तो फिर कार्मिक अकाउंट कैसे चेंज होगा, वो तो उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। इट्स लाइक हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इधर जाना था हम इधर चले गए, तो हम 10 किलोमीटर रॉन्ग रोड पर चले गए, लेकिन अभी नॉलेज आ गई ना कि रॉन्ग रोड पर है, तो अभी यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेके अगर हम 1 किलोमीटर भी इस डायरेक्शन में पहुंचे हैं, 10 रॉन्ग डायरेक्शन में गए, टर्न लिया, 1 किलोमीटर भी अगर राइट डायरेक्शन में आए हैं, एटलीस्ट वी आर टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, हम इस तरफ तो चलना शुरू हो गए ना। वॉट अगर हम 10 की जगह 100 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे रॉन्ग के, तो इट डजेंट मैटर हम कितना रॉन्ग चले गए हैं, कितना डीप कार्मिक अकाउंट है, इट जस्ट डजेंट मैटर, इम्पोर्टेंट इज
1: मंजिल की तरफ तो जा रहे हैं,
0: अब टर्न कर लेते हैं, अब टर्न करके मंजिल की तरफ तो चले चलते हैं। एक बार टर्न राइट ले लिया, मंजिल की तरफ मुड़ गए, पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट वील नो वी आर ऑन द राइट रोड, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
1: जैसे मेरा पास बिलीफ था, बहुत फर्म बिलीफ था कि भाई एक बार, और उसके लिए मेरे पास बहुत वो भी थे रीजन, इतना काम होता है, मैं

0: सेक्रेटरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकाउंट्स भी मुझे देखने हैं, इनकम टैक्स भी देखना है, घर भी चलाना है, भाई बहनों का काम है, मम्मी भी है, ये अपने आप में काफी रीजन देता था। इसलिए मैं कट शॉर्ट करके दो एक वर्ड बोलता था, ये कर दो बोला ना, बस कर दो, बोल दिया ना, बोल दिया, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई डोंट हैव टाइम, मैं एक एक को समझा नहीं सकता हूँ, ये रूल्स बना दिए मैंने, कर दो। तो उसमें क्या हुआ, एक बिलीव बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक कंट्रोल और एक एंगर से गुस्से के बिना काम नहीं होता, ये मेरा फर्म बिलीफ था। तो मैं अभी सोच रहा था कि जो मैंने गुस्से के साथ काम करवाया पिछले कई सालों से मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, तो मुझे जो उसके मैंने कार्मिक अकाउंट बनाए उसको मैं अब कैसे ठीक करूं?
1: जो बन गया वो फिनिश्ड, राइट? वो फिनिश्ड। अब
0: बैलेंस शीट की बात हुई, लोन की बात हुई, मेरा कर्जा उनका कर्जा मेरे सर पे है, अब मैं कैसे लौटाऊं?
1: इट्स नॉट उनका कर्जा, इट इज इम्पोर्टेंट इज मेरा संस्कार। संस्कार कौन सा क्रिएट हुआ? कंट्रोल करने का। अब कंट्रोल करने का संस्कार है, अब मुझे कौन सा संस्कार क्रिएट करना है?
0: प्यार करने का,
1: एक्सेप्ट करने का। कंट्रोल किया मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ये कंट्रोल। एंड एक्सेप्ट मीन्स जैसा आप कर रहे हैं वो सही है, मैं आपको राय दे दूंगा, आप राय भी देंगे।
0: ऐसे में मेरे में प्रॉब्लम आता है, जो मर्जी करो भैया, अब मुझसे मत पूछना, फिर मुझे मत कहना बाद में आके कि मैंने फेल हो गया।
1: विच मीन्स कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सही पता है, बट आप कंट्रोल होने के लिए
0: तैयार
1: नहीं, हो तो ठीक है, करो अपने आप, फिर जब होगा नहीं आपका ठीक से, फिर आप आओगे मेरे पास वापस। फिर ये तो कंपैशन नहीं है ना, ये तो प्यार नहीं है ना, ये तो ऐसे है कि जैसे हम वेट कर रहे हैं कि कोई गलती करके हमारे पास वापस आए, तो हम उनके लिए कैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो गलती करे, दुखी हो, फिर मेरे पास वापस आए।
0: बट वो फर्म बिलीफ है ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मुझे आपसे ज्यादा आता है,
1: बिल्कुल
0: मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है,
1: वो बिलीफ
0: मेरी नॉलेज, तो
1: वो बिलीफ नहीं, वो सच है।
0: फिर
1: वो तो सच है। सी सपोज आप बड़े हैं, एज में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, एज में जो बड़े हैं अनुभव में भी बड़े हैं, आपने जीवन को एक पर्टिकुलर तरीके से जिया है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है, जिस आत्मा के पास ये चार चीज
0: होती तो मेरा ये गुस्से वाला बिलीफ ही नहीं होता मुझमें।
1: विजडम नहीं,
0: ये विजडम की कमी नहीं
1: है, नहीं विजडम है, कोई एक संस्कार थोड़ा कड़क है, एक संस्कार कुर्ता पूरा व्हाइट है, एक दाग होने से ये नहीं मीनिंग है कि पूरा कुर्ता ही काला है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अपने को भी इवेल्युएट करने के लिए।
0: यू मेड माय डे।
1: नो नो, बट इट्स अ फैक्ट, नो इट्स अ फैक्ट ना, और ये अपने लिए भी और औरों के लिए भी। किसी के अंदर भी कोई एक कड़ा, बहुत कड़ा भी है अगर, बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ दे रहा है, लेकिन बाकी को भी तो देखना है, आत्मा में कितनी विशेषताएं हैं, उस एक को ही देखेंगे।
0: तो कभी कभी अपनी भी तारीफ, अपने को भी पैट करना चाहिए अपनी तारीफ।
1: वेरी इम्पोर्टेंट, अपने को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, किसी और को तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टिकोण ही क्रिटिकल बन जाएगा। तो इसलिए विजडम है, इंटेलिजेंस है, एज है, एक्सपीरियंस है, तो ये चार फैक्टर्स के कारण आपके बहुत सारे डिसीशंस, लेट्स से मेजोरिटी डिसीशंस एक्यूरेट होंगे क्योंकि चार फैक्टर्स हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके पास नॉट नेसेसरी आपकी जितनी इंटेलिजेंस, नॉट नेसेसरी आपकी जितनी विजडम, एंड एज तो नहीं, अनुभव भी नहीं, तो आपका राइट भी उनको अभी राइट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बात को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम, अपने एज और अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आप उनको अपनी बात नहीं यूज करने देंगे तो उनकी विजडम और उनकी इंटेलिजेंस कैसे ग्रो होगी? हाउ विल दे लर्न? आप सिर्फ अगर बताएंगे और वो करेंगे, आप बताएंगे और वो करेंगे, आप तो आपके पास तो वो चार फैक्टर्स अच्छे हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? उसकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी, विजडम कैसे बढ़ेगी? करेंगे तब तो बढ़ेगी, करेंगे, और हो सकता है वो आपके तरीके से ना करें, कोई एक अलग तरीके से करे, तो दैट ऑल्सो वर्क्स आउट वेरी ब्यूटीफुल।
0: पर जरूरी है वो ग्रोथ हो, हमेशा फेलियर भी तो हो सकता है।
1: आपने कभी फेलियर नहीं अनुभव किया लाइफ में?
0: बहुत बार किया,
1: तब भी आज विजडम है, इंटेलिजेंस है, एक्सपीरियंस है। ग्रोथ लाइफ डजेंट मीन

0: perfect everything. It means doing, experimenting, up and down, learning, moving up. So, ab role kya hai? Unko apna use karne de. Hamesha unke liye waha rahe. Wo lena chahe aapse, to beautiful.
1: Na lena chahe?
0: Na lena chahe, to bhi aap de zarur denge ek par. Agar aapko koi dikh raha hai, ki galat kar raha hai, to aisa nahi thi ke phir khud seekhna hai, to khud nahi. Hame zarur dena hai, because role of a parent, guide, facilitator, friend. Lekin dekar control nahi karna hai. Aur dekar accept bhi karna hai, ki ho sakta hai wo us baat ko le, ho sakta hai us baat ko nahi le, ye to swikar karna hai.
1: To matlab jaise ye ab suraj aa raha hai yahan se, aap le na le.
0: It is real.
1: Chhatri rakhe, khidki band kare, khidki khuli rakhe, uska kaam hai sirf dena.
0: Jabki wo mere liye har cheez useful de raha hai. हर चीज यूजफुल दे रहा है.
1: फिर फर्क ये है सिस्टर, मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा कि लेकिन मैं सूरज तो नहीं हूँ. फिर फाइनली यही बात आ जाती है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी तो इंसान हूँ.
0: सो वी विल सी दैट नेक्स्ट
1: टाइम. इतनी बचपन से यही बातें सुनी है, गलतियों का पुतला हूँ.
0: कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग.
1: थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.
2: आवर एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन इज द एनर्जी वी क्रिएट एंड रेडिएट. दिस is our karma. Situations and people's behavior is the energy we receive. This is our destiny. We experience the energy of our thoughts while creating them. Then they radiate, and the other person also creates similar thoughts for us, which we receive. So, we experience while giving and also while receiving. Karma begins at the level of thoughts. If we create negative thoughts but speak beautiful words and do good actions, we are still creating negative energy. Karma is not in the action. It is the intention behind the action, that is, the thoughts. Knowledge of the law of karma empowers us to create right karma in the present. We take personal responsibility of situations coming to us. We do not blame anyone because we know it is a return of our earlier karmas.
3: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है. नमस्कार, मैं हूँ अमोल. आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: पे जाना,
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौसी बोलो मौसी, मौसी बोलो मौसी, मौसी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।
0: सर सर, महंगा

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा अरे जा।

की पहाड़ी है कांटे की लाला।

0: मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीस जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: Bondi, voilà.
1: Bondi,
0: Bondi. Bondi.
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लेट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस intention से अपनी energy को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, discipline करेंगे, disciplinary action भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy, life है। ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर अलविस पने के साथ रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM पर खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आवाज मैं ना दूंगा।
2: नमस्कार, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक में अगर नूर न होता, तन्हा दिल यू मजबूर न होता, मैं आपको ईद मुबारक कहने जरूर आता, अगर आपका घर इतना दूर न होता। जी हाँ, मैं उस नूर के बारे में बात कर रहा हूँ, कृष्ण बिहारी नूर के बारे में। भारतीय उर्दू शहरों के बीच अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करने वाले

बिहारी नूर जो अपने नाम से शायरी करते थे, शायरी से मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए इनका नाम अपरिचित कभी भी नहीं रहा। जब वो थे तब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई बड़ा मुशायरा नहीं होता जिसमें उन्हें न बुलाया जाता हो। तो ये नूर साहब की कुछ खास शायरिया गजलें मैं आपको आज के शो में सुनाने वाला हूँ। ख्वाबों के सफर को बनाएंगे बहुत यादगार खूबसूरत आज के इस शो में। तो इस सफर को बनाने के लिए सुंदर सुहाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ नूर साहब की कुछ गजलें और कुछ शायरिया। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा आज के इस ख्वाबों के सफर में वो गाने जो बी अक्षर से शुरू होने वाले हैं और साथ ही साथ 50s और 60s के खूबसूरत गाने जो हमेशा आप ख्वाबों के सफर कार्यक्रम में सुनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह के खूबसूरत गाने आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझमें, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझमें। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझमें, मुझको मुझसे जो जुदा करके छुपा है मुझमें। जी हाँ, ये चंद लाइनें जो मैंने आपको अभी सुनाई नूर साहब की, कृष्ण बिहारी नूर साहब की गजलें आपको सुना रहा हूँ। और चलिए बात करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में, मैं आपको कुछ बैक टू बैक 50s और 60s के गाने सुनाने वाला हूँ। दो गाने, जी हाँ, एक ये

जी हाँ, इसे शकील बदायूं साहब ने लिखा है, मुकेश ने गाया है। नौशाद साहब का संगीत से सजा ये गाना अनोखी अदा इस एल्बम से 1948 का आपके लिए। इसके बाद ये गाना

जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, शमशाद बेगम के साथ संगीत सी रामचंद्र ने दिया है। पतंगा फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी। तो ये दो गाने आपको बैक टू बैक सुनाने वाला हूँ मैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबोगा सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। यह बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, दो गाने बैक टू बैक 1950s और 60s का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले एक खूबसूरत नूर साहब का गजल आपके लिए खास। जी हाँ, तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख, चेहरे पे तेरे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। गम दूरियों का दूर न हो पाएगा कभी, वो अपनी

0: पर्वतों का असर छोड़ जाऊंगा। गुजरेगी रात रात मेरे ही ख्याल में, तेरे लिए मैं शहर छोड़ जाऊंगा। जैसे कि शमादान में बुझ जाए कोई शमा, बस यूं ही अपने जिस्म का घर छोड़ जाऊंगा। मैं तुझको जीत कर भी कहा जीत पाऊंगा, लेकिन मोहब्बतों का हुनर छोड़ जाऊंगा। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, नूर साहब की ये बहुत ही खूबसूरत गजलें दो दो लाइन की मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें जीवन का मर्म कहीं न कहीं अपनी अंतरात्मा की ओर आकर्षित करता है। उनके शब्द कहीं न कहीं व्यक्ति को अपनी सच्चाई की तरफ आकर्षित करता है, उनका ये गजल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे खूबसूरत गजलें आपको सुनाता रहूंगा आज के शो में ख्वाबों का सफर में। आइए बात करते हैं 1951 में एक फिल्म आई थी अलबेला, जो बहुत ही पॉपुलर म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें खास भगवान दादा और गीता बाली ने एक्ट किया था। ये एक इंडियन क्लासिकल हिंदी फिल्म थी, जिसमें बहुत ही सुंदर इन्होंने उस समय 1951 में बॉक्स ऑफिस पर एक सफल म्यूजिकल फिल्म के रूप में आई थी। सी रामचंद्रन का संगीत जो बहुत ही पॉपुलर था, सभी को याद है। और इसमें जो भगवान दादा है, जिनका नाम प्यारे लाल है, ख्वाबों में रहने का एक ख्वाहिश बताया गया है, सपने देखने का उनको बहुत शौक है, सपने देखते रहते हैं। और उन्हें एक मुंबई में एक बहुत ही गरीब परिवार में रहते हुए दिखाया गया है। उसमें उनके माता पिता और एक भाई जिनका शादी हो चुका है, मोहन और मालती जी रहते हैं, और उनकी एक छोटी बहन है जिनकी अभी शादी नहीं हुआ, जिनका नाम है विंदा। तो इन सभी का बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। तो ऐसे में भगवान दादा एक दिन सोचता है कि मैं कहीं जाकर काम करूंगा, और वो अपने घर बार को छोड़कर कहीं जाता है, एक फिल्मी दुनिया में एंट्री करता है। वहां पर उसको नौकरी मिलता है, बहुत पैसा मिल जाता है, बहुत जल्दी उसको सक्सेस मिलता है, और वहां से बहुत सारा पैसा सामान बेचता रहता है अपने घर में। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर आता है भगवान दादा प्यारे लाल, तो देखता है कि उनका घर जैसे जो चीजें चाहिए था जो उन्होंने भेजा था वो कुछ नहीं दिखता, झोपड़ा है, और सभी अपने बहन को जो शादी के उन्होंने पैसे भेजा था, बहन की शादी नहीं हुई है, और उनके माता जी चल बसी है और पिताजी भीख मांग रहा है, इस तरह का सिचुएशन अब देखता है। तो यहाँ पर फिल्म का क्लाइमैक्स आता है। फिल्म में क्लाइमैक्स होने के बाद हैप्पी एंडिंग भी होता है, वैसे ही हैप्पी एंडिंग हुआ, लेकिन मैं अभी लेके जा रहा हूँ आपको इसी फिल्म का एक खूबसूरत नगमा आपको सुनाने वाला हूँ, जो बहुत ही पॉपुलर था 1951 में, और ये गाना शादियों में अक्सर बजाया करते थे लोग। जी हाँ, ये गाना
1: बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
0: जी हाँ, इसे खास राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, और सी रामचंद्रन ने संगीत से संवारा है, और फिल्म अलबेला 1951 का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। आंसू मिलेंगे मेरे न फिर तेरे कह कहे, सुनी हर एक राह गुजर छोड़ जाऊंगा। संसार में अकेला तुझे अगले जन्म तक है छोड़ना मुहाल, मगर छोड़ जाऊंगा। उस पार जा सकेगी तो यादें ही जाएगी, जो कुछ इधर मिला है उधर छोड़ जाऊंगा। यहाँ नूर साहब की ये कुछ चंद गजलें आपको सुना रहा हूँ रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए बात करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी 1955 में, जिसे रमेश सहगल ने लिखा था। मनमोहन कृष्णा जो असिस्टेंट राइटर थे उनके, और फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सहगल साहब ने। और इसमें कलाकार थे नलिनी जयवंत, शीला रमानी, जॉनी वॉकर के साथ बहुत सारे और कलाकार भी थे। 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम का ये फिल्म आया था। ये रेलवे प्लेटफॉर्म नाम से ही आप समझ रहे होंगे कुछ कहानी रेलवे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ, सही समझ रहे आप, रेलवे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई कहानी को इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि कुदरती आपदाएं आती हैं, और कुदरती आपदाएं आने की वजह से पैसेंजर को रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि रेलगाड़ी आती नहीं, जिसकी वजह से 24 घंटे पूरे उन्हें प्लेटफॉर्म पर ही बिताना पड़ता है। तो वो सिचुएशन को बताया गया नेचुरल डिजास्टर के बारे में, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे किस तरह से 24 घंटे लोग गुजारते हैं, उस सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। इस खूबसूरत फिल्म का एक खूबसूरत गाना जो बी अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि ये।
1: बल्ली पर्वत पर्वत जाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बल्ली बल्ली पर्वत पर्वत जाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा।
0: जी हाँ, साहिर लगानवी साहब का लिखा ये गाना, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, संगीत मदन मोहन का, फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 का। अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बल्ली पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बल्ली बल्ली पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल

0: बंजारा लेकर दिल का एक तारा।
1: वाह भैया वाह, काश तो लो आना सच्ची बात कहवाए, सब दुनिया के दौलत यही रह जाए।

0: તમ તો મને ચોર કહેતે થે ને મારે સે ભી ડબલ ચોર નીકળે હે યા બુઢ્ઢે કી બિચારે કી સારી ધંધોલત લઈને ચાલ્યો હે કઈ નહીં કઈ નહીં
1: નેના મારી એક વાત માનેગી મને ઇનકાર તો નહીં કરેગી ના
2: ઇનકાર ના કરના નેના મેં શેઠજી કી આંખો મેં પશ્ચાતાપ કે આંસુ દેખ રહા હું
1: યા લે इधर की सारी रकम
2: देख जी अट्टी में से सारी रकम निकाल रहे हो
1: भूल को प्रायश्चित कर रहे हूँ देखो भाइयों ये सब रकम तुम्हारी है न तुम्हारी तरफ से या बिटिया को शादी को तोहफो
2: नहीं नहीं सेठ जी
1: तुम चुप रहो तू तो लोभी है
3: देवी को छोड़ के उस पैसे वाले के पीछे भागा था
2: सेठ जी मगर ये सब धंधा आपने किया क्यों
4: अरे हमारे मन में लालच आ गई लालच बहुत बुरी बला ये बुड्ढे को देखो ना लालच के वास्ते दुकान में कुओ बेच दियो और इसको तो तुम जानते ही हो कहते हैं और ये बड़े लोग ये बड़े लोग फर्स्ट क्लास में भी यही बैठने को देखे
3: हैं
2: देव जी हमारे देश के सब लोग लालच छोड़ दे तो देश कितना सुखी हो जाए
1: जल्दी भाई साहब गाड़ी छूटता है गाड़ी
5: मूर्ख है जो धन दौलत की चिंता करते रहते हैं दो दिल मिल जाए जिस घर में स्वर्ग की तो कहते हैं मर्जी पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल जाए सारा मर्जी मर्जी पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल जाए सारा
6: बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जा बंजारा। जी हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म का ये खूबसूरत गीत आपने सुना, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म मुझे एक पिक्चर का नाम है। जी हाँ, इस पर पूरी फिल्म जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर डिजास्टर के बारे में यानी आपदा हुआ था उसके बारे में बताएगा और उसमें लोगों का जीवन किस तरह से व्यतीत होता है वहाँ पर और किस तरह से लोग अपने मूल्यों को भूल जाते हैं उन सारी चीजों को वहाँ पर दिखाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी 1955 का रेलवे प्लेटफॉर्म का खूबसूरत गाना आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और फिल्म आई थी 1955 में ही, बारादारी। जी हाँ, ये फिल्म बहुत ही अलग टाइप का फिल्म था जो लगान पर फिल्म बनी थी, यानी राज्य में जो लगान लगता है किसानों पर उसके लिए आवाज उठाने वाले पर फिल्म बनी थी और इसमें बहुत ही अलग पिक्चराइज हुआ था, बहुत ही अच्छा फिल्म बना था और इसमें कलाकार थे अजीत हीरो का रोल कर रहे थे और उसके साथ ही बहुत सारे और कलाकार थे जिन्होंने काम किया, जैसे प्राण, गीता बाली, चंद्रशेखर, मुराद, मीनू मुमताज, गोपी, अजीत खान, रामायण तिवारी, बहुत सारे ऐसे कलाकार इस फिल्म में काम किया बारादारी में। और इस फिल्म को संगीत से सवारा था नौशाद साहब ने। इस फिल्म का निर्माण के अमरनाथ ने किया था। 1955 में ये रिलीज हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक खूबसूरत गाना जो बी अक्षर से शुरू होता है वो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। अपनी पलकों से उसके इशारे उठा, उसकी उंगलियों से इशारे उठा, ऐसा लगता है दोहरा रहा हूं मैं कुछ जिंदगी के पुराने सुमरे उठा। रोशनी का वो कैसा अजब शोर था, इस किनारे हुआ और उस किनारे उठा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका हम सफर सनी, खाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में। आइए बारादारी का ये खूबसूरत गाना। जी हाँ, इसे कुमार बारावाकी ने लिखा है, लता और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, नौशाद का संगीत आपके लिए खास। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो,

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आपका हम सफर सदी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना 1955 का, फिल्म 12 जारी का। तो आइए, 1955 में बहुत सारे ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनी थी जिसमें एक मैसेज जोड़ा था। तो 1955 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था यास्मीन। ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म बनी उस समय। फिल्म में जो हीरोइन थी वैजयंती माला थी, जिनका टाइटल रोल था यास्मीन का। रशीद खान, मारुति राव, एसएन बैनर्जी, श्याम कुमार, राजन, अक्षर और बहुत सारे कलाकार ने इस फिल्म में काम किया। इसके साथ ये कादर स्टूडियो के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी और इसे सी रामचंद्रन ने कंपोज किया था, म्यूजिक दिया था और जान निसार अख्तर ने इसके गाने लिखे थे। 1955 का ये जो फिल्म यास्मीन था, इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का मिला हुआ था द्वारका देवीचा को, जिन्होंने इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफी किया था। तो ये इस फिल्म का स्टोरी ऐसा है कि शेख नाम का व्यक्ति, बहुत प्रॉपर्टी उनके पास होती है और वो सभी को प्रॉपर्टी बना के दे देते हैं और उनसे टैक्स लेते हैं और उनसे कुछ पैसे भी लेते हैं। तो इस तरह का ये काम होता था शेख साहब का। और उनका लड़का सुरेश, सुरेश अपने बचपन में जो है मौज मस्ती में रहता है, लेकिन सुरेश बड़ा जैसे जैसे हो रहा है इसका डायवर्शन हो रहा है। तो इसीलिए वो फैमिली में नादिरा करके एक लड़की से, नादिरा से शादी करने का प्लान घर में बनता है। जैसे सुरेश को ये बात मालूम पड़ता है तो सुरेश इस शादी के लिए मना कर देता है। उसका जो प्यार है यास्मीन के साथ होता है, तो इसीलिए इस तरह का ये क्लाइमेक्स यहाँ पर बनता है। घर वाले उसे नादिरा से शादी करने के लिए कहते हैं और सुरेश यास्मीन से शादी करना चाहते। यहाँ एक स्टोरी में क्लाइमेक्स आता है। आइए बात करते हैं इस फिल्म का। बी अक्षर से शुरू होने वाला एक बहुत ही

0: बताना बेचैन नजर बेताब जिगर। आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: बेचैन नजर बेताब जिगर,
0: जी हाँ, इस गाने को लिखा है जान निसार अख्तर साहब ने, तलत महमूद ने इसे गाया है और सी रामचंद्र ने संगीत से सवारा है। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। खाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत 50s और 60s के गानों का आनंद आप उठा रहे हैं। 1955 का यास्मीन फिल्म का बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन नगमा आपने अभी सुना। आइए, नूर साहब की एक बहुत ही खूबसूरत शायरी इसके साथ मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं, वो एक साया है अपना हो या पराया हो, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है,

मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। वो जिस खुलूस की शिद्दत ने मार डाला नूर, वही खुलूस मकरूर मेरी तलाश में है। कठपुतली शब्द सुनते ही कहीं न कहीं एक मेले का दृश्य हमारे दिमाग में आ जाता है, जहां पर बहुत सारी शोरगुल हो और उस बीच में कठपुतली का खेल चल रहा हो, बहुत सारी कठपुतलियां नाच रही हो, ऊपर से कोई उन्हें नचा रहा हो। कितना अच्छा लगता है वो मनमोहक दृश्य। हाँ, कभी कभी हमारे गांव में भी आ जाते हैं इस तरह से खेल करने के लिए, देखकर खुश हो जाते हैं। कठपुतलियों का डांस, उनकी हाव भाव को देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। वैसे कहते हैं ऊपर वाले के हाथ में हम सब बंधे हुए इंसान कठपुतली की तरह है, वो जैसे नचाता है वैसे हम नाचते हैं। हम सब की डोर जो है उस ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है। और मुझे लगता है कि जब डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है तो उसे याद करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं कठपुतली शब्द से। चलिए फिर कभी बात करते हैं इस विषय पर, लेकिन अभी मैं आपको सुना रहा हूं कठपुतली फिल्म का एक खूबसूरत गाना, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ, अभी आपके लिए, जैसे कि ये

जी हाँ, लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत और इस फिल्म को खास डायरेक्ट किया था अमिया चक्रवर्ती ने और नितिन बोस ने। कलाकार थे बलराज सहानी, आधा जवार कौल, वैजयंती माला, पूनम, कमला, लक्ष्मण, शीला कश्मीरी, दुबे, श्याम कुमार और विजय, इन सभी ने इस फिल्म में काम किया था। बलराज सहानी और वैजयंती माला पर ये खास पिक्चराइज किया गया था कठपुतली फिल्म। तो चलिए सुनते हैं, आप सुना है रेडियो पूरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनिया आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। ख्वाबों का सफर, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। कठपुतली फिल्म बलराज सानी और वैजंती माला पर पिक्चराइज किया गया ये गाना, जब आप फिल्म में देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिल्म में देखने में बड़ा आनंद आता है, किस तरह से कठपुतलियां नाचती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्शन में वैजंती माला हूबहू नाचती है। तो ये देखते वक्त आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा और सुनते हुए भी आपने आनंद उठाया होगा गाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फिल्म के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, 1959 में अनारी फिल्म रिलीज हुई। राज कपूर पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म। राज कपूर, नूतन, ललिता पावर और बहुत सारे कलाकार इसमें थे। और ये फिल्म जो है एक आर्टिस्ट के ऊपर बना था, जो ईमानदार आर्टिस्ट है, वो अपने पेंटिंग्स बनाते हैं लेकिन वो गरीब है, इसलिए किसी के घर पे, यानी डिसोजा नाम की एक लेडी, उसके घर पे ये रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि

राज कपूर को एक पर्स बटवा मिल जाता है। बटवा देखता है और उसमें नाम होता है रामनाथ का, और वो उस जगह पर जाता है, उसकी दुकान पे जाकर उसे ये बटवा दे देता है। जैसे ही बटवा रामनाथ को देकर निकलता है तो रामनाथ को बड़ा अच्छा लगता है कि ये ईमानदार व्यक्ति मेरे लिए बटवा यहाँ मेरे दुकान पे ला के दिया। तो उसको पूछता है क्या कर रहे हो, फिर उसको अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है। इस तरह राज कपूर को नौकरी मिल जाती है। वहीं पर आशा यानी नूतन हीरोइन से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो कि रामनाथ की लड़की है, और वो दोनों का प्यार हो जाता है। और ऐसे में फिल्म में क्लाइमेक्स तब आता है जब राज कपूर जिस घर में भाड़े से रहता है उसकी जो मालकिन है डिसोजा, उसकी मौत हो जाती है। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है डिसोजा का, तो पता चलता है कि किसी ने उसे जहर दिया है, क्योंकि राज कपूर वहां पर भाड़े से रहता था उनके घर में, इसीलिए पुलिस राज कपूर को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। लास्ट में रामनाथ जो दुकान का मालिक है वो राज कपूर को बचा लेता है। तो इस तरह से फिल्म में हैप्पी एंडिंग बताया गया है। और इस फिल्म का स्टोरी यही बताता है कि ईमानदार व्यक्ति को मुश्किलें जरूर उसके जीवन में आती है, लेकिन वो बच भी जाता है क्योंकि अपनी ईमानदारी की वजह से। इस फिल्म से यही सीख मिलता है कि ईमानदार होने से हम हर मुश्किल से बच जाते हैं। वही एक खूबसूरत गीत इसी फिल्म का, जो भी अक्षर से शुरू होता है, बन के पंछी गाए प्यार का तराना। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनीरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते खम्मा गणी साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती?

0: क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है. सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन. इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे. आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना या उठना, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: हेलो कपड़े मी रसिक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात पुनेरी आवाज अर्थात 107.8 FM। आणि तुम्ही आता जे जगदीश सोबत रंगत आणि बहारदार कार्यक्रमात अलगची झलक मध्ये अलग तुमची रसिक श्रोते हो, झलक आमची। अलग कपड़े मी रसिक श्रोते हो, आज 9 नोव्हेंबर 2025 आणि तुम्ही ऐकत आहात प्रयोग क्रमांक 178। आतापर्यंत ऐकलेल्या अलक एकापेक्षा एक सुंदर होत्या, बहारदार होत्या, अभ्यासपूर्ण होत्या, चिंतन मनन करायला लावणाऱ्या होत्या आणि आशय संपन्न होत्या। ऐकूया पुढची अलक जी आपल्याला पाठवले मुंबई येथून अलककार सौ शीतलादेवी सुनील कुळकर्णी यांनी। त्यांनी दुकानात काम करणारी महाविद्यालयात शिकणारी ती मुलगी पाहिली, जी काम करता करता मध्ये आपला अभ्यास करत होती, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यासमोर आपला मुलगा आला, जो क्लास लावून भरपूर पुस्तके घेऊन देऊन सुद्धा अजिबात अभ्यास करत नव्हता। अलककार शीतलादेवी अर्थात ज्याचं त्याचं प्राक्तन, ज्याचं त्याचं नशीब, अभ्यास करणं किंवा कष्ट करणं हे प्रत्येकाला जमतच असं नाही, त्याला दुसरा कोणत्या तरी कल असेल, पण मिळालेल्या ज्ञानाचा, मिळालेल्या संधीचा उपभोग घेता येत नसेल, उपयोग करून घेता येत नसेल, तर आपण खरंच करंट

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंट्रल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: हेलो यश।
2: हाय सनी भैया। हाय शशि भैया।
1: और कैसे हो यश?
2: बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छा हूँ। वैसे आज रेडियो में आके अच्छा लग रहा ना?
2: हाँ,
1: दृष्टि नहीं आई।
2: हाँ, किसी काम से घर रह गई।
1: घर तो अच्छा नहीं, पर यहाँ अच्छा लगता है ना?
2: हाँ, रेडियो में कुछ नया, एकदम अलग मजा है ना।
1: वैसे तुम्हारी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, बहुत अच्छी है।
2: शुक्रिया, आपकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है।
1: अच्छा, थैंक यू। सबसे अच्छा छोटा आदि की रिवाज है ना?
2: मस्ती कर भी उतना ही है।
1: हाँ वो तो है। पंकज कहाँ गया? पंकज नहीं आज वो भी।
3: हेलो बच्चों।
4: हाय दीदी।
3: क्या कर रहे हो तुम लोग?
1: हम लोग अपनी ना रेडियो की पुरानी बातों को याद कर रहे हैं।
3: अच्छा, रेडियो की पुरानी बातों

0: आज याद किया जा रहा है। हाँ भाई, तुम लोग को यहाँ आए हुए समय भी तो बहुत हो गया, इन दिनों तुम लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो एक काम करते हैं, चलो आज तुम लोगों की रेडियो से जुड़ी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं।
2: ओके दीदी,
0: ठीक है, मजा आएगा ना?
2: हाँ,
0: चलो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताओ, रेडियो मधुबन में सबसे पहले आना आप में से किसने शुरू किया?
2: मैंने।
0: सैंडी ने? आदि ने?
3: मैंने शुरू किया।
2: अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया।
0: तो आदि, एक बात बताओ, कब आए थे आप, कितना टाइम हुआ आपको आए हुए?
3: कम से कम एक साल।
0: एक साल? अरे वाह।
3: मैं पहले सताशी दीदी के साथ आया था, पर अभी जब सीखना शुरू किया है 5 महीने से पहले।
0: 5 महीने, अरे वाह। और सैंडी, आप कब आए?
2: 5 अप्रैल।
0: अरे वाह, आपको तो डेट भी याद है।
2: हाँ, मैं और पंकज साथ में आए थे।
0: और शशि?
4: मैं तो 2 महीने से आया।
0: 2 महीने। और यश को कितना समय हुआ?
1: 5 महीने।
0: अच्छा, तो इतने टाइम में आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की होगी, मुझे देख के लग रहा है आप लोग के चेहरे पे इतनी सारी खुशी तो नजर आ रही है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना? तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, सबसे ज्यादा मस्ती रेडियो पे किसने की? बताओ।
1: सबसे ज्यादा मस्ती मैंने की है।
0: सबसे ज्यादा मस्ती यश ने की है? तो बताओ यश, सबसे वाला मस्ती वाला मोमेंट आपका कौन सा था?
1: हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ स्क्रिप्ट थी, उनमें एक दिन हम लोग शाम के समय आए थे। उस दिन जैसे ही दीदी बाहर गए तो हम सब मस्ती करने लग गए एक दूसरे के साथ साथ। तब मैं सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, मस्ती कर रहा था, तो वो दिन था।
0: मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती की? और नए नए फ्रेंड्स बनाए कि पहले से जानते थे?
1: नहीं, नए नए फ्रेंड्स थे।
0: चलो, मतलब रेडियो पे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं आपके?
1: हाँ जी,
0: है ना? और आदि, आप बताओ।
3: एक दिन जब दीदी कहीं बाहर गई हुई थी, तब थोड़े थोड़े बच्चे आए हुए थे रेडियो मधुबन पे, तो मैं भी आया था, तो मैं नाचने लग गया था।
0: नाचने लगे थे? मतलब आदि को डांस अच्छा लगता है?
3: नहीं दीदी।
0: तो फिर इतनी खुशी हुई कि आप डांस करने लगे? अच्छा, मतलब सारी जो मस्ती है वो दीदी जब जाती है तब होती है क्या?
2: हाँ
1: जी।
0: अच्छा, और सैंडी, आप बताओ।
2: मुझे तो जब दीदी गई थी ना बाहर, हमारा ड्रामा चल रहा था, तो मैं उन्हें 30 जने थे, तब उस दिन बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने। फिर दीदी ने आने, हम थोड़ा डांटा भी था हम लोगों को।
0: क्या मस्ती की आप लोगों ने?
2: मजाक कर रहे थे सब जने,
0: एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। और शशि, आप बताओ।
4: दीदी एक बार बाहर गई थी तो हम वहाँ से 4-5 स्टूडेंट थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे संगीत की, तो दीदी ने बताया था खाली सारे गाँव में सीखना है, तो मैं कुछ गाना बजा रहा था उसमें, तो बहुत अच्छा ही लगा मेरे को। दीदी ने बोला था खाली सारा गाना सीखने के लिए मैं, पर लेकिन गाना मैं बजा रहा था उसके लिए, बहुत बुरा लगा था उसके।
0: गाना बजा रहे थे?
4: हाँ।
0: मतलब जो दीदी ने कहा वो आपने नहीं किया, इसलिए आपको बुरा लगा?
2: उस दिन वो मगन भी हो गया था, दीदी पास में घड़ी वही बजाया जा रहा था। मुझे घर जाके बोलता है, दीदी कब आई थी, मुझे बताना था ना।
1: मुझे भी उस समय यही कह रहे थे कि बताना चाहिए तो बताना चाहिए था।
0: अच्छा, मतलब शशि आपको गाना बहुत अच्छा लगता है?
4: बजाना गाना अच्छा लगता है मतलब।
0: अच्छा, अच्छा, ये मस्ती तो सारी जब दीदी गई तब आप लोगों ने की, दीदी के साथ कौन सी मस्ती की वो भी तो बताओ।
1: दीदी के साथ हम लोग पार्क में गए थे, सोलार पार्क में, उस समय बहुत मजा आई थी।
2: जो तो मेरी किस्मत खराब थी, मैं नहीं गया।
0: सैंडी ने?
3: मैं भी।
1: मतलब रेडियो की टीम, पूरी रेडियो की टीम सब गए थे साथ में, तो हम लोग कोई ना कोई अलग अलग गेम्स खेल रहे थे, संगीत गा रहे थे, कभी इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, तो तब बहुत मजा आई थी दीदी के साथ।
0: मतलब बड़ों के साथ भी मस्ती करने में मजा आता है ना?
1: दोनों तरफ अलग अलग मजे हैं, एक अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ बड़ों के साथ।
0: और शशि, आप बताओ।
4: मैंने तो मस्ती तो की नहीं, मतलब दीदी के साथ मस्ती तो की नहीं मैंने अभी तक।
0: मतलब मस्ती करनी अभी बाकी है?
4: हाँ, बाकी है।
0: वैसे तो हम दिन भर जब इंजॉय करते हैं शो के टाइम, तो वो भी तो मस्ती होती है।
4: हाँ, भी सही है,
0: है ना? और आदि,
3: जब हमारी बाल सुबह चल रही थी तब हम दोपहर को खाना खाने जाते थे, तो बहुत मस्ती करते थे वहाँ पे।
0: दोपहर में खाना खाने जाते थे, सब लोग साथ में खाना खाते थे?
3: हाँ।
0: और सैंडी?
2: हाँ दीदी।
0: आपने दीदी के साथ सबसे ज्यादा मस्ती कब की?
2: दीदी के साथ क्लास दीदी ने मेरी बहुत ली, पर मस्ती मैंने नहीं की।
0: अच्छा, शो के रिकॉर्डिंग के टाइम तो लेकिन मजा जरूर आया होगा।
2: हाँ, ऐसे दीदी भी अच्छी है,
0: बाकी मजा आता है रिकॉर्डिंग में।
2: हाँ।
0: अच्छा, ये तो हुई मस्ती की बात, अब ये बताओ आप लोगों ने यहाँ आके सीखा बहुत कुछ होगा?
2: हाँ,
0: है ना? कुछ तो नया हमें सीखने को मिला ही है।
1: हाँ जी।
0: तो सबसे पहले कौन बताएगा कि आपने नया रेडियो पे आके क्या सीखा?

0: बताऊंगा।
1: अच्छा
0: बताओ। मैं जब फर्स्ट टाइम रेडियो पे आया था तो बहुत सारे लोग थे, जैसे अब हम सभी बैठे हैं, तो उनमें से शशि भैया को छोड़ के बहुत से लोग थे। तब की बात है, दृष्टि और मैं नए नए आए थे। उसके बाद से आना शुरू किया तो पहले भी आया करता था। तब मैंने एडिटिंग सीखी थी, और वो मैंने एडिटिंग नाम तो सुना है लेकिन कभी की नहीं थी या ना कभी देखी थी। तो जब पहली बार किया था तब मेरे को एकदम अलग फीलिंग थी और अलग खुशी थी कुछ नया सीखने में। फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते एडिटिंग भी करने लगे। फिर बाद में दीदी ने बोला कि दूसरी उन्नति दीदी है, उनके साथ बैठ के एक शो भी करना, बच्चों की शो है वो उड़ान, तो वो उसमें भी कुछ नया किया। तो मतलब कुछ ना कुछ करते करते मैंने कुछ अलग अलग सीखा है।
1: अरे वाह, आपने तो बहुत कुछ सीखा है, एडिटिंग भी सीखी, शो करना भी सीखा,
0: और कभी कभी लाइव भी गया हूँ।
1: लाइव भी गए हो?
0: हाँ जी।
1: अरे वाह, तो लाइव में आपने क्या सीखा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
0: लाइव में सबसे अच्छी बात है, मतलब हम कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ सोचने वाली बात हो तो कुछ सोचो और नया अगर सीखे उसमें से, तो बात ऐसी है कि जो दूसरे लोगों के व्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम जब वो आते हैं, तब उनको सोच समझ के जब हम बोलते हैं, वो नई चीज मेरे को उसमें करने में बहुत अच्छा लगा।
1: सोच समझ के जल्दी जल्दी बोलना।
0: हाँ जी,
1: है ना। और आदि, आपने क्या सीखा अब तक?
2: मैं जब सबसे पहले आया था, मैं अपनी दीदी के साथ आया था, सताक्षी दीदी के साथ, तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग करना सीखा था, फिर थोड़े दिनों बाद एडिटिंग करना सीखा था।
1: अच्छा, आपने भी एडिटिंग सीखी? और रिकॉर्डिंग में क्या सीखा आपने, और आप क्या क्या सुनाते थे माइक पे पहले जब आए तो?
2: दीदी के साथ स्टोरी वगैरह सुनाता था।
1: मतलब आपने स्टोरी पढ़ना सीखा, सुनाना सीखा, है ना। और पैंडी, आपने क्या सीखा?
3: दीदी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, पर सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर सीखने को ये मिला कि मुझे बोलने के तरीके बहुत सुधरे, क्योंकि ना मुझे पहले बोलने में थोड़ा क्या शब्द गलत निकलते थे, कोई शब्द बोलने से पहले मतलब कुछ वर्ड का फंबलिंग होता था, वो काफी सीखा। फिर बाद में ये सब सीखा तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला भी कि तेरे मतलब की वर्ड्स अच्छे आते हैं, और अब तू वैसे लगता है कोई ने बड़ा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो मुझे ये सीखने को मिला। और यहाँ पर मुझे संगीत अभी चल रही है म्यूजिक, तो उसमें थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी सीखा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ।
1: एक्चुअली कमियाँ तो हम सब में होती हैं।
3: हाँ,
1: लेकिन जब हम उन्हें फेस करते हैं, उन्हें ट्राई करते हैं, तो फिर हम कुछ नया सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं।
3: हाँ,
1: है ना, जैसा सैंडी ने किया। सैंडी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो हम सबको एक बार तालियां बजानी चाहिए सैंडी के लिए।
3: थैंक यू।
0: मैंने एक और चीज सीखी, जब हम शोज करते थे तब कृष्णा दीदी से मैंने ये बात सीखी कि जब हम स्टोरी सुनाते हैं, पोयम गाते हैं, तो उसमें बोलने का ढंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ कम हो जाए, कहाँ किस तरह की आवाज निकले, कहाँ फनी वॉइसेस निकले।
3: हाँ, ये तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीखा।
0: और संगीत प्रैक्टिस से मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं संगीत में थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, मैं और अच्छा हो सकता हूँ।
1: बिल्कुल, प्रैक्टिस ही तो हमें परफेक्ट बनाती है, है ना। कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
0: बिल्कुल।
1: और शशि, आपने क्या सीखा?
4: मैंने इस वीडियो के अंदर पहले सैंडी भैया के द्वारा मैं यहाँ पर आया, और दीदी से बहुत बहुत ज्यादा हमने ज्ञान लिया। मैं सबसे पहले दीदी से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दीदी ने मेरे को बहुत मतलब कॉमिक्स किस तरह से पढ़ना है, किस तरह शब्द को पहचानना और किस तरह से बोलना है, और उसकी जो स्पष्ट है उसको प्रकट करना है किस तरह से, ये बहुत अच्छी तरह सीखा। और एडिटिंग करना भी बहुत अच्छी तरह सीखा यहाँ पर रेडियो के अंदर।
1: एडिटिंग सीखी और शब्दों को कैसे बोलना है ये सीखा, क्योंकि पढ़ने और बोलने में तो अंतर होता है,
4: और किस तरह फीलिंग के साथ बोलना है वो भी बहुत सीखा।
1: अरे वाह, आप लोगों ने तो काफी सारी चीजें सीखी हैं।
0: रेडियो मधुबन में मेरे पापा भी आया करते थे, तो उन्होंने कुछ कोशिश किया अलग अलग तरीके, कुछ कुछ एक्सरसाइज, जैसे सैंडी भैया ने बताया कि उनकी जो वॉइस है, तो पापा ने मतलब कुछ न कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी, तो वो एक्सरसाइज के द्वारा भी कुछ न कुछ नया सीखने मिला। जैसे सैंडी भैया, हम लोग कब अपने मन को बिल्कुल एक जगह स्थिर रखना चाहिए, एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, जैसे अगर हम लाइव जा रहे हैं तो कहाँ हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, ताकि हम गलत ना बोल दे या फिर हमारे वर्ड्स ओवरलैप ना हो जाए, तो वो प्रैक्टिस की है। तो मैंने जब वो प्रैक्टिस की तो मेरे को भी लगा कि मेरे कभी कभी शब्द ओवरलैप होते थे, वो भी होना कम हुआ है।
1: मतलब आपने फोकस करना भी सीखा।
0: हाँ जी।
1: इससे तो आपको हर फील्ड में बहुत ही हेल्प मिलती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट्स।
0: हाँ जी,
1: है ना,
0: कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे मेरे मार्क्स भी अच्छा आ रहे।
1: अरे वाह, रेडियो का फायदा मार्क्स पे। चलो एक बार यश के लिए भी ताली बजा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई है ना।
3: हाँ दीदी।
1: अच्छा, ये बताओ, एक कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है या ऐसी प्रॉब्लम है

0: आप लोगों ने फेस की, आप लोगों को लगा कि आपको रेडियो में दिक्कत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, या आपने महसूस की कि अरे ये मैं कर पाऊंगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा?
1: हाँ, मेरे पास थी कि जब दीदी ने मेरे को पहली बार कहा था कि शो करना है, और उन्होंने कहा था कि मतलब हमारे गाँव जा रहे थे, उन्होंने कहा था आने के बाद हमारे स्कूल भी शुरू होने वाले थे और कुछ 10-15 दिन ही थे, और दीदी ने हमसे कहा था कि 10-15 दिन में आप पूरे रेडी हो जाओगे। हर समय मेरे मतलब सुबह शाम ही चलता था दिमाग में कि कैसे 10-15 दिन में मैं इतना पतला पिकअप करके शो करूं, मतलब डर बैठा रहता था कि कैसे होगा। जब आए प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था। अब मेरा दोस्त आकाश के साथ में हम दोनों बैठ के कुछ न कुछ बोलते रहते नए नए, मतलब उस समय कुछ ना बोलता था और अभी कुछ न कुछ नया बोलता हूँ, तो चेंज है। पहले लगता था कि नहीं होगा, अब लगता है कि हाँ और अच्छा हो सकता है।
0: पहले डिफिकल्ट लगता था कि मैं इतना नया नया कैसे करूँगा।
1: हाँ जी।
0: हाँ आदि, आप बताओ।
2: पहले मैं जब शो करता था तब मुझे थोड़ा कहानी वगैरह बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि पहली बार आया था ना इसलिए।
0: और अब
2: ठीक हो गया थोड़ा सा।
0: आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो आदि ने अभी पोएम और कहानी बोलना, जोक्स बोलना सीख लिया है ना? अच्छा, और सैंडी आप बताओ।
3: दीदी मुझे तो कोई ना स्क्रिप्ट बोलना हो और कोई वर्ड्स से शो मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं सोचता था कि कब ठीक होगा। फिर पंकज ने मेरी काफी हेल्प की, हाँ ऐसा कर। फिर धीरे धीरे थोड़ा मैंने करा और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लेता हूँ। कोई भी स्क्रिप्ट हो तो मैं बोल लेता हूँ। पहले मुझे बोलने में बहुत टाइम लगता, अब फिर बोल लेता हूँ मैं।
0: और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा।
1: हाँ जी,
0: है ना। शशि आप बताओ।
4: मैं रेडियो में आया था, मेरे को पहले दीदी ने बोला कि आपको कॉमिक्स करनी पड़ेगी ऐसे, तो मैं कॉमिक्स के लिए बहुत डरता था किस तरह से बोलना है, किस तरह से फीलिंग के साथ बोलना है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। थोड़ा बहुत सीखा, मतलब इनके फ्रेंडों के साथ में मैंने थोड़ा बहुत सीखा किस तरह से बोलना है किस तरह से नहीं। तो फिर जब भी मेरी जो शब्द थे उसकी स्पष्टता नहीं आ रही थी, तो दीदी ने मेरे को सिखाया अच्छी तरह से किस तरह से बोलना है, वो भी मैंने सीखा है और बहुत कुछ रेडियो सीखा है।
0: जो हमारी शब्दों की स्पष्टता है, हमें कैसे बोलना है, कैसे रखना है, ये हमें सीखने को मिला। वेरी गुड शशि, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो हमें जिंदगी में हमेशा काम आएगा, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अपने बारे में थोड़ा सा और बताओ।
3: दीदी मैं फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर।
0: अच्छा, सैंडी बीकॉम फर्स्ट ईयर, लेकिन जब रेडियो में आए थे तब
3: 12th में था।
0: तब 12th में था, अब बड़े हो रहे हैं। और आदि?
2: मैं अभी 6th में हूँ, जब रेडियो उद्भव में आया था तब 5th में था।
0: अच्छा, मतलब आदि यहाँ पे सबसे छोटे है ना। और
1: मैं तो 7th में हूँ और जब रेडियो में आया था तभी भी 7th में ही था।
0: अच्छा,
3: तरक्की नहीं हुई तुम्हारी?
1: होगी ना, जरूर होगी।
0: हाँ अभी यश 8, 9, 10 सब रेडियो में सीखते सीखते आगे बढ़ना है ना।
1: हाँ जी।
0: और शशि?
4: मैं तो बीएससी फाइनल ईयर में था अभी।
0: बीएससी फाइनल ईयर आप कर रहे हो, अरे वाह। तो फिर तो शशि वैसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना।
3: हाँ जी, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है,
1: इनके पास कोई भी मैथ्स के सामने आओ ना कर लेंगे।
0: अरे वाह,
1: इसीलिए मैं मदद ले सकता हूँ मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, मतलब देखो रेडियो में आने से एक और फायदा।
3: अच्छा।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने अब तक रेडियो में क्या क्या किया है? आदि आपने क्या क्या किया है?
2: मैंने कहानियाँ वगैरह की, वो उड़ान में किया, बाल सभा के ड्रामास किए और उड़ान के लिए कॉमिक्स की।
0: और यश आपने?
1: मैं तो अब शोज करता हूँ, तो उसमें अलग अलग तरीके से कौन सी कहानी सुनाने का ढंग, पोएम्स, जोक्स और लाइव जाते समय किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है वो सीखा है।
0: और आपने कौन से टॉपिक पे कब लाइव किया आपने?
1: यो जंक्शन में किया है शो मैंने लाइव, तब मेरे को टॉपिक तो याद नहीं है, लेकिन एक कॉल पे मैंने जवाब दिया था। और बाल सभा के 30 ड्रामास किए हैं।
0: अरे वाह,
1: उसमें नए नए कैरेक्टर्स थे अलग अलग तरीके के।
0: और शशि आपने?
4: मैंने तो उड़ान शो के अंदर कॉमिक्स किया, स्टोरी को बोला उस तरह से किया,
0: कॉमिक सुनाया उड़ान में। और सैंडी आपने?
3: मैंने बहुत कुछ किया, एडिटिंग किया पर आधा किया छोड़ दिया, समझ में नहीं आया तो एडिटिंग अच्छी नहीं होती। फिर हम लोगों ने आपके साथ शो भी किया था बच्चों के दिन, और अभी कर भी रहे हैं। और फिर हमारे ड्रामास में किया हम लोगों ने 30 एपिसोड, जो कि यश ने बताया, उसमें मुझे ना कैरेक्टर बहुत अच्छे से मिले, कभी राजा के कभी नेगेटिव रोल, पर ज्यादातर मुझे ना अच्छे रोल ही मिले। विनोद भाई के साथ एक दो बार लाइव बैठा हूँ एजुक्शन पे,

0: तथा ऊपर से थोड़ी शर्म भी आती थी बोलने में। हिचकिचाहट थी।
1: हिचकिचाहट थी, अब तो नहीं है?
0: अब तो पता नहीं कहाँ से निकली।
1: और सैंडी?
2: मैं पहले दिन पंकज के साथ आया था और फिर दीदी ने वाला फॉर्म भरा, हम लोगों ने फॉर्म भरा, फिर एडिटिंग के ले गए मुझे। एडिटिंग पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन मैंने बोला अरे क्या एडिटिंग को समझ में नहीं आता। फिर हमारी प्रथम गुरु तो आप ही है ना, आपने हमें सिखाया था, मुझे याद है आईटी ऑफिस में मुझे और पंकज को और गुना को, फिर कैसा किस तरह पढ़ना वो सब। फिर पहला तो हमारा जो लाइव ही था मदर्स डे पर, मुझे भी तो याद है
1: मदर्स डे पे लाइव किया था।
2: हाँ, पहला शो मैंने लाइव किया था।
1: कुछ चीजें हमें पसंद होती हैं, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती हैं।
2: हाँ।
1: लेकिन हमें दोनों चीजें करनी होती हैं, है ना? और धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता भी जाता है।
2: हाँ।
1: और आदि आप बताओ, पहले दिन जब आप रेडियो में आए?
3: पहले दिन मैं दीदी के साथ वो पवित्र भाई के पास रिकॉर्डिंग सीखने गया था।
1: और आपने क्या सीखा था
3: वहाँ पे? रिकॉर्डिंग वगैरह सीखी थी।
1: अच्छा लगा था आपको?
3: थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा था।
1: और अभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि बहुत बहुत लगता है?
3: बहुत ज्यादा।
1: अरे वाह, थोड़ा थोड़ा से बहुत ज्यादा। और शशि आप बताओ?
4: मैं रेडियो में आया था तो पहली बार आया था, तो फिर मैंने देखा किस तरह से वो रेडियो में लाइव शो करते हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, सीखा था। और एडिटिंग भी देखा किस तरह से सीखा पंकज से, तो पहले मैंने एडिटिंग करना सीखा किस तरह से एडिटिंग की जाती है। और दीदी ने भी बहुत सिखाया था, मतलब किस तरह से बोलना है।
1: मतलब आपने टेक्निकल भी सीखा और बोलना भी सीखा पहले ही दिन?
4: पहले दिन सिखाया था उन्होंने पंकज जी
2: ने। सचिन ने दीदी से बहुत कुछ सीखी है।
0: मैंने एक और चीज की है, जब भी हमारे फैमिली मेंबर्स या कोई भी बाहर से आते था, कभी कभी पूरे रेडियो ना घुमाना या फिर पूरे शांतिन घुमाने में मेरे को बहुत मजा आती थी। मैं सोचता था कि कब मैं घुमा, तो मेरे एक बार यहाँ पे फैमिली मेंबर्स में से आए थे बॉम्बे से, तो मैं पूरा रेडियो मधुबन से यशवंत भाई से मिलाया था, सबसे मिलाया और लाइव शो दिखाया था, रूम दिखाया था और यहाँ पे भी स्टूडियो में लेकर आया था। तो उनको मतलब अलग अलग चीजें पता चली थी, तो उनकी इच्छा थी यहाँ आने की, मैंने पूरी की।
1: मतलब उसकी भी आपको बहुत खुशी है ना?
0: हाँ जी।
1: हाँ, तो देखो रेडियो से जुड़ी कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं। आज फिर से रिफ्रेश हो गया ना? और सबको कैसा महसूस होता है आज रेडियो में?
2: बहुत अच्छा।
3: बहुत ज्यादा,
0: एकदम
1: बहुत अच्छा।
2: तो लगता अपना घर है ये, पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, अब नहीं है।
0: अभी ऐसे जाने का मन ही नहीं करता।
1: और आगे जाके आप लोग रेडियो पे क्या करना चाहते हो?
2: मैं एक बहुत बड़ा आरजे बनना चाहता हूँ।
1: अच्छा, सैंडी आरजे बनना चाहता है। और यश?
0: सेम बट लेकिन डबल ट्रिपल मेहनत के साथ साथ हर अपने शो को पूरी तरह से अच्छे से सुनना, उसकी गलतियों को देखना कि कहाँ अभी भी मतलब लगे कि कहाँ थोड़ा बोर हो रहा है या फिर कहाँ कुछ गलती हो रही है, तो उसको बार बार चेक करना, ताकि मतलब शो एक एक करते करते ऐसा हो जाए कि मतलब स्पेशल हो। रेडियो मधुबन से शो यहाँ से निकला था, हाई लेवल पे पहुँचाना है जो मैं कर रहा हूँ अभी उड़ान का शो।
1: ये तो बहुत अच्छा है मैं, क्योंकि हमें मेहनत तो करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, और मेहनत करने का इम रखेंगे तो सफल तो होंगे ही, है ना? और बहुत जल्दी हम जरूर सुनेंगे, सैंडी को भी सुनेंगे और यश को भी सुनेंगे, सुनते ही रहते हैं। और आदि आप बताओ?
3: मुझे आगे जाके बड़ा आरजे बनना है।
1: शशि?
4: मैं रेडियो के अंदर टेक्निकल एरिया के अंदर जाना चाहता हूँ, मतलब किस तरह से रेडियो विकसित हुआ, किस तरह से रेडियो का विकास हुआ उस तरह से।
1: आप टेक्निकल पार्ट लर्न करना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रेडियो जब चलता है तो टेक्निकल और आपका जो ऑन एयर आप बोलते हैं दोनों की इक्वली मेहनत के साथ चलता है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपकी मेमोरी शेयर की, और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हम बनाते रहेंगे, आगे भी जुड़ते रहेंगे और अपने सभी श्रोताओं के साथ भी नई नई मेमोरीज क्रिएट करते रहेंगे, है ना?
5: हाँ दीदी।
1: चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय।
5: बाय बाय।

0: पर दाढ़ी,
1: ए पर अंधा, बी पर बहरा, सी पर काला, डी पर डबल।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन

0: बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया, इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड, मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज बात करते हैं विशेष करियर इन फोटोग्राफी के बारे में। जी हाँ, करियर इन फोटोग्राफी आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि कौन कर सकता है। जी हाँ, कोई भी कर सकता है। आज के समय में फोटोग्राफी तो सभी कर सकते हैं क्योंकि आज मोबाइल आपके पास आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी फोटोग्राफी का अपना एक अलग पहचान है। और 12वीं के बाद फोटोग्राफी कोर्स करके इससे अच्छा जो है आप करियर बना सकते हैं। आप 12वीं के बाद फोटोग्राफी में करियर बनाने के अगर इच्छुक हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये जो एपिसोड है बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ साथियों, इसके लिए आप एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और मास्टर डिग्री भी हासिल कर सकते हैं और अलग अलग विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों के साथ इसको कर सकते हैं। और फैशन फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी और अन्य मुख्य क्षेत्रों में इस तरह के अलग अलग फोटोग्राफीज कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 12वीं के बाद करियर चुनना एक बहुत ही मुश्किल और काम है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है जो आपके भविष्य को आकार देगा। इसीलिए अगर फोटोग्राफी में या चित्रों के माध्यम से कहानी लिखने का शौक रखते हैं आप, तो आपके लिए फोटोग्राफी पाठ्यक्रम का एक रोमांचक और रचनात्मक रूप से संतुष्टदायक करियर सिद्ध हो सकता है। तो आइए इसके बारे में बातें करेंगे और 12वीं के बाद फोटोग्राफी पाठ्यक्रमों का गहन जानकारी प्रदान करने के लिए ही आज हम इस एपिसोड में आपसे बातें करेंगे, जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, शुल्क और फिर मापदंड और इसके बाद करियर विकल्प कौन कौन सी जगह पे आपको अपना काम दिखा सकते हैं या आप अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं या फिर आप किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी बातों को आज के इस एपिसोड में जानेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आइए करियर इन फोटोग्राफी के बारे में आज बातें कर रहे हैं हम लोग, और फोटोग्राफी क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं, है ना। फोटोग्राफी विचारों, कहानियों और अनुभवों को एक इमेज या छवि के या चित्र के माध्यम से व्यक्त करने वाले दृश्य रचने की कला या शिल्प है। इसमें कैमरा संचालन, टेबल टॉप की बारीकियां, फोटोग्राफी में प्रकाश, स्थान, रंग और संरचना का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, और इन चीजों को जब आप शामिल करते हैं तो आपकी फोटोग्राफी निखर के आती है। एक फोटोग्राफर के रूप में आपको कलात्मक रूप से खुद को अभिव्यक्त करने और दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है। इसलिए फोटोग्राफी एक जो है आंतरिक और बाहरिक सुंदरता को दर्शाने का भी एक माध्यम है। फोटोग्राफी सिर्फ एक फोटो नहीं है, लेकिन उसमें भावनाएं भी जुड़ती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें एक फोटो कह देती है। तो इसी में जब आप फोटो खींचते हैं तो किस एंगल से, किस तरह से और किस भावना से, किस भावनाओं को उसमें दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या काम दिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें उसमें आ गई। तो अब ये हो गई फोटोग्राफी क्या है उसके बारे में, लेकिन अब बात करना चाहेंगे हम कि पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं, फोटोग्राफी पाठ्यक्रम को कैसे चुने। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोटोग्राफी उद्योग आज बहुत बड़ा उद्योग है, एक मनोरंजन का क्षेत्र इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति और नवाचार के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार फोटोग्राफी में करियर 17% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, और इसके अलावा हर साल फोटोग्राफरों के लिए लगभग 12,700 नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया के आगमन के साथ सिनेमा, टेलीविजन, विज्ञापन एजेंसियों और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुशल फोटोग्राफरों की मांग बढ़ रही है, इसलिए फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो सकता है, एक कौशल है। फोटोग्राफी का अध्ययन करके आप इस गतिशील उद्योग में योगदान देने के लिए अवश्य कौशल और ज्ञान को अवश्य प्राप्त करें, है ना। तो आइए मैं शुरू करता हूँ 12वीं के बाद फोटोग्राफी पाठ्यक्रम के लिए विशेष आप जो है किस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में रुचि रखने वाले छात्रों को कुछ चीजों के मानदंडों को समझना है, और इसके अंतर्गत जो चीजें आती है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको फोटोग्राफी में जाना है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फोटोग्राफी में BA जैसे डिग्री भी मिलती है, और इसे करने से आपके करियर में 4 चांद लगते हैं। छात्रों को आमतौर पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से अपनी 12वीं कक्षा तो पूरी करनी है जो नॉर्मल है, इसके बाद फिर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फोटोग्राफी में BA जैसे डिग्री हासिल करने की पात्रता आपको मिल जाती है ना। कुछ कार्यक्रमों में 12वीं के बाद के विषय के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएं हो सकती है, जिनमें अक्सर कला, ललित कला या फोटोग्राफी की पृष्ठभूमि वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप आगे बढ़कर करना चाहते हैं या सीधे 12वीं के बाद इस फील्ड में आना चाहते हैं। कई संस्थानों में फोटोग्राफी पाठ्यक्रम के लिए विशेष अंकों की आवश्यकता होती है, जो संस्थान और प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर लगभग 50-60% तक, यानी 50-60% तक भिन्न हो सकता है। प्रवेश परीक्षा में बात करें तो भारत में कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज एडमिशन यानी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, या प्रवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में आपसे अपने कार्य का जो पोर्टफोलियो है वो प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं। और यहाँ एडमिशन की प्रक्रियाओं के साथ साथ प्रवेश परीक्षा दृश्य कला फोटोग्राफी अवधारणाओं में आपकी योग्यता का परीक्षण भी हो सकता है,
और कभी कभी आपके कौशल का आकलन करने के लिए एक व्यवहारिक घटक भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आती है भाषा में प्रवीणता। यदि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और आपकी 12वीं कक्षा तक का शिक्षा अंग्रेजी में नहीं थी तो आपको IELTS या TOEFL जैसे मानकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से दक्षता प्रदर्शित करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो एडमिशन की प्रक्रिया में कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं जो लगभग प्रक्रिया के भाग के रूप में अनुशंसन पत्र, व्यक्तिगत निबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता रख सकते हैं। किसी भी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले संस्थान की वेबसाइट पर दिए गए पात्रता मापदंडों की जांच अवश्य कर लें और उसके बाद आप आगे बढ़े, है ना। तो फोटोग्राफी के जो सिलेबस होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें आती है जैसे कि फोटोग्राफी में डिप्लोमा। ये पाठ्यक्रम आमतौर पर 6 महीने से 1 साल का होता है और फोटोग्राफी के व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि बुनियादी कैमरा संचालन, कैमरा और इसकी तकनीकों को समझना, टेबल टॉप फोटोग्राफी की बारीकियों को सीखना, लेंस के प्रकार और उनके कार्य के साथ पोर्ट्रेट फैशन और वन्य जीव फोटोग्राफी को समझना है। तो ये विशेष रूप से फोटोग्राफी इन डिप्लोमे में आता है। इसके बाद अगर आप डिग्री लेते हैं, स्टिल फोटोग्राफी में बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए एक कोर्स है, ये डिग्री है 3 या 4 वर्ष का कार्यक्रम होता है जो फोटोग्राफी के सभी तकनीकों और रचनात्मक पहलुओं में व्यापक ट्रेनिंग प्रदान करता है। छात्रों को वन्य जीव फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी सहित फोटोग्राफी की विभिन्न शैलियों में परिचित कराया जाता है। इसके बाद स्टिल फोटोग्राफी में मास्टर डिग्री आप हासिल कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम हर महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर को अपनी कला को निखारने और समय में जमे हुए पलों को कैद करने की कला का एक उस कला को निखारने का अवसर प्रदान करता है। इसे 2 वर्षीय प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इस दौरान छात्र इमेजिंग की प्रक्रिया, कंप्यूटर आधारित ग्राफिक डिजाइन का व्यापक ज्ञान, आर्किटेक्चर को कैद करने की कला, विजुअल प्रोडक्ट्स की अवधारणा और कार्य करने के बारे में सीखते हैं। आधुनिक सुविधाओं और उद्योग में पेशेवर के मार्गदर्शन के साथ आप कुशल दृश्य खताकार के रूप में उभर सकते हैं जो फोटोग्राफी की दुनिया में गहरा प्रभाव डालने के लिए सक्षम है। तो ये खास बातें हैं। फोटोग्राफी में अध्ययन के मुख्य कुछ प्रकार होते हैं, मुख्य कुछ क्षेत्र होते हैं, उसके लिए मैं आपको आगे कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर इन फोटोग्राफी के बारे में बातें कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे किस तरह के कोर्सेस होते हैं, किस तरह से डिग्री प्रोग्राम होता है, वो सारी बातें हमने बताया। डिप्लोमा डिग्री एंड मास्टर डिग्री, तो इस तरह से अलग अलग जो डिग्री के बारे में और फोटोग्राफी के बारे में हमने बातें की। फोटोग्राफी में जो अध्ययन के मुख्य क्षेत्र आते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी का अध्ययन करते समय कई चीजें शामिल की जाती है, जिसमें हर एक चित्र सीखने का कला और शिल्प की व्यापक समझ का योगदान होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आता है, रचनात्मकता को बढ़ाना, वो फोटोग्राफी का एक बहुत ही उन्नत कला है। इसमें कुछ कौशल ये भी आता है, कैमरा संचालन करना, छात्र DSLR, ये जो कैमरा का एक कैमरा होता है इस प्रकार का, और मिररलेस सहित विभिन्न प्रकार के कैमरों का उपयोग, शटर स्पीड, ISO और लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कैमरा के साथ जुड़ी हुई ये सारी बात। दूसरा है प्रकाश यानी लाइट्स, स्टूडियो सेटअप और बाहरी स्थितियों सहित प्राकृतिक और आर्टिफिशियल प्रकाश व्यवस्था के लिए तकनीक जानना, ये प्रकाश व्यवस्था आता है। छवि संपादन मतलब इमेज प्रोसेसिंग जिसको कह सकते हैं, या चित्र प्रोसेसिंग कह सकते हैं, ये क्षेत्र पोस्ट प्रोसेसिंग और डिजिटल हेराफेरी के लिए एडोब फोटोशॉप या लाइट रूप जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में यूज करके छवि को, इमेज को बनाया जाता है, चित्र को खूबसूरत बनाया जाता है। अब इसके बाद एक और टेक्निक आता है, कलात्मक और रचनात्मक तत्व, वैसे संगठन। इस क्षेत्र थर्ड का नियम है, फ्रेमिंग, अग्रणीय रेखाएं और समरूपता और संतुलन जैसे सिद्धांतों पर केंद्रित रहता है। दूसरा इसमें आता है रंग सिद्धांत, कलर थेरेपी यानी कलर फोटोग्राफी में कलर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और रंगों का सिद्धांत को जानना फोटोग्राफी में एक बहुत बड़ा वर्क है। रंग योजना, कंट्रास्ट और रंगों के भावनात्मक प्रभाव को समझने में मदद करेगा। दृश्य कहानी सुनाना, सुनना, ये क्षेत्र विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से आख्यान या भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेगा तथा उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि एक सम्मोहक दृश्य कहानी कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो आगे एक और शैली और विशेषज्ञ, ये तीसरा जो पार्ट है इसमें आता है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। इस पाठ्यक्रम के दौरान बाहों को कैद करना और विषय को प्रस्तुत करने तथा चित्रों को बेहतर बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग करने की तकनीक सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आता है लैंडस्केप फोटोग्राफी। छात्र प्राकृतिक दृश्यों को कैद करने, प्रकाश को संभालने और प्रभावित परिदृश्य बनाने के लिए संयोजन का उपयोग करने के तरीके के बारे में सीखे। फैशन फोटोग्राफी आता है, मॉडल के साथ काम करना, स्टाइलिंग, स्टाइलिश करना और फैशन पत्रिकाओं या ब्रांडों के लिए आकर्षक छवियां बनाना। फोटो जर्नल, ये क्षेत्र नैतिकता, कहानी कहने की छवि, घटनाओं और समाचारों को सत्य और प्रभावित तरीके से प्रस्तुत करने पर केंद्रित किया जाता है। तो ये सारी चीजें भी फोटोग्राफी में आता है तीसरे चरण में। तो मैंने फोटोग्राफी पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से आपको बताया है, इससे अलग भी और भी बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती हैं, जैसे स्टिल फोटोग्राफी जिसको

एक सटीक फोटोग्राफी जहां पर मोमेंट्स नहीं होते, फोटोग्राफी में ललित कला का मिश्रण, फोटोग्राफी में विज्ञान का मिश्रण, फोटोग्राफी में कला का मिश्रण, स्टिल फोटोग्राफी में एमए भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी डिजाइन में आप मास्टर और डिजाइन एमडी कर सकते हैं, और फोटोग्राफी में ललित कला में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कुछ एक वर्ष के, दो वर्ष के, तीन वर्ष के हैं, इस तरह के अवधि में ये चीजें आप कर सकते हैं। तो कई बार भारत में फोटोग्राफी पाठ्यक्रम जो शुल्क है वो अलग अलग हो सकते हैं। पूरी कोर्स जो है उसमें 50,000 से 2,00,000, ये एक तरीका, ये एक फीस का स्ट्रक्चर है। और अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ये 1,00,000 से 6,00,000 के बीच में आता है। और फिर अगर इसके अलावा आप कोई और जैसे कि कार्यशाला या वर्कशॉप करते हैं तो ये भी 1,10,000 से 1,00,000 के बीच में होता है। तो अलग अलग डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग अलग पैसे हैं, तो वेरी भी करेगा। कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो अलग पैसे चार्ज करेगा, कोई और इंस्टीट्यूशन है तो वो अलग। तो ये आपके आसपास के क्षेत्रों के बारे में आपको पूरी जानकारी खुद को ही लेना है, तब जाके आप इसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर लेते एक और छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सी। आप सुना है रिजवान 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग आ गए हैं और आशा करूंगा करियर इन फोटोग्राफी की बहुत सारी बातें आपको हमने बता दी हैं। अब फोटोग्राफी एक बहुत ही रोमांचक करियर है और जो लोग फोटोग्राफी या इमेज से अपने आप को जोड़ते हैं, जिन्हें शौक है इन सभी चीजों को करने का, तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया करियर विकल्प है जो व्यापक रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे मनोरंजन उद्योग बहुत बढ़ता जा रहा है और विस्तार हो रहा है, कुशल फोटोग्राफरों की मांग भी बढ़ती जा रही है। 12वीं के बाद सही कोर्स चुनकर आप एक ऐसे सफर पर निकल सकते हैं जो न केवल आपकी रचनात्मक आकांक्षाओं को पूरा करेगा बल्कि आपके लिए ढेर सारे पेशेवर अवसर भी खोलेगा। चाहे आपका लक्ष्य ऐसी कहानियां सुनाना हो जो प्रेरित करे, मनोरंजन करे या विचार उत्पन्न करे, फोटोग्राफी में करियर अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। और AAFT में फोटोग्राफी कार्यक्रम की विविधता का अन्वेषण करें, जहां हम इस गतिशील उद्योग में आपके करियर को गति देने के लिए उपकरण

परीक्षण और नेटवर्क भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है। तो इसीलिए आज के समय में आप पहले तो आप इन सारी चीजों को सीखे, समझे और फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, फिर कभी मौका मिले तो अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अलग अलग फोटोग्राफी में टेक्निक यूज किया जाता है, जिसके बारे में फिर कभी मौका मिले तो जरूर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए करियर इन फोटोग्राफी का बस इतना ही। फिर मिलते हैं साथियों, और मैं चाहूंगा कि अगर आपका मन है इस फोटोग्राफी में, पिक्चर्स इमेजेस क्रिएट करने में, तो निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो है विकल्प है, और आप जरूर 12वीं के बाद फोटोग्राफी में डिप्लोमा करके आप ज्वाइन करें या किसी को असिस्ट करें, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है करियर बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना फोटोग्राफी में अच्छा करियर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है, दूरों की नगरी फरिश्तों का शहर है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं हर बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं
1: नहीं नहीं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सच पाए रखा शोला दबाए रखा हुस्न हमेशा रूठा रहता है खुदा गवाह हम सच कहता है।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रन नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपको नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आहे विवरण आणि माहिती

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: काम करते।
1: बार बच्चे हैं मरते मरते,
0: खाओ पियो मौज मनाओ, मौका फिर नहीं आना।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला,
3: अहो काय आला,

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंदित रहा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत करते हैं। जहां सेल्स को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्स से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीजों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जहां सेल्स को मैनेज करना शुरू किया तो उसके पहले सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को हम देखते हैं जहां हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहां एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी, क्योंकि उससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहां हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूं क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई

0: कि देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मेरा जीवन तो इन सब चीजों पर, इन सब लोगों पर, इन सब सिस्टम्स पर डिपेंडेंट है. मेरे पास क्या चॉइस है, मैं तो सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ. देन आई डू नॉट हैव द पावर. सो लेट्स बी कॉन्शियस.
1: देन द ब्लेम गेम एक्चुअली आल्सो स्टार्ट्स.
0: अच्छा,
1: सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है.
0: दैट इज वॉट ना, जहाँ मेरी चॉइस नहीं है तो फिर किसी और के कारण में नहीं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ये दिया भी टीटी को रात को सोने के लिए पैसे दिए भी, तो तुरंत क्या किया, किसकी गलती है? वो टीटी की गलती है. उसने मांगा, मैंने दिया. उसने मांगा, दिया किसने? आई चूज टू गिव, विच इज ओके, चूज टू गिव इट. बट रिमेम्बर, आई चूज, और इसका ये अकाउंट मेरा बना. एंड डू वॉट यू आर कम्फर्टेबल विद डूइंग. हमें जो कंफर्टेबल लगे हमें वो करते जाना चाहिए. एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम डूइंग इट, एंड इसका जो रेपरकशन है दैट इज मोस्ट
1: इम्पोर्टेंट. लेकिन सिस्टर शिवानी, हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कई चीजें करते वक्त, क्योंकि हमें हमें लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है. यू नो, तो एक सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, अगेन मे बी यू नो कि सिचुएशन ज्यादा हैवी हो गई या, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स
0: सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए, आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते?
1: नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगी, पर मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे.
0: फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकती? क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया? डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव, एंड देन वी से मॉरलिटी सेपरेट, स्पिरिचुअलिटी सेपरेट, प्रैक्टिकल लाइफ सेपरेट. व्हाई आर वी टीचिंग देम ऑनेस्टी एंड व्हाटएवर द होल लिस्ट? प्रैक्टिकल में तो वो देख रहे हैं ना हमें करते हुए. तो क्या एक बच्चे ने अभी अभी ये नहीं सीखा कि जीवन में प्रैक्टिकली चलने के लिए ये सब करना पड़ता है? तो उनकी लैंग्वेज भी आज ऐसे ही हो जाती है, ओ ये सब तो करना पड़ता है, इसके बिना तो नहीं चलता. दैट्स बिकम माय बिलीफ. मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग विद दिस बिलीफ कि ऑनेस्टी के साथ तो चलना पॉसिबल ही नहीं है. हु क्रिएटेड दैट बिलीफ फॉर मी? समवेयर आई सॉ इट हैपनिंग. एंड यही अगर आज एक पेरेंट जाग कर जाए पूरी रात, और परिवार भी पूरी रात जागे, हो सकता है वो बहुत रात अनकंफर्टेबल आपकी बीतेगी, बट यू जस्ट मेड योर चिल्ड्रन एंड योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर. योर चिल्ड्रन जस्ट लर्न्ड अ लेसन फॉर देयर लाइफ कि भले सिचुएशंस हो, हम अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. वैल्यूज ऐसे बोलने वाली चीजें नहीं होती है. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं. संस्कार देने वाली चीज नहीं होती है, संस्कार जीने वाली चीज होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे तो उन्होंने संस्कार सीख लिया, फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी, इट वॉन्ट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती, क्या होगा, अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना, लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके, इट्स अ चॉइस. बट आज जो हमने किया, जो हमने वो कर्म किया, इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, देव जस्ट लर्न्ड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम, उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है.
1: रिपरकशन क्या देखा कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकंफर्टेबल होके गया,
0: क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकंफर्टेबल. अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कम्फर्टेबल, डिस्कस इट विद देम, डिस्कस इट विद देम, ऑनेस्टी मेक्स यू स्ट्रॉन्ग.
1: दिस इज नॉट, यू नो, लाइक यहाँ पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह देंगे या कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमें जाग के जाना पड़ा, हाँ, बैठ के जाना.
0: तो घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज इतने मायने नहीं रखते हैं. ज्यादा मायने क्या रखता है? काम हो जाए, कम्फर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए. इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं. सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज.
1: इट मीन इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ.
0: तो कम्फर्टेबल वहाँ है ना, एट्स वी सेड. कम्फर्टेबल की डेफिनेशन क्या आपकी, किसकी कम्फर्ट? अब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमेशा कम्फर्ट किसका सोचते रहते हैं, इसका. अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ यही है, वही कर्म बार बार बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने गलत किया. झूठ पहली बार बोलो पता चलता है, मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला. उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से पहले? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट. मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई. लेकिन हम

0: कहेंगे, वो डांटेंगे, इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला. दैट्स जस्ट अ वे ऑफ रीफ्रेजिंग द होल थिंग. आई कैन से वो डांटेंगे, लेकिन मैं फिर भी सच बोलूंगी, नाउ लेट मी सी व्हाट हैपेंस, आई विल बी रेडी टू फेस. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा. तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है. बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं.
1: लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ. बट मोर इम्पोर्टेंट इज मुझे, मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है.
0: I'll tell you something. This has to be experimented within life. हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइब, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा. ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, ये पहले ही सामने वाले तक पहुंच जाते हैं. दिस सीम्स टू बी कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो मांगना ही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट. योर वाइब्रेशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वी हैव एंड प्लस आपके अपने प्रिंसिपल्स, ये नहीं कि आप एक जगह बोले मैं नहीं दूंगा, चार जगह वैसे आप देते हैं. सी दैट इज द क्वेश्चन
1: अगेन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरी टाइम.
0: आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है, दैट इज योर वाइब्रेशन. आपकी वाइब्रेशन ये, लेट्स से मैं सोचू कि टीटी को मैं पैसे नहीं दूंगा, ही शुड नॉट आस्क मी. लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता, जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ाकर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है. Now this same vibration will work now when I come in front of this person, because it's basically my thinking quality. Vibration situation specific nahi hota hai. This is something which is very fundamental jo hame samajhna padega. Hamare jo sanskar over a period of time bante ja rahe hain, that is my quality of vibration. Vibration is nahi main inke samne baithi hu aur main bahut positive soch rahi hu, ab inko mere se positive feel hona chahiye. Lekin abhi abhi main sara din mein 10 logon se mili and I was negative towards them, how will you feel positive with me?
1: क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी तो मुझसे गुजरी.
0: एब्सोल्युटली. सो इट्स बीन क्रिएटेड हियर. तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं. आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव इफ समवन हैज द करेज टू डू दैट. सी हाउ योर लाइफ रन्स. आने दो ना ऊपर नीचे, कितना आएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज्यादा मायने रखता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या वैल्यूज. आज हमारे को अपनी वैल्यूज की वैल्यू नहीं है. दैट इज द थिंग. ऑनेस्टी, ये क्या है, यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज्यादा भारी लग रही है, ये तो कुछ नहीं, ऐसे साइड पर रखो. इसकी अपनी ही वैल्यूज की वैल्यू कहाँ है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने में कितना देर लगती है. आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं, सोचते हैं ओ इजिली इजिली, क्योंकि एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार. लेकिन हर बार जब बोलते हैं पता है क्या कहते हैं, आई हैव नो चॉइस. आई हैव नो चॉइस. वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, वो ऐसे था. तब करते करते करते इस तरह से अपने आप को बहुत कमजोर बनाते जाते हैं. बहुत कमजोर बनाते हैं.
1: इन द स्टेटमेंट आई हैव नो चॉइस मेक्स मी
0: नीड्स टू बी रिमूव्ड.
1: लेकिन व्हाई आर वी अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी?
0: क्योंकि अगर इफ आई से कि दिस इज माय चॉइस, लेट्स से जब मैं आई वॉक इनटू एन ऑफिस जहां मुझे अपना काम करवाना है, एंड मैंने पहले से ये थॉट क्रिएट कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर से इधर तक मुझे ये देना है, तब मेरा काम होगा. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड माई सेल्फ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है व्हाट दे आर डूइंग. एवरीवन नोस. से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है. हर आत्मा को पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है. जब हम रॉन्ग भी करते हैं, हम क्योंकि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसकी, वी कन्वर्टेड इन टू अ राइट. सो व्हेन आई वॉक इन टू अन ऑफिस,
1: मेरे सर पे कंटिन्यूस हथौड़ा ना मारता रहे, मेरे कुछ गलत
0: सब कॉन्शियस माइंड या कहे वो कॉन्शियस जो बोलते हैं ना, मेरी कॉन्शियस प्रिक नहीं करनी चाहिए मुझे अंदर, तो मैं क्या अपने आप को कहती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम ही ना होता तुम्हारा, ये सिस्टम ही ऐसा
1: है।

0: एंड देन आई एक्चुअली कैन टॉक टू फोर पीपल. पता है आजकल का सिस्टम देखो कैसा है, ये सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है. अब ये कौन कहेगा मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए. एनी वन वॉन्ट्स टू से दैट? नो, एक्चुअली इट्स द ट्रूथ. आई डोंट हैव द करेज, क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चले तो हो सकता है थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं. थोड़ा सा काम जो 5 मिनट में हो जाता वो 5 दिन में होगा, हो सकता है 5 दिन में नहीं 5 महीने में होगा. फाइनली होगा जरूर, होगा जरूर. एंड नहीं भी होगा तो भी व्हाट इज माय प्रायोरिटी, दैट्स द क्वेश्चन. तो जो लोग अपने जीवन में अपनी वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी रखेंगे वो उस तले फिर किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है. लेकिन वो कर करके अल्टीमेटली उनका कभी नुकसान नहीं होता. चॉइस मेरी, डिसीशन मेरा, उसका जो रिपरकशन वो भी मेरा. लेट्स से आई वॉक इनटू एन ऑफिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैंने नहीं देने, आई एम नॉट गिविंग, तो आई शुड बी रेडी कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है. उसका रिपरकशन ये हो सकता है कि मेरा काम होगा ही नहीं. Am I ready for that repercussion? आप अपने repercussions को लेकर ready होने चाहिए.
1: लेकिन मैं thought को ही लेके जाऊं अगर कि मेरा काम होगा ही नहीं,
0: इसीलिए तो वो vibration ही हमने पहले create कर दिया. अब राजयोग से अगर हम वो ताकत ले रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा की ताकत हमें क्या है? Right thought create करना. That is the power I at least feel from meditation. So when I'm walking into a situation like this, if I can create a thought, one, मैं नहीं देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाली हूँ. देने की ऑप्शन को तो आउट ऑफ, मतलब अपने जीवन से ही बाहर कर दिया है, वो है ही नहीं ऑप्शन. दूसरी ऑप्शन, सामने वाला मेरे से मांगेगा ही नहीं. इंस्टेड ऑफ सेइंग सामने वाले तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो सिस्टम ही, क्या वाइब्रेशन भेजा सामने वाले के लिए? सामने वाला कौन है जो बैठा हुआ है?
1: वो भी तो एक प्योर सोल है.
0: सामने वाला मांगेगा ही नहीं मेरे से. आई ऑलवेज वॉक इन विद दिस थॉट, सामने वाला मेरे से नहीं मांगेगा. इट वर्क्स एंड द थॉट, काम तो होगा ही. लेट देयर बी ऑब्स्टेकल्स, इट्स ओके. लेकिन मैंने देने वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हो अगर लाइफ में, तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है. अभी क्या होता है, हम अगर एक आधी बार ट्राई भी करते हैं, लेकिन हमने वो ऑप्शन तो रेडी रखा हुआ ना, अच्छा मैं नहीं देता अभी एक बार, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन.
1: वो ऑप्शन रखिए कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये करूंगा.
0: आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली है. तो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स, वो चॉइस हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी प्रायोरिटीज बहुत राइट सेट की हुई है, कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज क्या है. एंड दिस इज फंडामेंटल, कि जितना आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देते जाएंगे तो आप अंदर से क्या होते जाएंगे. इट वर्क्स, इट वर्क्स. लॉट ऑफ पीपल विल से ऑनेस्टी वर्क्स, व्हाई विल इट नॉट वर्क? लॉट ऑफ पीपल विल से विदाउट करप्शन काम होता है, लेकिन वो कौन कौन कह पाएगा जो खुद उसके बिना काम किया होगा. लेकिन जो कर ही उस तरह से रहेंगे वो क्या कहेंगे, उसके बिना तो काम नहीं होता. तो ये क्रिएट किसने किया? हमने किया. चॉइस है, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन प्लीज अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से. हम चूज कर रहे हैं ताकि हम रेडी रहें
1: उसके रेपरकशंस के लिए.
0: रेपरकशंस की भी बात नहीं है, इट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स मी गो थ्रू लाइफ विद द थॉट कि आई एम लीडिंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट. इवन टूडे इफ आई गिव अ ब्राइब, I'm leading my life the way I want, not mere paas choice nahi, the system is like this, then I'm not leading the life the way I want.
1: I become very weak, actually very low. So but why I'm not ready to take the responsibility
0: of
1: my you know,
0: because agar maine responsibility li to mujhe change hona padega. Agar maine kaha system responsible hai, the system ko change hona padega, so I can keep waiting for the system to change.
1: Which will whatever.
0: चाहे वो
1: सिस्टम
0: नहीं, सिस्टम कुड बी एनीथिंग. सी सिस्टम नीड नॉट बी अ गवर्नमेंट ऑफिस, सिस्टम कुड बी माई हस्बैंड, सिस्टम कुड बी माई चाइल्ड, फॉर मी एनीथिंग. जिसके सामने मैं खड़े होकर कहती हूँ मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं अभी जो सोच रही हूँ जो कर रही हूँ वो इनकी वजह से, तो देन इनको चेंज होने की जरूरत है अगर मुझे ठीक होना है. मैं अगर जैसे वो झूठ बोलने का हमने एग्जाम्पल लिया, मेरा बॉस इतना गुस्से वाला है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो जिस दिन मेरा बॉस ठीक हो जाएगा
1: मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी.
0: सो वेट फॉर द बॉस.

0: change.
1: Oh my God,
0: wait for the boss to change. And then keep on doing your karma, just saying that I have no choice. But the repercussion will not go to the boss. Repercussion will come to me.
1: And we've understood karma's karmic philosophy. Kya kehti hai? Ki jaisa jo bhi karenge, uska phal to hume milega hi milega. Chahe kisi bhi raaste par hum chal rahe hon. Wonderful. I think somewhere jahan humne abhi tak hum sab kuch manage karte hain, jis maine shuru mein bhi kaha tha,
0: apni choices ko bhi manage karna.
1: Aur jaise hi self management pe aa rahe hain, nahi sir Shivani, jaise dekha, it means humne nazar apni taraf jab ki to wahan pe itni sari cheezein thi jo hame pata nahi tha ki hum kyun decisions le, hum kyun aisa behave kar rahe
0: hain. Actually hum isliye ye share kar rahe hain kyunki bahut log question mark raise karte hain jab unke samne koi baat aati hai, jab wo repercussion aata hai. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सबके माइंड में आज क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. आई मेट अ लेडी, शी लॉस्ट अ 2-year-old डॉटर, 2 साल का बच्चा. कहती है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे भगवान ही पसंद नहीं. ऐसे बहन आपको ज्ञान है ना कार्मिक फिलोसफी. शी सेड, यू नो सच अ स्ट्रांग स्टेटमेंट, शी सेड मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए. नॉट रेडी. क्योंकि जब वो हिच करता है, वो इतना बड़ा हिच करता है कि हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा. लेकिन नाउ वी नो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मैंने ही कुछ ना कुछ किया है. सिर्फ करते टाइम
1: पता ही नहीं. यहाँ पे भी तो इनफैक्ट इट्स आई एम अमेज्ड, यू नो वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट इट कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी चॉइस. क्योंकि इतना सटल है ये अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ, करती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ, क्या ये जितना करती जाऊंगी उतना संस्कार गहरा होता जाएगा. और अब हर बार हम ये कह के अपने आप को निकाल लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं कि इट्स नॉट माई चॉइस.
0: तो फिर परिवर्तन की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं आती.
1: वेरी ट्रू. इनफैक्ट ये बहुत समझ कर देखने की जरूरत है,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: कि हम किस तरफ जा रहे हैं. और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि जहां किसी भी सिचुएशन को के लिए जो हमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी तरफ ये भी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूं ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई मुझे पकड़कर नहीं कह सकता कि आपको इधर ही जाना है या आपको उधर ही जाना है. चाहे आप कितने भी अगर हम उसमें देखें सोसाइटी में या सिचुएशंस में कितना भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, और आज ज्यादातर लोग अपने आप को बहुत बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम शांति. सचमुच देखने की बात यह है कि जब सेल्फ की तरफ नजर गई तो बहुत सी अपने अंदर ही इनहेरेंट ऐसी बातें थी जिनको हमने स्वीकारा हुआ था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही सिचुएशंस में फंसी हुई हूं, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है. लेकिन जरूरत इस बात की है कि सचमुच समझें जब हम साइलेंस में बैठे या जब भी जो भी बात अगर कहीं पर भी आपको छू रही है ये बात, तो इस पर जरूर मनन करें, जरूर चिंतन करें कि क्या मेरे पास चॉइसेस हैं. और आंसर जरूर आएगा कि यस आई हैव द चॉइस. अब जानते हुए जब मैं उस रास्ते को चुनती हूं तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और फिर उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी. फिर उसका फल मुझे मिलेगा ही, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी, वो तो हमें अपने आप ही पता होगा जब हम उस रास्ते पर चल रहे होंगे. तो आज के इस पूरी बातचीत से जुड़ी कोई ऐसी बात या फिर सेल्फ मैनेजमेंट पर जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कोई आपके पास सवाल है आपका हम स्वागत करते हैं. उसके अलावा हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में खुले सेंटर्स पर आप जरूर जाएं और राजयोग का जो पूरा अभ्यास जो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं उसे जरूर करें, क्योंकि कहीं न कहीं जो परिवर्तन हम तलाश रहे हैं वहां आपको उसका राह जरूर मिलती है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की. और खुद को समझते समझते जब मैनेज करने की बात आ रही है तो बहुत सी बातें खुलती जा रही हैं. आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें. आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ, तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुना। बहुत दिन हुए, एक बार

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

0: नकली तोड़ा मारा था, असली तोड़ा हमसे सुनो।
1: सही नरेंद्र सही सही नाम तो सही तो सही नाम तो सही तो सही

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की जोड़ में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबके साथ हैं। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूं, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूं, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियां जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। बीमारियां हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रांग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा है कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वह थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
0: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
1: और एक जो इससे भी गुहे शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहां भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूं, कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए, अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा, और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस,
0: मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है,
1: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे कि
0: ये तो उसको थैलेमस, उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
1: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा, परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
0: क्या पर्टिकुलर

0: इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई उसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहां से यहां ना होने तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: पर क्यों होता है ऐसे?
1: अब यहाँ भी मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होगी उससे भी माइग्रेन होगा, पर जो स्पेसिफिक इमोशंस की जहां तक बात है यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है कि छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी को ही दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनके मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
0: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
1: और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
0: सफोकेटेड जब फील करते हैं।
1: हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए ये चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं,
0: या केवल फिजिकली, कई बार इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
1: हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
0: अच्छा, वो
1: लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है। हाँ। परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, सब पेट की बीमारियां हैं, वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इसको अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
0: जैसे शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है। यू नो, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है दिस माइट यू नो डिवेलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी। तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें।
0: बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं,
2: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है। तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट,
0: ऑर्गन्स ही वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
1: यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनालिटी तो बहुतों की है तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे हैं, तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे जो

0: सन्स जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी।
1: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उनका होगा,
0: पहले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है।
2: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है। डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील कि सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस।
1: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण?
0: हाँ हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं। एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते हैं झूठी भूख। व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है। ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है। और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा।
2: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हुएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है,
1: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाते।
2: अब हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं,
1: डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए।
2: क्यों मेरा बच्चा डिससेटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टूडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, यू नो, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस। क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टूडे, व्हाई नॉट 20 इयर्स बैक? फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी, इट मे बी वन फैक्टर लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना।
1: यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर हैं उतनी देर भी उनके साथ।
2: हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम। देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं। इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे, आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट, नॉट पॉसिबल।
1: इमोशनली नहीं कर पाते हैं। अब कैसे मुड़े? जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
0: बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो। मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। सत्यन जी, बाहर सबको पता चल रहा है कि इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ। तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है।
1: मैं आपको ये बता रही हूँ, इसलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही।
2: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें। द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट। अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवर सेल्व्स नाउ।
1: आई नो, सो ये रोशन चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं। आगे
0: अभी सेकेंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो। हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तो बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने लिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप डीप में नहीं गए। अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम।

0: बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा फिर, इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दी स्मॉलर थिंग्स।
1: वो एक सेकंड स्टेप होना चाहिए कि भी डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
2: अवेयर हो जाएं कम से कम।
1: हाँ या अवेयर हो
2: कॉन्स्टेंट,
1: और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, उस चीज को चेंज कर दो, तो जब शुरुआत हो रही है ना तभी कंट्रोल कर सके।
0: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ। दैट्स वाई कॉन्स्टेंट टेक अवेयरनेस, फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी। शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है, वी हैव सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपके जब इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे आपको खुद दिखाई देगा, जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई देगी, जैसे दिखाई देगी यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट।
2: वी फील गुड, हाउ यू फीलिंग, हाउ यू फीलिंग, यू नो।
0: नहीं बट फीलिंग तक भी नहीं पहुंचेगी वो
2: थॉट पर।
0: हाँ, फीलिंग में भी ना थोड़ी देर में आती है, जब एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ थॉट्स कुछ टाइम तक चल रही है देन आई स्टार्ट फीलिंग यू नो लाइक दिस, बट इफ आई एम एबल टू जस्ट लोकेट इट एट द लेवल ऑफ थॉट, व्हाई इवन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस प्लान, टू
2: फिर वापस लाने में आपको टाइम लगेगा। ओके, हमने ये सजगता रखी सारा दिन।
1: अभी नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि भी इसको हम चूज करें, हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं, या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं। जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं।
2: तो इट इज अ बुफे ऑफ
1: थॉट्स,
2: यू पिक देम अप व्हिच आर गुड फॉर योर हेल्थ।
0: Yes, beautiful, yeah,
2: absolutely. See, बुफे में भी हम बड़ा हेल्दी फूड चूज करते हैं, तो सिमिलरली
1: यहाँ पर भी हम वैसा ही फूड चूज करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है, है ना, जो आत्मा के लिए नरिशिंग फूड है, वही फूड मुझे चूज करना चाहिए। और नरिशिंग क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है वही नरिशिंग होगा। आत्मा को क्या पसंद है, शांति चाहिए उसको, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए, तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो, ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी।
2: जो अननेसेसरी हम यू नो इरिटेट होते रहते हैं दूसरों के बारे में, गलत सोच अननेसेसरी करते रहते हैं एक्चुअली, अगर अब आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, यू नो जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं, अब ये प्रोसेस क्या होगा?
1: चूज करने के प्रोसेस में दो चीजें होगी, एक तो ये है कि मैं जो चूज कर रहा हूँ कोई एक्सटर्नल चीज मुझे कंट्रोल कर रही है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है, ये जो मैं थॉट ला रहा हूँ कोई एक्सटर्नल बात को लाके ला रहा हूँ। मेरे ही पड़ोस में एक परिवार था कि भी उनके आपस में काफी झगड़ा हुआ, डिस्टर्ब हो गए। रीजन क्या था कि भाई उनकी ऑफिस में दूसरा जो फ्रेंड था वो सिंगापुर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, हम नहीं जा सकते, वी डोंट हैव सो मच सैलरी, उसी से डिस्टर्बेंस हो गया। तो वहां ये चूज करना चाहिए कि भी मैंने गलत चूज किया, ना सिंगापुर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर मेरे रिसोर्सेस वो अलाउ नहीं करते हैं बस मुझे अब इसमें चूज नहीं करना है, माई चॉइस इज कि भी मैं पीसफुल रहूं। भले भारत में भी कहां गए, थोड़ा हमने एंजॉय कर लिया और थोड़ा समय हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा साइलेंस में गए, तो उससे और ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, उसको मैं प्रिवेंट कर लूंगा।
2: तो ये एक चॉइस की जब बात आती है, अभी तक बहुत सारी चीजें जो है हम अपनी चॉइस से कर रहे थे, थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे थे।
0: अगेन, हमें जब तक उसका डैमेज नहीं पता था वी वर नॉट टेकिंग केयर, लेकिन अगर आज अगर डैमेज पता चल रहा है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पे डैमेज हो रहा है, डोंट यू थिंक वी विल स्टार्ट टेकिंग
2: केयर?
0: देखो, बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई करने की बात थी, ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे साथ, इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेट मी जस्ट टेल माई सेल्फ there's something happening.
2: I think they put my eyes at times. I'm feeling that we should do it the other way around. You know, let's look at the disease which we have.
0: But it's not then necessary that the disease tak manifest ho chuka hai. Ye bhi bahut important hai ki ho sakta hai mujhe aaj diabetes, thyroid, inme se koi problem nahi hai. Lekin meri thoughts chalti hain us quality ki, to kahin na kahin damage shuru ho gaya hai. Why wait? कल आपने कहा कि भाई साहब ने कहा वॉक भी वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग

0: है, तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बना कि बीमारी होगी तब हम ध्यान रखेंगे. ध्यान रख लें, वाई गो थ्रू द प्रोसेस, वाई गो थ्रू द प्रोसेस. एंड इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी, और मेरे आसपास जो एटलीस्ट मेरी क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनका भी ध्यान हो जाएगा. सी, मैंने ऑफिस में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई, मैंने बच्चों को गुस्सा किया, उसका इफेक्ट उन पर आया, मेरी वाइफ परेशान हो गई, उसका इफेक्ट उस पर आया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर. एंड फिर हम कह रहे हैं इन सब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशेस साइकिल.
1: एक्चुअली काम कराने के लिए, सी, जो जैसे आपने टाइप ही पर्सनालिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी, ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है, तभी तो वो एक्यूरेट बन पाता.
0: हाँ, लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेट बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं, लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए. एक छोटा सा दाग यहाँ से वहां मुझे इरिटेट ना करते तो वो वहां मैं परफेक्शन ले आऊंगा, लेकिन यहां मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट. तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेलबींग को सबसे ऊपर रखेंगे ना, कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो. कुर्सी टेबल सामान काम ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा, उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे. आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, दिस वी कैन टेक.
2: ये बात भी जो शिवानी बेन ने बताई ना बहुत गहरी है कि अचानक बीमारी नहीं होती है. आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझो मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है. कहते डिजीज एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं, उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है. या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दी है. हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में जरूरत से 5 गुना ज्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है. जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तब ही आपको सिम्टम्स होते हैं.
0: मतलब कितना डैमेज हमने
1: पहले कितना कर दिया है हमने. बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रांग था.
2: इवन जो ब्लॉक्स कहते हैं ना कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं 4 सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ आराम से. जब वो 75-80% होगा तब ही एंजाइना का पेन शुरू होगा. तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो मैं अगर इस बात को समझ लूं और ध्यान रखूं तो दिक्कत नहीं होगी.
1: तो क्या मैं अपनी इमोशंस से, अपने इमोशंस पे काम करके, मेरे को जो अब बीमारी है सपोज हो गई है, उसको हैंडल कर पाऊंगा?
2: डेफिनेटली. मैं उसके पहले एक बात आपको बताता हूँ, इट मे बी नॉट क्वाइट मोटिवेटिंग. कुदरत ने अगर ऐसा किया होता कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आया, बीमारी हो गई है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, खुद तकलीफ की, चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं.
1: इतनी दूर तक लेकर ही
2: नहीं. तो कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो अच्छा है.
1: लेकिन तब तक हमने संस्कार बना लिया उसको, अपना हैबिट बना लिया.
2: फिर नहीं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है.
0: जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड. फाइनली व्हेन दे गो यू नो मोर देन उनकी जो लिमिट थी, देन दैट विल कम आउट एज एन आउटबर्स्ट. सो मे बी आवर बॉडी ऑल्सो जस्ट देन इट्स लाइक एन आउटबर्स्ट के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास. बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर दिया है.
1: तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते रिश्ते भी
0: हो ही रहा है, और बॉडी में भी. इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है, सारी उम्र लेनी है.
1: हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई
0: और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे.
2: होता है ना, 3-3 बार सर्जरीज हुए, ऐसे कितने सारे लोग हैं. और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. जैसे कि भी हमारे शरीर को कई न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी, विटामिन ए अच्छा होगा आपकी आईसाइट अच्छी होगी. तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी, सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए
1: स्ट्रांग करने के लिए.
2: हाँ, और वो अगर आप में है, किसी भी सिंपल सी चीज भी.

0: स्पिरिट का कनेक्शन प्यार के साथ है। जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। कहते हैं हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो। लव फ्लो जितना ज्यादा है हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए कि भी जो सत्म जीवन में सेटिस्फेक्शन सुख का अनुभव करते हैं उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। दिमाग को ज्ञान चाहिए, जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा
1: है उनके लिए।
0: हाँ, उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिश डिफरेंट ऑर्गन्स को। लंग्स को पीस चाहिए, आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी। जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा।
1: तो अस्थमाटिक अगर है लोग
0: तो उनको जो पीस मिले ज्यादा तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए। कहा भी गया ना कि बेनी आंख कमल नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है। और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए, जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको आनंद चाहिए। आज ना एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है। अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे।
1: दिस इज एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट। अब इस पर काम करके हम अपनी सारी बीमारियों को एक्चुअली रिवर्स कर पाएंगे। ये तो बात रही, आज जो हमने रियलाइज किया कि सारे दिन में हम जो जो जो जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली, यू नो, लेकिन क्रिएट, आई एम सेइंग द राइट वर्ड नाउ, दैट वी आर क्रिएटिंग, वी आर चूजिंग, वी आर क्रिएटिंग। सो और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा, उस पर और बात करेंगे। और हील अपने आप को हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच ओम शमशी। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो गए थे। शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत जरूरी था, उसकी दर्द, उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी। आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है, बल्कि अपनों को अभी जो बड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम ना कर तुम तेरे कर तुम ना कर तुम हम तुम लगातार हिफाजत लगातार पता पर मरकत करामत ताते केता ताते केता ताते केता ताते केता थैया थैया थै तकतदुम तकतदुम तकतन्या

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं
1: बैरकपुर छावनी की 19 नंबर की पलटन का एक जांबाज सिपाही था मंगल पांडे। बलिया के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे ने

अपनी दिलेरी से अन्य सिपाहियों को ये बताया था कि अंग्रेजों का सशस्त्र विरोध भी किया जा सकता है। 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़काने का सेहरा मंगल पांडे के सिर बांधा जाता है। सन 1857 की क्रांति महज चर्बी लगे कारतूसों की कहानी नहीं बल्कि अंग्रेजों की गुलामी को उखाड़ फेंकने की एक अनूठी पहल थी। ये एक ऐसा संगठित प्रयास थी जिसके पीछे कई दिनों की तैयारी लगी थी। इस क्रांति ने अपना पहला हस्ताक्षर दर्ज किया था 22 जनवरी 1857 को, जब कलकत्ता के दमदम इलाके में एक मजदूर ने एक सैनिक को कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की खबर दी थी। इस खबर से हिंदू और मुसलमान दोनों की ही भावनाएं आहत हो उठी थी। बैरकपुर छावनी में 9 फरवरी 1857 को 19 नंबर की पलटन के सैनिकों ने कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इनमें मंगल पांडे भी था। अंग्रेज अधिकारियों ने एहतियातन वर्मा में तैनात गोरी पलटन को बैरकपुर बुलवा लिया और 29 मार्च को एक बार फिर 19 नंबर की पलटन के सामने कारतूस पेश किए गए। मंगल पांडे के नेतृत्व में पलटन ने धर्म और ईमान के नाम पर कारतूस छूने से फिर इनकार कर दिया। तब अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, मगर मंगल पांडे को गिरफ्तार करने कोई आगे नहीं बढ़ा। मंगल पांडे ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। स्थिति को काबू करने के लिए जैसे ही लेफ्टिनेंट बाघ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मंगल पांडे ने उसे भी वहीं ढेर कर दिया। चारों ओर हिंदुस्तान हमारा है के नारे गूंज उठे। नारों की आवाज सुनकर एक और अंग्रेज अधिकारी बुलाई गई गोरी पलटन के साथ परेड ग्राउंड में दाखिल हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे और उसके साथियों का कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे एक देशभक्ति गीत गाते हुए मुस्कुराकर फांसी के फंदे पर चढ़ गए।

0: मजा आ गया खाने में, बाहर मजा ही कुछ और होता है। मजा आ गया खाने में, काका दी डावा।
1: और सुनाओ किशन लाल, अब सवारी किधर को?
0: फिलहाल तो बिस्तर को, सुबह उठकर बैरकपुर को।
1: तो मेरा भी एक काम करना किशन लाल।
0: आहो, दो काम बोलो जी।
1: बैरकपुर की थोड़ी सी मिट्टी एक पुड़िया में बांध लाना, जब अगली चक्कर आओ तो।
0: ओए मिट्टी, ओ मिट्टी का क्या करोगे कक्का?
1: माथे से लगाऊंगा, तू भी मत्था टेक के आना मूर्ख।
0: ओए काका, ऐसा क्या खास है बैरकपुर में?
1: आजादी की पहली जंग की पहली चिंगारी वहीं सुलगी थी बेटा।
2: पहली चिंगारी? अरे वाह काका, पिछली बार आपने बैरकपुर के बारे में कुछ सुनाया था हमें, काका बताइए ना कुछ।
1: मंगल पांडे नाम था उसका, बैरकपुर बंगाल आर्मी की 34वीं रेजिमेंट का जाबाज सिपाही मंगल पांडे।

0: अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जगाने वाला अमर शहीद मंगल पांडे अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए 1857 में हुए सशस्त्र यज्ञ की पहली आहुति बना मंगल पांडे।
1: कहो भैया भैरव प्रसाद, सुना है गांव से खबर आई है, सब कुशल मंगल तो है?
2: अब का बतावे मंगल भैया, हमारे भतीजे सोई कह रहे हैं कि फौज में भर्ती होंगे।
1: पगला गए हैं ससुर, और का?
2: अरे हमने तो कहलवा दी कि कौन और जरूरत नहीं है आने की।
1: समझाओ उनको, बहुत बदमाश है अंग्रेज अफसर वो लॉर्ड कैनिन, सुना है कोई नया कानून बनाया है।
2: कहाँ कह रहे हो भैया?
1: सच्ची, सुना है हमारी बंगाल

0: पत्नी को भी जहाँ हुक्म होगा जाना पड़ेगा।
1: ऐसे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यहाँ वहाँ के खान पान से।
0: अरे अंग्रेजों को क्या मतलब उससे?
1: अरे मतलब कैसे नहीं, हम सिपाही हैं उनकी फौज के।
0: सुना है मद्रास रेजिमेंट में तो ये कानून पहले से ही लागू है।
1: और इनकी हम नहीं जानत, पर अपना बंगाल आर्मी में बामन ही बामन भरा है, यह नहीं हो सकत।
2: अंग्रेजों की नजर में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हैसियत गुलामों से बेहतर नहीं थी। यही वजह थी कि अंग्रेज अधिकारियों का हिंदुस्तानी सिपाहियों से बर्ताव गुलामों सा रहता था।
0: अंग्रेज अफसरों के बुरे बर्ताव हद पार कर रहे हैं।
1: मंगल भैया, जी करता है उड़ा दे लाल मुंह के बंदरों को। क्या कहते हो रहमत खान?
3: हमारे मामू बता रहे थे कि मेरठ, कानपुर और दीगर ठिकानों पर भी कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत की तैयारियां चल रही हैं।
0: हमारे लिए नई बंदूकें मंगाई गई हैं।
1: सुना है कारतूस भी अजब ढंग के हैं, जिन्हें चलाने से पहले मुंह से उनके सिरों को छीलना पड़ता है।
3: अजीब कारतूस हैं।
1: मंगल भैया, एक खुफिया खबर और है, ये कारतूस हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए मंगाए गए हैं।
0: ठीक सुना है, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी खबर है।
3: तौबा तौबा, हमारे दीनों ईमान से ये खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है।
1: मुंह से छीलना तो दूर, हाथ भी नहीं लगा सकते ऐसे कारतूसों को।
2: अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी हिंदुस्तानी फौज के लिए नई बंदूकें मंगवाई थीं। ये बंदूकें पुरानी बंदूकों से बेहतर थीं। रॉयल एनफील्ड नाम की इस बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों के बारे में फैली भ्रांतियों से हिंदुस्तानी सिपाही भड़क चुके थे।
0: हद पार कर रहे हैं।
1: मुंह से छीलना तो दूर, हाथ भी नहीं लगा सकते ऐसे कारतूसों को।
3: सर ने हुक्म दिया तब क्या करोगे?
1: हुक्म दुली
0: नहीं चलेगी अंग्रेजी चाल, जुल्म किया तो बन जाएंगे काल।
1: बाकी सिपाही
0: हमारा साथ देंगे, कौन धर्म भ्रष्ट करना चाहेगा अपना?
3: हमें पता चला है कंपनी सरकार के खिलाफ गदर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
1: आसपास के गांव में सुना है कि चपाती और कमल दे गया है कोई।
3: हमने भी सुना है, कोई कह रहा था गदर में शरीक होने की निशानी है ये।
0: साथियों, गदर हुआ तो हम उसमें शरीक होंगे, हम सिपाही हैं, गुलाम नहीं। अगर ये बात कंपनी सरकार नहीं समझती तो उसे हमारी शमशीर समझा देगी।
3: अल्लाह अकबर,
1: हर हर महादेव।
0: एक मुल्क के बंदे हैं हम, एक साथ जिएंगे,
4: एक साथ मरेंगे।

अंग्रेज एक एक करके हिंदुस्तानी रियासतों को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार बनाते जा रहे थे। इन कार्रवाइयों के खिलाफ हिंदुस्तानी रियासतों में न सिर्फ असंतोष पनप रहा था बल्कि वे अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष की तैयारियां करने में लगी थीं। ऐसे माहौल में नई बंदूक और कारतूस ने आग में घी का काम किया।

0: तुम लोगों के वास्ते कंपनी सरकार नया बंदूक और नया कारतूस मंगाया है। लेफ्टिनेंट बॉब तुम लोगों को इसका इस्तेमाल बतलाएगा।
1: यस सर। बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल, कारतूस को ऐसा माफिक मुंह से छीलने का।
2: ये कारतूस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है।
1: ये उल्लू का पाछा क्या बकता है?
2: कोई हिंदुस्तानी सिपाही चाहे हिंदू हो या मुसलमान इन कारतूसों को छुएगा भी नहीं, ये हमारा फैसला है।
3: मैं मेजर ह्यूजन तुमको ऑर्डर देता है।
2: मैं सिपाही मंगल पांडे हुक्म मानने से इनकार करता है।
3: तुम काला हिंदुस्तानी उल्लू का पट्टा
2: बस काली मत देना।
3: यू स्काउंडल
2: साथियों उठाओ हथियार और टूट पड़ो।

0: बुलाती खबर।
1: भाई मंगल पांडे रुक जाओ, तुमको शूट कर दूंगा।
2: मुझको शूट करेगा? मुझको
1: तो ये ले, संभाल ह्यूसन।
0: आगे मत बनना मंगल पांडे,
2: हिंदुस्तानी औलाद है ये, अंग्रेज की औलाद। मुझ पर गोली चलाता है, देख मैं फिर बच गया।
0: बॉब, लेफ्टिनेंट बॉब,
2: सर, संभल मेजर ह्यूसन। देखा हिंदुस्तानी का निशाना, लखन रहमत काट डालो, मार डालो फिरंगियों को।
3: ओम

0: उस दौर में देश की हवा सांप्रदायिकता के जहर से मुक्त थी। फौज में तो यूं भी जाति संप्रदाय मजहब के फासले मिट जाते हैं। हिंदू और इस्लाम दोनों ही मजहबों के सिपाहियों ने मिलकर तय किया कि मुसलमान सिपाहियों के मना करने पर हिंदू सिपाही और हिंदू सिपाहियों के मना करने पर मुसलमान सिपाही नए कारतूसों के इस्तेमाल को मना कर देंगे।
1: फिरंगी! Stop! You, Mangal Pandey! Stop! I said stop! Or I will shoot you, Mangal Pandey! Stop!
2: You scoundrel!
1: देख हिंदुस्तानी शमशीर का कमाल। मंगल पांडे पर जो हाथ उठता है उसे पांडे जड़ से काट डालता है। मर गया फिरंगी।
3: मंगल बच्चों, कर्नल वीरर तुम तक आ रहा है।
1: आने दो, मेरी तलवार की प्यास और पड़ गई है।
4: यू ब्लडी इंडियन,
5: बामन को छूना मत कर्नल, जान गंवा दोगे।
0: कर्नल व्हीलर ने स्थिति की गंभीरता को भांपकर वहां से भाग जाने में ही भलाई समझी। बगावत से निपटना भी जरूरी था। कर्नल व्हीलर वापस लौटा और अधिक विलायती फौजी अफसरों के साथ।
3: देखो, फिरंगी अफसरों का नया दस्ता इधर ही आ रहा है।
1: लाखन, उन्होंने मंगल को घेर लिया है।
3: जल्दी चलो, घोड़ो अपने घोड़ों को उस तरफ। मंगल, हम आ रहे हैं।
1: लाखन, तेज चलो, जीते जी तुम्हारे हाथ ना आएगा ये बामन। फिरंगियों, लाख कोशिश कर लो,

0: मंगल पांडे समझ चुका था कि वो घिर गया है और वहां से जीवित बच निकलना नामुमकिन है। अंग्रेजों की पकड़ में कायरों सी मौत उसे नामंजूर थी। उसने आत्म बलिदान का निर्णय लिया और खुद को गोली मार ली। पर अफसोस, गोली उसकी पसलियों को चीरते हुए निकली तो सही, पर उसके प्राण न ले सकी।
1: रहमत,
2: हाँ,
1: दो दिन हो गए मंगल भैया को गिरफ्तार हुए और हम कुछ नहीं कर पा रहे।
2: अफसोस तो ये भी है कि हमारा साथी फिरंगियों के नापाक हाथों की गिरफ्त में है।
1: इससे तो अच्छा होता कि गोली सीने के पार हो जाती।
2: अरे गोली भी डर कर सीने में ना

0: लड़की पसलियों को छूते हुए निकल गई मंगल के।
1: जानवर हैं ये फिरंगी अफसर, पता नहीं क्या हाल कर रहे होंगे मंगल का।
2: यू ब्लडी इंडियन, ये ले। बहुत बहादुर था मेजर ह्यूस्टन, लाजवाब ऑफिसर था लेफ्टिनेंट बॉब, ये ले। मंगल पांडे, तुमने उनका जान लिया। बेड़िया खोल दे तो तेरी भी जान ले लूंगा अंग्रेज। यू कंपनी सरकार का सिपाही होकर कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत।
3: कर्नल साहब, आपसे कुछ कहना है। पास आओ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, कान मेरे मुंह के पास आओ, कुछ कहना है आपसे। हाँ हाँ, हिलाइए।
2: थू, सुअर का बच्चा थूकता है, कर्नल व्हीलर पर थूकता है तू।
4: बेटा और कौन कौन साथी है तुम्हारा?
5: बहुत से हैं।
4: नाम बेटा?
5: क्या करोगे नाम जानकर?
4: यू ब्लडी नाम बोल।
6: पांडे, पांडे गन, पांडे पांडे,
4: पांडे पांडे, पांडे साथियों का नाम बोल।
6: मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे।
4: नहीं बताएगा तू? ये गॉड, ओ माय गॉड, चमड़ी उधेड़ देगा हम तुम्हारा। कर्नल व्हीलर को तुम जानता नहीं है अभी, यू ब्लडी इडियट। ओ माय गॉड, तुम किस मिट्टी का बना है?
5: हिंदुस्तान की मिट्टी का।
4: हम आखिरी बार पूछता है तुमसे, तुम्हारा साथी लोग का नाम बोल।
5: नहीं बताएगा।
4: तुमको फांसी हो जाएगा।
5: अफसोस नहीं,
4: तुम्हारा जान जाएगा।
5: एक ना एक दिन तो सबका जाएगा।
4: तो तुम नहीं मानेगा? नहीं मानेगा तुम? यू ब्लडी,
7: मंगल पांडे फौलाद का बना था, उस पर भला विलायती कोड़ों का क्या असर होता? अंग्रेज फौजी अफसरों ने मंगल पांडे की जबान खुलवाने के लिए कई तरह की यातनाएं दी, पर उसका सिर्फ तन ही नहीं, मन और मस्तिष्क भी फौलाद का था। मंगल पांडे की जबान खुलवाने की कोशिश नाकाम ही हो सकती थी और हुई भी। उस पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया।
8: मुजरिम मंगल पांडे अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर, ऑर्डर।
0: सर, मुजरिम मंगल पांडे फौजी अदालत के सामने पेश आए।
8: जुर्म?
0: अफसर का हुक्म जूली, कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स मिस्टर ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट का मर्डर।
8: मुजरिम को जुर्म कबूल है?
5: कबूलने ना कबूलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या?
8: पूछना अदालत का काम है।
5: तो पूछती रहे।
8: तुमने अफसरों के उकमदूली की है जो अनुशासनहीनता है।
5: मैंने धर्म भ्रष्ट होने से इनकार किया है।
8: तुमने मेजर ह्यूस्टन और लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या की।
5: अंग्रेजों को हम पर राज करने का कोई हक नहीं, इसलिए मुल्क से दो अंग्रेज कम कर दिए।
8: अंग्रेजों ने तुम्हारा मुल्क को हासिल किया है
5: धोखाधड़ी से, ना कि बहादुरी से।
8: कर्नल व्हीलर, आपको कुछ कहना है?
0: यस मी लॉर्ड, मुजरिम मंगल पांडे एक खतरनाक मुजरिम है, इसको अगर जिंदा छोड़ा गया तो फौज में बगावत फैलने का अंदेशा है सर, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
8: मुजरिम मंगल पांडे, तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है, बशर्ते तुम अदालत को बगावत का प्लान और अपने साथियों के नाम बता सको।
5: मेरी माँ ने मेरा नाम मंगल इसलिए नहीं रखा था कि मैं दूसरों का अमंगल करूं, और फिर बचना कौन चाहता है?
8: 29th मार्च 1850

0: 57 को जो अपराध तुमने किए यानी हुक्मदूली, बगावत और ब्रिटिश अफसर की हत्या, ये सिद्ध पाए गए और तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। फांसी बैरकपुर जेल में 8 अप्रैल 1857 को दी जाएगी।
1: सिपाही हूँ इसलिए गोली से उड़ाने की सजा देते तो बेहतर होता। याद रखना जज साहब, मेरी मौत चिंगारी का काम करेगी।
0: कर्नल व्हीलर, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि मंगल पांडे को इस तरह हैंग किया जाए कि ये फांसी और सिपाहियों के लिए एक सबक बन जाए और दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न करे।
2: यस मी लॉर्ड।
0: अदालत बर्खास्त की जाती है।
3: जलाया जा रहा काबा, लगी है आग काशी में, युगों से देखती रही हमारी राह झांसी, शिवा की आन पर गर्जो।

0: मंगल पांडे के लिए तय की गई फांसी की सजा की खबर देखते देखते पूरे रेजिमेंट में फैल गई। मंगल पांडे की चेतावनी सही साबित हुई। उसको दी जाने वाली फांसी ने मंगल के सभी साथियों को बगावत के लिए और उकसा दिया। मौत की चिंगारी भड़क चुकी थी।
1: अहमद खान,
2: हाँ?
1: अभी अभी खबर आई है कि हमारे साथी मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी जाएगी।
2: हाँ? हमें भी ये खबर मिली है कि मुल्क में दीगर रियासतों में भी कंपनी बहादुर की सरकार को हटाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
1: साथियों, हमें जल्द से जल्द उन ताकतों से हाथ मिलाना होगा। हमारा मकसद है फिरंगियों को हिंदुस्तान से खदेड़ना,
2: और हम कामयाब होकर रहेंगे। आमीन,
3: आमीन।

0: लखनऊ, कानपुर, झांसी सब जगह पहुंचा दी है। वहां से खबर मेरठ, दिल्ली तक पहुंच गई है।
1: एक तूफान बनकर उठा है मंगल पांडे। मेरठ में सिपाहियों ने कारतूस चलाने से मना कर दिया है, बहुत से फिरंगियों को मार दिया है और दिल्ली रवाना हो गए हैं।
0: झांसी, कानपुर, लखनऊ में फिरंगी भागे भागे फिर रहे हैं। दिल्ली पर हमारे साथी सिपाहियों का कब्जा हो गया है।
1: मंगल पांडे मरा नहीं, मंगल पांडे मरा नहीं करते।
2: शहीद मंगल पांडे केवल एक सिपाही नहीं था, वो प्रतीक था सामान्य जन का। 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खूबी यही है। वो क्रांति केवल कुछ रियासतों का संघर्ष न रहकर विदेशी ताकत को देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ने वाला जन सामान्य का संग्राम बन गई और यज्ञ वेदी की पहली बलि बना वीर मंगल पांडे। युगों युगों तक ये देश तुम्हें नमन करेगा मंगल पांडे।

निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डिजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर लिए, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: आला आला आला,
3: अहो काय आहे?

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
3: ओम शांति।
2: बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी लास्ट एपिसोड में कि भगवान की मर्जी, मेरा कार्मिक अकाउंट, और सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा और जिसे मैं थोड़ा डर भी गया कि मैं तो जब भी किसी को हर्ट करता हूं तो मैं या गुस्सा करता हूं तो एक तो मैं कार्मिक अकाउंट नया बना रहा हूं, पिछला तो लेके ही आया, और दूसरा जैसे आपने कहा था कि एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन ऑन ईच सेल ऑफ द बॉडी, तो मेरी हेल्थ कितनी खराब हो रही है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर की गोली डबल खानी पड़ेगी।
3: sure। और जैसे हमने देखा कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा। अब इसको यहाँ रखें बिलीफ सिस्टम पर, और अपनी पूरी चेन को अब देख लें, बिलीफ सिस्टम से थॉट, तो थॉट में कि मेरा हर कर्म, एंड कर्म भी कहाँ, थॉट लेवल पे, मेरी हर थॉट, वर्ड और एक्शन एनर्जी है जो मैं बाहर रेडिएट करती हूँ, ये मेरा थॉट होना चाहिए अब काम करने के टाइम।
2: फिर से आप रिपीट करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन
3: है। बिलीफ सिस्टम है, जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। आई राइट माई ओन डेस्टिनी, दिस इज माई ऑपरेटिंग
2: कर्म। मतलब थॉट भी कर्म है।
3: हाँ, मेरी थॉट इज कर्म, क्योंकि कर्म मीन्स क्या, कर्म मीन्स एनर्जी।
2: लेकिन मैंने एक्शन में नहीं लाया ना, अगर मैं अंदर गुस्से में आया

0: आपके बारे में कुछ सोच लिया?
1: तो सोचा तो मेरे पास आ गया।
0: ओ गॉड, आपने तो डरा दिया मुझे।
1: सोच सी, कर्म मीन्स एनर्जी जो मुझसे निकल बाहर जा रही है, एंड भाग्य मीन्स एनर्जी जो बाहर से मेरे पास आ रही है। आप अभी जो थॉट मेरे लिए क्रिएट करेंगे, जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो आपका कर्म, मेरा भाग्य
0: नहीं। समझा मैं,
1: आपने मेरे लिए कोई थॉट क्रिएट की, मतलब तीर आपने छोड़ा
0: जी,
1: तीर मिला मुझको, राइट? तो छोड़ने वाला कौन? आप। पाने वाला कौन? मैं। तो आपने छोड़ा वो तीर, तो वो आपका कर्म। वो तीर मुझे मिला, एनर्जी जो मेरे पास आ रही है वो मेरा भाग्य। तो सारा दिन में हम जो तीर छोड़ रहे हैं वो हमारा कर्म है, और जो तीर हमारे पास आ रहे हैं वो हमारा भाग्य है। ये इक्वेशन सारा दिन में वर्क कर,
0: यानी कि जो तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं मैंने कभी छोड़ा होगा?
1: हाँ, वो तो है, वो तो डेफिनेट।
0: फिर ये तो फियर आ जाएगा ना सिस्टर, की मतलब सोचे भी नहीं, करें भी नहीं, डांटे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करे, तो करे तो क्या करे?
1: लेट्स से आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं अभी, और आपको ये पता है कि वही गिफ्ट आपके पास वापस आने वाला है, तो आप कैसा गिफ्ट देंगे? फिर आप वो गिफ्ट देंगे जो जब आपके पास वापस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सो जब नाउ आई नो कि वट एवर आई थिंक वो वापस आने वाला है, तो इट डजंट मीन कि सोचना ही नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि अच्छा सोचना है, क्योंकि सोचते हुए एंड दो बार हमें मिलेगा तीर जो आप भेजेंगे वो आपको दो बार मिलता है। एक बार छोड़ने के टाइम गुस्सा क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, रहम क्रिएट किया, वट एवर क्रिएट किया, पहली बार भी मिलता है, वापस आने के टाइम भी मिलता है, टू टाइम्स।
0: वो कैसे?
1: गुस्सा सपोज,
0: अच्छा,
1: करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना, एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना।
0: इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
1: एब्सोल्युटली। तो इसलिए अब इट्स ओके, अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है,
0: फियर होता है।
1: सी, दो ही ऑप्शन है, या तो हमें ये बात पता ना हो, या हमें ये बात पता हो। अब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारे गलत थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? बहुत सारी गलतियां हो रही है सारा दिन में, लेकिन एक है वो गलतियां ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद। तो विल देयर नॉट बी अ डिफरेंस?
0: बहुत फर्क
1: है ना। इवन अगर मेरा 20% भी कम हो गया वो बात याद रखने से, तो 20% तो सेविंग है, 20% टाइम तो बच गए ना। फिर तो फियर कैसे?
0: चलिए, फियर की जगह उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं।
1: अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग से मेरी प्रोटेक्शन हो गई। लॉ पता ही नहीं था तो फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम था, आपकी वजह से ये, या रीजन ही नहीं पता था क्यों मेरे साथ ऐसा
0: हो रहा है। भगवान है ना।
1: हाँ, पर क्यों? इवन अ सिंपल थिंग लाइक, क्यों मेरा सर भारी लग रहा है, क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है, तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन, ऐसा क्यों, ऐसा हैवीनेस है। वो हैवीनेस भी इसलिए थी, हैवी एनर्जी भेजी, हैवी एनर्जी वापस आई, तो हैवीनेस है। अच्छा, इसलिए है, तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर, टुमारो गोइंग टू बी अ डिफरेंट डे फॉर मी। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा, ध्यान रखेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट फियर, दिस इज पावर।
0: तो मतलब मोटी भाषा में, जब बीमारी का पता चल गया है कौन सी दवा से ठीक होगा, तो दवा लेना भी आसान हो गया।
1: Absolutely.
0: और बीमारी का वो भी आ गया।
1: और दूसरी भी चीज है, आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया।
0: हाँ,
1: देखो हमें परहेज कितने सब बताते हैं, ये इतना पानी पियो, इतना ये खाओ, ये धूप लो, ये लो, सब पता होते हुए भी, सब नॉलेज है, सब कंप्लीट नॉलेज है, फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं।
0: सही बात।
1: तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी। अगर मुझे जीरो नॉलेज हो तो मैं कोई भी चीज नहीं करूंगी, तो हेल्थ और खराब होगी। तो नॉलेज will always be power. इसीलिए knowledge is called power. लेकिन knowledge को use करने से power, सिर्फ पता होने से power नहीं। तो अब इस belief system को fix कर ले, ये जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब thoughts पे checking,

0: कि मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म। अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छा उनके लिए करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है। हम कैसा भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर, एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा, ये बात पता होने से कि थॉट, वर्ड, एक्शन, ये तीन चीजें कर्म है। इट्स नॉट ओनली वर्ड एंड एक्शन कर्म है, थॉट, वर्ड, एक्शन कर्म है। तो हमने धीरे धीरे फिर अपनी थॉट्स की क्लीनिंग शुरू करनी, फिर एटीट्यूड, फीलिंग, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी पे आना शुरू हो गया। अब जब हमारे पास कुछ बातें ऐसी वापस आएंगी जिसको हमने कहा डेस्टिनी, अब इनको फेस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक, परमात्मा पे ब्लेम नहीं, दूसरा नॉलेज कि ये कार्मिक अकाउंट, जैसे आपने कहा मेरी गलती थी ना, आज जो मेडिकल साइंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग की थेरेपी बन चुकी है कि आत्मा को रिग्रेस करें, उसको दिखाएं कि आपने ये किया था। जैसे ही उस सोल को ये पता चलता है मैंने ये किया था, उसको प्रेजेंट फेस करना बहुत इजी होता है।
1: लेकिन मुझे अभी से आसान हो गया बिना पीछे गए।
0: ये छोटी छोटी बातें है ना, जीवन में कुछ बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत बड़ी बातें होती है जो जिनका कनेक्शन इस जीवन से नहीं होता है। जैसे कोई दो लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, रीजन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बार बार धोखा, क्यों बार बार, रीजन नहीं समझ में आता है और वर्क करना नहीं आता है वो, अगर और उसका उनके ऊपर हेल्थ पर सपोज बहुत डैमेज हो रहा है, और वो व्यक्ति अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उनको पता चलता है ऐसे ऐसे आपने किया था, उसके बाद परिस्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही परिस्थिति को फेस करते हैं हीलिंग शुरू हो जाती है। अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें ये नहीं ढूंढना है मैंने क्या किया था, हमें सिर्फ ये मालूम होना काफी है मैंने किया था, मैंने कुछ किया था जिस वजह से ये आया है मेरे साथ,
1: मैंने ये किया था वरना ये मुझे कभी नहीं मिलता,
0: हो ही नहीं सकता, दिस हैज टू बी अंडरलाइंड इन माय लाइफ।
1: मतलब ऐसे सिंपल भाषा में, अगर आप दूध रखेंगे चूल्हे पर, गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे आग नहीं होगी तो उबल ही नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता,
1: सिंपल एज दैट,
0: एंड इट्स एज सॉलिड एज दैट। इसमें एक बार भी कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स एब्सोल्यूट सर्टेन, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस।
1: इतना पक्का, इसको फर्म बिलीफ,
0: इतना पक्का, और इसको इतना फर्म बिलीफ कि कभी भी बड़े से बड़ी भी बात आए इस बिलीफ में हिलना नहीं है कि नहीं ये मैं। एक हमारे पास बहन आई सेंटर पे, उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हुई अचानक कुछ। अब वो बहन तो सेंटर पर आती थी काफी समय से, उसको नॉलेज भी था कि जैसा कर्म वैसा, लेकिन जब ये बात आई कि 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, यू कांट टेक एट ऑल, एंड शी सेज भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने भगवान की इतनी पूजा की है क्या ऐसा। तो जैसे ही उस बहन को कहा, बहन आपको तो मालूम है ना, मतलब अपने कार्मिक अकाउंट, अपना कर्म, शी जस्ट शाउटेड एट मी एंड शी सेड, मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं होगा कभी जो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, यू नो दैट मच, क्योंकि बात बहुत बड़ी है ना, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, यस एक्सेप्टेड कि दर्द बहुत है, लेकिन फिर उस टाइम पर हम उस बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए
1: मुश्किल है,
0: लेकिन
1: मेरे लिए तो है,
0: मुश्किल है लेकिन सच है ना, सच है,
1: सच को फेस करना सिस्टर मुश्किल भी है ना, क्या करेंगे।
0: रियलिटी को जब फेस करते हैं तब ही फिर नेक्स्ट स्टेप ठीक उठाएंगे। अब सपोज ये बात हो गई है,
1: जानते हुए भी दर्द होता है,
0: दर्द है वो अलग चीज़ है।
1: मान लिया कि ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था इसलिए मैं दर्द मुझे हो रही है, ये दर्द हो तो रही है,
0: दर्द हो तो रही है। अब इतनी बड़ी बात जब आ गई मेरे जीवन में कि मेरे छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा, बहुत बड़ी बात है, दर्द बहुत है, ऐसे समय पर कोई भी लॉजिक, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बात हो सकती है, इससे बड़ी बात नहीं आएगी कोई किसी के जीवन में ऐसे समय।
1: मैं तो

0: हम पहले कभी ना कभी थे और जो पिछली बार का कार्मिक अकाउंट था उस स्टेज पर ही अब का कार्मिक अकाउंट स्टार्ट होगा। जो हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा कि मैंने मेहनत इतनी की फिर भी मेरे को सक्सेस 50% क्यों, सब पैरामीटर्स फेवरेबल है। सपोज जस्ट अ गेस, किसी जीवन में किसी और की मेहनत पर मैंने सक्सेस में ऑब्स्टिकल डाला हो, किसी और को सक्सेस मिलना चाहिए था, मैंने मिलने नहीं दिया, या मैंने कुछ ऐसा किया, आज मेरी सक्सेस में ऑब्स्टिकल आएगी, विच इज फाइन, वो आने ही है। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट जो मैंने पिछली बार किया था, क्योंकि ठीक है इग्नोरेंस, मुझे नहीं मालूम था, वो किया, लेकिन अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे सारे जितने प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं उसके साथ ये पैरामीटर एक्चुअली सबसे पावरफुल है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेकर आई है, अनेक कार्मिक अकाउंट्स है, अनेक संस्कार है, और कई बार शरीर ले छोड़ने से वो सारे बहुत इंटैंगल्ड हैं और बहुत पावरफुल हैं। अभी की ऑनेस्टी, अभी की डेडिकेशन, विल पावर, ये तो सिर्फ अभी का पैरामीटर है। तो अगर हम देखें, जो आपने कहा ये हमें लेजी तो नहीं करेगा, ये लेजी नहीं करेगा लेकिन अलर्ट तो करेगा, ये पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत पावरफुल है और अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई कैन डू एनीथिंग टू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट, आई कैन डू एनीथिंग। तो उस पे चिंतन नहीं, उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड फुल स्टॉप। ये जो मेरे साथ हो रहा है इट इज अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, फुल स्टॉप। नॉलेज, एक्सेप्ट कि इट्स अ रिटर्न ऑफ द पास्ट, क्वेश्चंस फिनिश्ड, क्यों हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा, नहीं, वो सारी एनर्जी लगा देंगे प्रेजेंट में, सारी एनर्जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने जो किया पास्ट में,
1: अब क्या करना है उस पे एनर्जी लगाएंगे।
0: जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, जब ब्लेम गेम खत्म हो जाती है, जब हमारे को ये पता चल जाता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव द पावर, तो फिर वर्तमान समय पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अब इस सारे पावर को प्रेजेंट के कर्म में लगाते हैं, तो पहले मेरे से गलत कर्म हुआ था लेकिन अब नॉलेज है तो अब मेरा कर्म कैसा होगा।
1: जैसे हम बिजनेस पे करते हैं कि भाई एक बिजनेस फेल हो गया, अब क्यों हुआ उस पर 2 साल 10 साल रिसर्च नहीं करेंगे, अब क्या करना है, बैलेंस शीट को ठीक करना है, नुकसान जो हुआ उसको भरना है, जो लोन्स बैंक से लिए वापस देने हैं, अब क्या करें।
0: अब ये जो आपने कहा इस इक्वेशन को, बैलेंस शीट को यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है कि पहले शायद मैंने लोन ज्यादा ले लिए थे, या मैंने ज्यादा कर्जा, ज्यादा कर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट की थी, दुख ज्यादा दिया था, अब मुझे अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है, तो अब मुझे क्या करना होगा। अब मुझे कई गुना ज्यादा सुख देना होगा, कई गुना ज्यादा प्यार से बात करना होगा, प्यार से सोचना होगा, तब मेरी बैलेंस शीट टैली होने लगेगी। अगर मैं पास्ट वाला संस्कार ही अभी प्रेजेंट में भी यूज करूंगा तो फिर कार्मिक अकाउंट कैसे चेंज होगा, वो तो उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। इट्स लाइक हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, इधर जाना था हम इधर चले गए, तो हम 10 किलोमीटर रॉन्ग रोड पर चले गए, लेकिन अभी नॉलेज आ गई ना कि रॉन्ग रोड पर है, तो अभी यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेके अगर हम 1 किलोमीटर भी इस डायरेक्शन में पहुंचे हैं, 10 रॉन्ग डायरेक्शन में गए, टर्न लिया, 1 किलोमीटर भी अगर राइट डायरेक्शन में आए हैं, एटलीस्ट वी आर टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, हम इस तरफ तो चलना शुरू हो गए ना। व्हाट अगर हम 10 की जगह 100 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे रॉन्ग के, तो इट डजेंट मैटर हम कितना रॉन्ग चले गए हैं, कितना डीप कार्मिक अकाउंट है, इट जस्ट डजेंट मैटर, इम्पोर्टेंट इज
1: मंजिल की तरफ तो जा रहे हैं।
0: अब टर्न कर लेते हैं, अब टर्न करके मंजिल की तरफ तो चले चलते हैं। एक बार टर्न राइट ले लिया, मंजिल की तरफ मुड़ गए, पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट वील नो वी आर ऑन द राइट रोड, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
1: जैसे मेरा पास बिलीफ था, बहुत फर्म बिलीफ था कि भाई एक बार, और उसके लिए मेरे पास बहुत वो भी थे रीजन, इतना काम होता है, मैं ही सेक्रेटरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकाउंट्स भी मुझे देखने हैं, इनकम टैक्स भी देखना है, घर भी चलाना है, भाई बहनों का काम है, मम्मी भी है, ये अपने आप में काफी रीजन देता था, इसलिए मैं कट शॉर्ट करके दो ही वर्ड बोलता था। कर दो बोला ना, बस कर दो, बोल दिया ना, बोल दिया. डोंट आर्ग्यू विद मी, आई डोंट हैव टाइम. मैं एक एक को समझा नहीं सकता हूँ. ये रूल्स बना दिए मैंने, कर दो. तो उसमें क्या हुआ, एक बिलीफ बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक कंट्रोल और एक एंगर से गुस्से के बिना काम नहीं होता, ये मेरा फर्म बिलीफ था. तो मैं अभी सोच रहा था कि जो मैंने गुस्से के साथ काम करवाया पिछले कई सालों से मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, तो मुझे जो उसके मैंने कार्मिक अकाउंट बनाए उसको मैं अब कैसे ठीक करूं.
0: जो बन गया वो फिनिश्ड, राइट? वो फिनिश्ड. अब
1: बैलेंस शीट की बात हुई,
0: हाँ.
1: लोन की बात हुई, मेरा कर्जा, उनका कर्जा मेरे सर पे है,
0: right.
1: अब मैं कैसे लौटाऊं?
0: इट्स नॉट उनका कर्जा, इट इज इम्पोर्टेंट इज मेरा संस्कार. संस्कार कौन सा क्रिएट हुआ? कंट्रोल करने का. अब कंट्रोल करने का संस्कार है, अब मुझे कौन सा संस्कार क्रिएट करना है?
1: प्यार करने का,
0: एक्सेप्ट करने का. कंट्रोल किया मीन्स जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, ये कंट्रोल. एंड एक्सेप्ट मीन्स जैसा आप कर रहे हैं वो सही है, मैं आपको राय दे दूंगा, आप राय भी देंगे. ऐसे
1: भी एक मेरे में प्रॉब्लम आता है, जो मर्जी करो भैया, अब मुझसे मत पूछना, फिर मुझे मत कहना बाद में आके कि मैं फेल हो गया.
0: विच मीन्स कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सही पता है, बट आप कंट्रोल होने के लिए
1: तैयार
0: नहीं हो, तो ठीक है, करो अपने आप. फिर जब होगा नहीं आपका ठीक से, फिर आप आओगे मेरे पास वापस. No. फिर ये तो कंपैशन नहीं है ना, ये तो प्यार नहीं है ना, ये तो ऐसे है कि जैसे हम वेट कर रहे हैं कि कोई गलती करके हमारे पास वापस आए, तो हम उनके लिए कैसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो गलती करें, दुखी हो, फिर मेरे पास वापस आए.
1: बट वो फर्म बिलीफ है ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, मुझे आपसे ज्यादा आता है,
0: बिल्कुल,
1: मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है,
0: वो बिलीफ
1: मेरी नॉलेज तो.
0: वो बिलीफ नहीं है, वो सच है.
1: फिर
0: वो तो सच है. सी सपोज आप बड़े हैं, एज में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं. एज में जो बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं. आपने जीवन को एक पर्टिकुलर तरीके से जिया है, विजडम भी है, इंटेलिजेंस भी है. जिस आत्मा के पास ये चार
1: होती तो मेरा ये गुस्से वाला बिलीफ ही नहीं होता मुझमें.
0: विजडम नहीं,
1: ये विजडम की कमी नहीं है,
0: नहीं. विजडम है, कोई एक संस्कार थोड़ा कड़क है. एक संस्कार कुर्ता पूरा व्हाइट है, एक दाग होने से ये नहीं मीनिंग है कि पूरा कुर्ता ही काला है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट अपने को भी इवेल्युएट करने के लिए.
1: यू मेड माय डे.
0: नो नो, बट इट्स अ फैक्ट. नो, इट्स अ फैक्ट ना. और ये अपने लिए भी और औरों के लिए भी. किसी के अंदर भी कोई एक कड़ा, बहुत कड़ा भी है अगर, बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ दे रहा है, लेकिन बाकी को भी तो देखना है. आत्मा में कितनी विशेषताएं हैं, उस एक को ही देखेंगे.
1: तो कभी कभी अपनी भी तारीफ, अपने को भी पैट करना चाहिए. अपनी
0: वेरी इम्पोर्टेंट, अपने को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, किसी और को तो नहीं कर पाएंगे कभी भी, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दृष्टिकोण ही क्रिटिकल बन जाएगा. तो इसलिए विजडम है, इंटेलिजेंस है, एज है, एक्सपीरियंस है. तो ये चार फैक्टर्स के कारण आपके बहुत सारे डिसीशंस, लेट्स से मेजोरिटी डिसीशंस एक्यूरेट होंगे क्योंकि चार फैक्टर्स हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके पास नॉट नेसेसरी आपकी जितनी इंटेलिजेंस, नॉट नेसेसरी आपकी जितनी विजडम, एंड एज तो नहीं, अनुभव भी नहीं. तो आपका राइट भी उनको अभी राइट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बात को किस दृष्टिकोण से देखेंगे, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी विजडम, अपने एज और अपने एक्सपीरियंस से. तो अगर आप उनको अपनी बात नहीं यूज करने देंगे तो उनकी विजडम और उनकी इंटेलिजेंस कैसे ग्रो होगी? हाउ विल दे लर्न? आप सिर्फ अगर बताएंगे और वो करेंगे, आप बताएंगे और वो करेंगे, आप तो आपके पास तो वो चार फैक्टर्स अच्छे हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? उसकी इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगी, विजडम कैसे बढ़ेगी? करेंगे तब तो बढ़ेगी, करेंगे. और हो सकता है वो आपके तरीके से ना करें, कोई एक अलग तरीके से करे, पर दैट ऑल्सो वर्क्स आउट वेरी ब्यूटीफुल.
1: जरूरी है वो ग्रोथ हो, हमेशा फेलियर भी हो सकता है.
0: आपने कभी फेलियर नहीं अनुभव किया लाइफ में?
1: बहुत बार किया,
0: तब भी आज विजडम है, इंटेलिजेंस है, एक्सपीरियंस है. ग्रोथ लाइफ डजेंट मीन परफेक्ट एवरीथिंग, इट मीन्स डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, अप एंड डाउन, लर्निंग, मूविंग अप. सो अब रोल क्या है, उनको अपना

0: करने दें, हमेशा उनके लिए वहां रहें। वो लेना चाहें आपसे तो ब्यूटीफुल,
1: ना लेना चाहें,
0: ना लेना चाहें तो भी आप दे जरूर देंगे एक बार। अगर आपको कोई दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं ठीक है फिर खुद सीखना है तो खुद नहीं, हमें जरूर देना है, बिकॉज रोल ऑफ अ पेरेंट, गाइड, फैसिलिटेटर, फ्रेंड। लेकिन देकर कंट्रोल नहीं करना है, और देकर एक्सेप्ट भी करना है कि हो सकता है वो उस बात को ले, हो सकता है उस बात को नहीं ले, ये तो स्वीकार करना है।
1: तो मतलब जैसे अब सूरज आ रहा है यहाँ से, आप लें ना लें,
0: छतरी
1: रखें, खिड़की बंद करें, खिड़की खुली रखें, उसका काम है सिर्फ देना,
0: जबकि वो मेरे लिए हर चीज यूजफुल दे रहा है, हर चीज यूजफुल दे रहा है।
1: फिर फर्क ये है सिस्टर, मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा कि लेकिन मैं सूरज तो नहीं हूँ, फिर फाइनली यही बात आ जाती है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी तो इंसान हूँ।
0: सो वी विल सी दैट नेक्स्ट टाइम।
1: इतनी बचपन से यही बातें सुनी है, गलतियों का पुतला हूँ।
0: कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: Our every thought, word and action is the energy we create and radiate. This is our karma. Situations and people's behavior is the energy we receive. This is our destiny. We experience the energy of our thoughts while creating them. Then they radiate. And the other person also creates similar thoughts for us, which we receive. So, we experience while giving and also while receiving. Karma begins at the level of thoughts. If we create negative thoughts, but speak beautiful words and do good actions, we are still creating negative energy. Karma is not in the action. It is the intention behind the action. That is the thoughts. Knowledge of the law of karma empowers us to create right karma in the present. We take personal responsibility of situations coming to us. We do not blame anyone because we know it is a return of our earlier karma.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपको स्वागत करती हूँ। ज्ञान की कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है सफलता। ऐसी सफलता हर लोगों के जीवन में होना जरूरी होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता होना जरूरी होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है। बच्चे से लेकर बड़ों तक, गृहिणी से लेकर वैज्ञानिक तक। गृहिणी अपने कर्तव्य में सफलता चाहती और विद्यार्थी पढ़ाई में, उद्योगपति उद्योग में, समाज सेवक समाज की सेवा में, और हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सफलता चाहता ही है। परंतु सफलता हमसे क्या चाहती है, ये जानना जरूरी है। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने सर्वप्रथम ये समझा कि सफलता हमसे क्या मांग कर रही है, फिर उस मांग को पूरा किया तो सफल हो गए। इसमें निस्वार्थ भावना हो, निष्काम कर्तव्य निष्ठा हो, समर्पण और लगन का संतुलन, अपेक्षा और अधीनता का त्याग हो, जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देने की भावना प्रमाण प्रैक्टिकल कर्म करें तो सफलता गले की माला बन जाएगी। तो आइए सफलता पाने की कुछ विधियां समझते हैं। एक होता है हद से ज्यादा मेहनत करो। जो मेहनत से पीछे भागते हैं वे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पिछला कदम छोड़ना पड़ता है। अगर कोई कहे कि पीछे का नहीं छोड़ सकते तो आगे भी बढ़ा नहीं जा सकता। कहा जाता है खून पसीने की कमाई सुकून देती है, मेहनत से अर्जित किया गया कौड़ी सम्मान मूल्य भी करोड़ों का सुख व संतोष देता है। जीवन के प्रत्येक पहलू को सम्मान दीजिए। सम्माननीय बनने के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करो, फिर मेहनत का जादू देखो। बुरी आदतों का भी त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, बुरी आदतों का त्याग सफलता के मार्ग में परीक्षा के रूप में कई नकारात्मक चीजें सामने आती है, इससे सतर्क रहें। जितना अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान रहेगा तो कभी भी बुरी संगत में नहीं आएंगे। जब लक्ष्य से ज्यादा किसी और को प्राथमिकता दे देते हैं तब उद्देश्य जो है उससे हम अटक कर बुरी संगत में फंस जाते हैं, मार्ग में अवरोध खड़े कर देते हैं। हमें यह देखना है कि जो चीजें हमारे पास आ रही है उनकी हमें आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो अच्छी से अच्छी चीज भी नुकसानदायक हो सकती है। अपनी

हितों को समझे, स्वयं की संभाल करे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता हमसे क्या मांगती है? संघर्ष करने की हिम्मत करना। एक होता है संघर्ष करने की हिम्मत करना। जब भूमि के में बीज होते हैं तब बीज के साथ साथ अनेक प्रकार की खर पतवार भी उगाती है। किसी ऊंचे संकल्प के साथ कदम बढ़ाते हैं तो अनायास ही कई परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। इससे घबराए नहीं, हिम्मत से सामना करें। संघर्ष ही नए

इसकी पहचान है। अगर किसान हर पतवार को देखकर हतोत्साहित हो जाए तो क्या होगा? हम भी हिम्मत से काम लेंगे तो और हौसला बनाए रखें। अपने काम पर विश्वास रखना, जैसे किसान अपना परिश्रम नहीं छोड़ता, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता, यह विश्वास रखता है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। हम भी कर्तव्य पर आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता का आधार विश्वास है। जिन्होंने भी विश्वास बनाए रखा, सफलता उनके कदमों में आ पहुंची। एक होता है धैर्य रखने की काबिलियत। विश्वास को कम करने के लिए अनेक चुनौतियां सामने आ जाती है। इसमें धैर्य का गुण नहीं छोड़ना है। जैसे होता क्या है, वृक्ष, धूप, वर्षा, तेज हवा सब का सामना करता है, हार नहीं मानता। हम भी डगमग करने वालों की बातों को देख डगमग हो जाते हैं। धैर्य रखने से पहाड़ जैसी समस्याओं का भी सामना भी कर सकते हैं। धैर्य ही योग्यता को निखारता है, सोई हुई असीम शक्तियों का एहसास दिलाता है, यह बोध कराता है कि आप तो सब कुछ कर सकते हो जो औरों के लिए कठिन है। एक होता है अपने काम के प्रति जुनून पैदा करें। अपने काम के प्रति हमें जैसा जुनून होना चाहिए। अपने भीतर देखें, जब किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प जैसे संकल्प ले लेते हैं तो क्या होता है कि यह तो करके ही रहेंगे, तो हम क्या होता है कि हम निश्चित रूप से वह हो ही जाता है। हमारे साथ ऐसा होता ही है कि अगर हम संकल्प करते हैं तो हम वो कर लेते हैं। जहाँ जुनून हो वहाँ कोई भी विपरीत बात हिला नहीं सकती। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, जुनून के साथ करो, साधारण रूप से नहीं। हाँ, और समय से पूरे पूर्व जो होता है वो संपन्न करो। लगन और समर्पण से किया गया कार्य सफल होता है। सफलता और असफलता को बुद्धि से निकाल संपूर्ण निष्ठ संपूर्ण हमें क्या करना है, निष्ठावान होकर कार्य करो तो निश्चित ही सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आती रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराती रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। तो हम चर्चा कर रहे थे सफलता हमसे क्या चाहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफल होने के लिए बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सफलता का मार्ग मुश्किल से होकर गुजरता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही सफलता का मार्ग भी मुश्किलों से होकर गुजरता है। मुश्किलों से नहीं भागो, अपितु मुश्किलों को साथी माने। हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ो। उपलब्धियों को यदि सहज प्राप्त किया जाए तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुश्किलें रूपी बहुत सारी ऐसी

फिर मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलों रूपी मुझे ही सफलता की मंजिल तक हमें दी जाती है। किसी से आशा मत रखो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करके आगे बढ़ो। स्वयं की जागृति से चलने वालों का क्या होता है, चलने वाला जो होता है कभी रुक नहीं सकता, जो गतिशील रहता है वही आगे बढ़ता है। नदी बहती तो है, हाँ नदी बहती है तो आगे बढ़ती है, रुकती है तो सड़ती है। प्रतिपल परिवर्तन ही प्रगति है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो, एक होता है स्वयं से ज्यादा हम किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है स्वयं से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो। कई बार विश्वास जो है वो टूटने पर हम उठने के योग्य नहीं होते। जो अपने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाता है वह गिरकर भी संभलने की क्षमता रखता है। जो दूसरों पर निर्भर होकर चलता है वह कभी भी गिर सकता है, टूटकर बिखर सकता है। जो परिस्थितियों को खेल समझकर खेलते हैं वे अवश्य ही विजय होते हैं। जीवन में जो होता है, जीवन के खेल में हर चुनौती को स्वीकार करो, मन उत्साह से खेलो। प्रतिपल सफलता का साक्षात्कार करो। जो देखते हैं वही बनते हैं, जो सोचते हैं वह पाते हैं। हाँ यह कुदरती सिद्धांत है। नित्य अपने क्षेत्र की सफलता का दर्शन करो, उसी प्रमाण मेहनत करो। समय और संकल्प सबसे बड़ी धरोहर है। हमारा जो समय है और संकल्प है, हमारा संकल्प जो है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा संकल्प होना चाहिए जिसमें सकारात्मकता हो। तो समय और संकल्प जो होता है सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, इसका सही सदुपयोग करो। सफल वही होता है जो स्थूल और सूक्ष्म खजानों की बचत की कला को सीखता है, वही निखरता है अर्थात संपन्नता को प्राप्त करता है। विवेक और भावना का एक संतुलन रख कर्म करो। विवेक और भावना का हमें क्या करना है, संतुलन रखना है। केवल विवेक अहंकार उत्पन्न करता है, अगर विवेक केवल हो तो वो क्या होता है, वो अहंकार उत्पन्न करता है। और केवल भावना का क्या होता है, विवेक हमें अहंकार जब लाता है तो भावना जो है वो कायरता हो जाती है। हमारी कई बार अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार नुकसान पहुंचा देता है, और कई बार सीमित मात्रा में मिला हुआ जो भी हम लेते हैं, अगर हम लिया हमें सीमित हाँ मात्रा में लिया गया विष भी क्या होता है, औषधि बन जाता है। इसलिए स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर विवेक और भावना का संतुलन रख प्रयोग करें। तो इसका संतुलन रखकर अगर प्रयोग करने से प्रत्येक कर्म में सफलता मिलती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे फिर आकर मिलते हैं। तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। सफलता क्या चाहती है? योग्यता के साथ सकारात्मकता और सकारात्मक दृष्टिकोण। योग्यता के साथ क्या होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण सही दिशा देता है। जो गुणग्राही व्यक्ति दूरदर्शिता भी रखता है, वह सभी चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त पाता है। हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है। उसकी उम्मीदों का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना दुआएं अर्जित करने का सहज मार्ग है। श्रेष्ठ कार्य करने में शर्म नहीं, अपितु समर्पण और नम्रता को, जिससे निर्माणता और महानता प्रत्यक्ष हो, यही सफलता की नींव होती है। सरल और निर्मल स्वभाव, यानी कि एकदम पवित्र स्वभाव। अगर स्वभाव सरल व निर्मल है तो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढाल सकते हैं। जो वृक्ष लचीला होता है, वह सबसे ज्यादा वो बड़े से बड़े तूफान में भी अपना बचाव कर सकता है। त्रिकालदर्शी बने,

हमारा क्या है, हमें कैसा होना चाहिए, त्रिकालदर्शी बनना चाहिए, यानी कि तीसरे काल को देखो। त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि कर्म करने से पूर्व ही कर्म के परिणाम का बोध हो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की समझ द्वारा साधारण कर्म को भी विशेष बना देता है, इसलिए कर्म करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होता। प्रचलित मान्यता है कि कोई भी कार्य आगे पीछे देखकर, सोचकर, समझकर कर, ऐसा व्यक्ति स्वयं सुखी रहता है और समाज में मान सम्मान का पात्र बनता है। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हाथ की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकतायत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन,
1: चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ से फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: धरती की पुकार, पात्र परिचय, उन्नति, आदित्य, पंकज, आदित्य प्रकाश, यश, सैंडी, वेदांत, विनोद, अंबर, लेखिका सुधापुरी।
1: आज हम और भी जल्दी आ गए हैं।
2: सुबह सुबह का वातावरण कितना ठंडा और फ्रेश होता है ना?
3: मम्मी कहती है सुबह कितना भी जल्दी उठ जाओ पर दोपहर को बाहर नहीं जाने दूंगी।
4: आज क्या करने का इरादा है सबका, क्या खेले?
2: मैं तो उस पेड़ के नीचे कल सीखा हुआ सूर्य नमस्कार करता हूँ।
3: मैं तो जॉगिंग करूँगा।
4: मैं तो अपने स्कूल में सिखाया हुआ व्यायाम करता हूँ।
5: मैं तो यहाँ बैठकर प्राणायाम करूँगा।
0: ओहो, आज सब बड़े स्वास्थ्यवर्धक मूड में है।
4: हाँ ठीक तो है, मैं तो जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ।
3: मैं भी, बस कल देर हो गई थी, टीवी पर पापा प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे और मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था।
2: कल तो सब तरफ मंगलयान की चर्चा हो रही थी
6: और स्वच्छता अभियान की।
2: क्यों ना हो, हमारे देश के लिए कितनी फक्र की बात है।
3: क्या स्वच्छता अभियान या मंगलयान?
4: अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मंगलयान और क्या।
5: स्वच्छता तो आम बात है, हम सबको रखनी ही चाहिए।
0: बात तो ठीक ही है, स्वच्छता के लिए अभियान चलाना पड़े ऐसी नौबत आ गई है।
4: पापा कह रहे थे भारत एशिया का पहला देश है जिसने बहुत कम पैसों में यानी कम खर्चे में मंगल ग्रह तक मंगलयान को भेजा है।
3: वो भी पहले ही शॉट में सफलता, वाह।
2: हाँ हाँ, कहते हैं ऑटो के प्रति किलोमीटर के किराए से कम में मंगलयान ने अपना सफर तय किया है, फक्र की तो बात है।
6: पूरे संसार में नाम हो रहा है,
2: बड़े बड़े उन्नत देश हमें देखकर हैरान हो रहे हैं।
3: और लगता है किन्हीं को तो शायद थोड़ी जलन भी।
4: पर क्या दीदी,
0: हम अपने ग्रह तक कब पहुँचेंगे?
5: मतलब
4: हम अपने ग्रह पर ही तो हैं।
3: अपनी धरती पर? हाँ हाँ, अपने प्यारे नीले ग्रह पर।
0: हाँ पर प्रदूषण फैलाकर हम कितनी तेजी से इसके विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी सोचा भी है? वो उधर कूड़े के ढेर पर और कूड़ा डालते हुए लोग और वो तालाब उस तरफ पार्क में सरकार ने इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगवाया था, पर अब एक गंदा नाला बन गया है।
2: हाँ ये तो है।
6: अरे ये क्या, मम्मी कहती है हमने अपनी पवित्र नदियों तक नहीं छोड़ा तो और किसी की क्या बात की जाए।
2: मैंने कहीं पढ़ा था यमुना जिसके किनारे विश्व प्रसिद्ध ताज है आज एक गंदा नाला बन गई है।
0: आसपास की सब फैक्ट्री अपना वेस्ट इसमें डालती है, वो भी बिना ट्रीट किए।
3: ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है।
0: जैसे कि सब कुछ खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रह जाएगा।
4: दीदी मुझे तो कोई भी देश इसकी फिक्र करता हुआ नहीं लगता।
5: कि वह किसकी मदद प्रगति कर रहा है?
4: बस अपने देश की फिक्र है, जैसे पूरी धरती खत्म हो गई तो ये अकेले रह पाएंगे क्या।
3: इट इज लाइक प्रॉफिट बिफोर पीपल।
2: ठीक कह रहे हो,
0: बल्कि आंकड़े तो यह दिखाते हैं कि जो देश जितने उन्नत हैं वे उतनी ही तीव्रता से गंध भी फैला रहे हैं धरती पर।
6: पापा कहते हैं चीन को ही देख लो, प्रगति की होड़ में संसार का नंबर वन तो न बन सका पर प्रदूषण फैलाने में जरूर नंबर वन बन गया।
0: तुम्हारा मतलब है वो उन्हें क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स?
2: कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब?
3: मुझे पता है, मतलब किसी भी जनसंख्या द्वारा वातावरण में फैला हुए कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस।
4: ये कैसे होता है?
0: ये यातायात द्वारा या वनों के नाश द्वारा या अत्यधिक वस्तुओं के उत्पादन द्वारा या सड़क या बिल्डिंगों के निर्माण द्वारा भी हो सकता है।
2: ओहो, यानी मानव की गतिविधियों द्वारा हुआ प्रदूषण।
4: ठीक समझे, और फिर तो यही सिद्ध होता है कि जितनी तरक्की उतने ही कार्बन फुटप्रिंट।
3: तो क्या ये हमारा ही देश है जिसने स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर लिया है?
0: अरे नहीं, कई देश इसके लिए कार्यरत हैं, जापान में, जर्मनी में और कई देशों में नदियां साफ करने में बहुत मेहनत की जा रही है।
3: हम भी तो अपने देश में बहुत सीरियस हो रहे हैं इसे लेकर, सरकार बहुत काम कर रही है।
5: पर सरकार क्या कर रही है या देश में क्या हो रहा है इस पर बाद में बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं इस पर सोचते हैं।
2: मैं बताऊँ, आज घर जाने से पहले इस पार्क के सारे कागज या रैपर आदि कूड़ेदान में फेंक कर जाएंगे।
3: गुड आइडिया, वैसे भी हम सबसे बाद में ही जाते हैं।
6: कल जब लोग आएंगे तो साफ पार्क देखकर हैरान हो जाएंगे।
4: यहाँ का सफाई कर्मचारी सोचेगा आसमान से कोई फरिश्ते उसकी मदद कर रहे हैं।
0: चलो फिर सोच क्या रहे हो जाओ शुरू। बल्कि मैं तो कहती हूँ सफाई कर्मचारी भैया से ही पूछ लेते हैं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं।
5: एक और बात बताऊँ, आज ऐसा करके मतलब पार्क की सफाई करके हम योग, व्यायाम, जॉगिंग और ना जाने किन किन स्वास्थ्य

0: काम एक साथ कर लेंगे।
1: ऐसा करते हैं, हम दो दो का ग्रुप बना लेते हैं।
2: हाँ, हमसे जो हो सके पहले वो करते हैं, फिर किसी की मदद लेंगे।
3: मुझे पता है, उधर एक गड्ढा बनाकर उसे कंपोस्ट पीट भी बनाया जा रहा है।
0: तो ठीक है, सब सूखे पत्ते, फूल, टहनियाँ आदि इसमें डाल देते हैं।
1: ठीक है, जोड़िया मैं बनाता हूँ।
4: नहीं, हम खुद चुन लेंगे मॉनिटर साहब।

की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर

0: घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कप साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: जैसे जब हम जहाज में बैठे होते हैं तो जहाज अगर हिलने लग जाए तो हम और जोर से पकड़ लेते हैं अपनी सीट को, तो ऐसे ही जब कोई भी मुजात्मा को हिलाने आता है तो मैं और जोर से अपनी सीट को पकड़ लूं, अर्थात अपने ऊंच स्वमान की सीट, संतुष्टता की सीट पर सेट होते ही मैं आत्मा स्वयं को सेफ कर लेती हूं, क्योंकि दूसरे जन अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूं। वो अपना रोल निभा रहे हैं और मैं आत्मा अपना रोल अदा कर रही हूं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

देखा न देखा न देखा न देखा।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: ओरिजिनल फैन था लता के साथ डुएट होगा, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी या कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट किया दादा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूं फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है, नहीं आपको मैं गाते सुना था आप सुनिए, एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इन टू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप बैक टू मेल।
1: कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: भगोरी भगोरी भगोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो मैं तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: से तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना हम मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय।

प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का चिट्ठी है।

0: बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कटक होई बकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हो बकरी।
1: नैना जब नहीं है तो भैया मन लटक होई बकरी।

0: कैसा जादूदार के,
1: कैसा जादूदार के दे कैसा टोना मार के, मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादूदार के,
0: मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादूदार।

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात तो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

आजीज है कोई सब तो मानोगे, होगा तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई सब तो मानोगे, होगा तुमसे कल

प्यार का ये तमा मेरे साथ है।

वाला तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे, दिल वाला ना दिल है कोई तब तो मानोगे।

0: और जब सवेरा होगा तो हंसेगा इसके रोने पर।
1: किसी के रोने से हंसना अच्छा नहीं।
0: इसलिए हंसेगा कि महज एक सपना रुला गया।
1: जो सपना देखता है वही जानता है उसको टूटना क्या होता है।
0: जब सपना टूट जाए तो आंखें खोल लेनी चाहिए।
1: क्या देखने के लिए? अंधेरा?
0: नहीं, ये देखने के लिए कि रात बीत रही है, सवेरा जरूर होगा।
1: तो भी

0: जख्म जो है उसे भरते भरते वक्त लगता है।
1: इलाज करने से जल्द भर जाता है।
0: डॉक्टर बनकर आए हैं आप?
1: ऐसे जख्म के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, दोस्त की होती है।

बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

है।